0: ଦୁଇଟି ଆଖି ଦିଆଯିବା ସ୍ଥଳେ ଗୋଟିଏ ଜିଭ ଦିଆଯିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ତୁମେ ଯେତିକି କହିବ ତାର ଦୁଇ ଗୁଣ ଦେଖିବ। ଆକାଶବାଣୀ ବାରିପଦା ଷ୍ଟୁଡିଓ ଘଡ଼ିରେ
1: ଆକାଶବାଣୀ ସମାଚାର କେ ସାଥ ମୈଁ ମୁକେଶ କୁମାର ବଲ। गृहमंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। विधेयक के अंतर्गत संविधान की पहली अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। लोकसभा ने इसे कल ही पारित कर दिया है। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर भी विचार और उसे पारित करने की संभावना है। वहीं लोकसभा में खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और उसे पारित करने की प्रक्रिया होगी। कल विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही एक बार फिर बाधित रही। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है।
2: राहुल गांधी जी कई दिनों से गृह मंत्री अमित शाह का जवाब मांग रहे हैं सदन में। अब जब सरकार तैयार है, गृह मंत्री जी पूरे घटनाओं का बहुत डिटेल में जवाब देने के तैयार है, फिर राहुल गांधी जी भाग रहे हैं। मैंने इसलिए सदन में कहा कि भागना नहीं है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रम्प ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माई लाइफ माई स्ट्रगल्स का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ये आत्मकथा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जीवन की यात्रा का एक अत्यंत व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। ये पुस्तक उन मूल्यों, अनुभवों और परिस्थितियों की जानकारी देती है जिन्होंने उनकी यात्रा और सार्वजनिक सेवा को आकार दिया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर नई दिल्ली में व्यापक पौधारोपण अभियान की शुरुआत करेंगे। श्री चौहान की अपील पर वृक्ष मित्र अभियान से जुड़े देश भर के हजारों सदस्य भी अपने अपने गांवों और शहरों में पौधारोपण अभियान चलाएंगे। इस अवसर पर देश भर में 50,000 से अधिक पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है। झारखंड में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते राज्य के कई हिस्सों में कल जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोककर हिरासत में ले लिया। इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन कल 18वें दिन भी जारी रहा। विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने की घोषणा की थी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने शेयर बाजारों को वित्तीय नतीजों को जमा करने संबंधी अपने विनियमों के अंतर्गत सूचीबद्ध ऋण साधन वाले नगर पालिकाओं की समय सीमा में छूट दी है। कल जारी किए गए नियमों के अंतर्गत सूचीबद्ध नगर पालिकाओं को अब बिना ऑडिट वाले पहली छमाही के नतीजे 60 दिनों के भीतर जमा करने होंगे, जबकि पहले ये समय सीमा 45 दिन की थी। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई नहीं बदल सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है।
3: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अभी कुछ महीनों में जो वहां पर मानवाधिकार का हनन हुआ, जिस प्रकार से लोग मारे गए, एक बार फिर से इस बात को उजागर करता है। और जहां तक लोगों के मानवाधिकार के पक्ष को गारंटी करने की बात आती है, उसमें पाकिस्तान को बहुत कुछ करना है। और हमको लगता है कि जो अभी हाल ही के हिंसा में इतने लोग मारे गए हैं, उस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चिंता करने की जरूरत है और साथ ही साथ में पाकिस्तान को जवाबदेही ठहराए जाने की जरूरत है।
1: नाइजीरिया के लागोस में आयोजित कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में भारत ने पदक जीतने का शानदार सिलसिला जारी रखा है। करुण सिंह और शेरजिन शांतिमोल ने कल रात सीनियर पुरुष स्पर्धाओं में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पंजाब

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाश

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। लोकसभा में खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में करण सिंह, शेरजिन शांतिमोल और तनिष्का खत्री ने नाइजीरिया में स्वर्ण पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर भी विचार और उसे पारित करने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
1: केरल नाम परिवर्तन विधेयक का उद्देश्य संविधान की पहली अनुसूची में राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करना है। इस संबंध में केरल विधानसभा ने जून 2024 में एक प्रस्ताव पारित किया था। प्रस्ताव में कहा गया था कि मलयालम में राज्य को केरलम के नाम से जाना जाता है, जबकि संविधान की पहली अनुसूची में इसका नाम केरल दर्ज है। इस बीच खान और खनिज विकास और विनियम संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य खान और खनिज अधिनियम 1957 में संशोधन करना है। इस विधेयक का उद्देश्य देश के बढ़ते महत्वपूर्ण खनिजों की मांग को पूरा करने के लिए भारत के खनन क्षेत्र को अधिक प्रभावी, निवेश के अनुकूल और सक्षम बनाना है। दिलनशी आरजू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माई लाइफ माई स्ट्रगल्स का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक सभा को भी संबोधित करेंगे। यह आत्मकथा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जीवन यात्रा का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। ये पुस्तक उन मूल्यों, अनुभवों और परिस्थितियों की जानकारी देती है जिन्होंने उनकी यात्रा और सार्वजनिक सेवा को आकार दिया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर नई दिल्ली में एक व्यापक वृक्षारोपण अभियान का संचालन करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के वृक्ष मित्र अभियान से जुड़े देश भर के हजारों सदस्य भी उनकी अपील पर अपने अपने गांवों और शहरों में वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे। नागरिकों से आग्रह करते हुए श्री चौहान ने कहा कि हरियाली अमावस्या प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने वाला त्यौहार है। श्री चौहान ने कहा कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता केवल शब्दों से ही व्यक्त नहीं की जानी चाहिए, बल्कि वृक्षारोपण के माध्यम से भी प्रदर्शित की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पौधा लगाना केवल पर्यावरण संरक्षण का कार्य ही नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित, संरक्षित और सुंदर भविष्य की नींव रखने का भी एक तरीका है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। ये रैली स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष में आयोजित हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा है। इसका उद्देश्य नागरिकों में राष्ट्रभक्ति की भावना को और मजबूत करना है। रैली में बड़ी संख्या में युवा, स्वयंसेवी संगठन और विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। अभियान के अंतर्गत देशभर के लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान व्यक्त करने का आह्वान किया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज सुबह मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से हर घर तिरंगा साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री मांडविया ने दिल्ली विश्वविद्यालय के माय भारत वॉलंटियर्स के साथ इस रैली का नेतृत्व किया। इस अवसर पर श्री मांडविया ने कहा कि इस रैली से पूरे देश में फिटनेस का संदेश जाएगा।
3: दिल्ली में माय भारत के 1000 से अधिक वॉलंटियर्स ने हर घर तिरंगा साइकिल यात्रा के द्वारा देश को

0: फिटनेस का संदेश दिया है। कोई भी राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनना है तो देश के नागरिक स्वस्थ रहे बहुत आवश्यक है। साइकिलिंग ये फिटनेस का संदेश है, पोल्यूशन का सॉल्यूशन है। चलो हम सब लोग हमारी तिरंगा की आन बान और शान के लिए, देश के युवा फिट रहे इस हेतु को सिद्ध करने के लिए साइकिलिंग करते रहे।
1: जम्मू कश्मीर में आज श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील के किनारे बुलवर्ड रोड पर एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रैली का नेतृत्व किया, जिसमें हजारों विद्यार्थी, सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी और समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि राज्य सरकार जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए एक विधेयक लाने की योजना बना रही है। बांकुरा में कल पश्चिमांचल उन्नयन परिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जल्द ही एक समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में युवाओं, विशेषकर जेन जी से जुड़ने और कविता के जरिए उनके विचारों को समझने के लिए एक अनोखी पहल शुरू की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रंग दे बसंती कैंपेन कल शुरू हुआ और ये 14 अगस्त तक राज्य के अलग अलग शहरों में चलेगा।
2: कल रात प्रयागराज की हिंदुस्तानी अकादमी में अपनी कविताओं के माध्यम से माफिया संस्कृति पर निशाना साधा। कार्यक्रम समन्वयक विश्वदीप शुक्ला ने बताया कि वीर रस और ओज रस की कविताओं के माध्यम से युवा पीढ़ी की भावनाओं को समझने वाले 8 कवियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रख्यात गीतकार डॉक्टर विनम्र सेन सिंह और अंतर्राष्ट्रीय कथाकार आचार्य शांतनु जी महाराज ने की। अगला कार्यक्रम आज लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। कल मुजफ्फरनगर में कॉमिक्स वितरण और संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जो युवाओं को जोड़ने के लिए कई रचनात्मक माध्यमों को एक साथ लाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन में प्रवेश कर गया है। विद्यार्थी कथित परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन जारी है। छात्र संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द करने, सीबीआई जांच और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग दोहरा रहे हैं। छात्रों ने कल शाम मौन जुलूस निकाला और कहा कि इसका उद्देश्य अपनी मांगों को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से उठाना है। इसके बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों की एक टीम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंची और आमरण अनशन पर बैठे छात्रों से बातचीत की। छात्रों ने दोहराया कि उनकी प्रमुख मांगे पूरी होने तक आंदोलन और आमरण अनशन जारी रहेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज वैज्ञानिक और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर विक्रम साराभाई को उनकी जयंती पर स्मरण किया। श्री बिरला ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर साराभाई का मानना था कि विज्ञान को केवल प्रयोगशालाओं तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका उद्देश्य आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाना होना चाहिए। कर्कटिका वावू के अवसर पर आज सुबह केरल में हजारों श्रद्धालुओं ने पितृतर्पण देना शुरू किया। हिंदू परंपरा में मलयालम महीने कर्कटम की अमावस्या को दिवंगत आत्माओं की शांति और आध्यात्मिक मुक्ति के लिए अनुष्ठान करने का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। अधिकांश मंदिरों में यह अनुष्ठान सुबह 3:30 बजे से 5 बजे के बीच शुरू हुए। समाचार सेवा प्रभाग की विशेष श्रृंखला पर्सन बिहाइंड द स्टोरी के अंतर्गत आगामी कड़ी में आज हम दुनिया के पहले तीनों सेनाओं के महिला नेतृत्व वाले समुद्र यात्रा अभियान का हिस्सा रहीं विंग कमांडर विभा सिंह, स्क्वाड्रन लीडर वैशाली भंडारी और मेजर प्राजक्ता पी निकम से बातचीत करेंगे। इस बातचीत को आज शाम 5:10 से 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। श्रोता इस कार्यक्रम को न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण कल सुबह 9:10 से किया जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, सिक्किम, हिमालयी पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, कोंकण, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मानसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी

0: जारी है, जिसके चलते कई स्थानों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। मंडी जिला प्रशासन ने भारी बारिश के कारण भूस्खलन और पत्थर गिरने के खतरे के दृष्टिगत मंडी कुल्लू राष्ट्रीय उच्च मार्ग 21 और मंडी जोगिंदर नगर राष्ट्रीय उच्च मार्ग 154 पर यातायात बीती रात से ही पूर्णतः बंद रखा है। 45 विद्युत ट्रांसफार्मर जबकि 82 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के 6 जिलों कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला, चंबा और लाहौल स्पीति में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
2: मौसम विज्ञान विभाग ने आज उड़ीसा में व्यापक बारिश का अनुमान लगाया है, जिसमें ज्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बछौरे पड़ने की संभावना है। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे इलाकों में ऊपरी हवा में चक्रवाती परिसंचरण के कारण आज उसी क्षेत्र में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इस सिस्टम से उड़ीसा में बारिश की गतिविधि बढ़ने की उम्मीद है। IMD ने अनुगुल और केंदुझर जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है। मछुआरों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: नाइजीरिया के लागोस में आयोजित राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने पदक जीतने का शानदार सिलसिला जारी रखा है। करण सिंह और शेरजिन शांतिमोल ने कल रात सीनियर पुरुष स्पर्धाओं में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर सबसे ऊपर छाई खबरें हैं। झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी नोकझोंक। और हाल ही में फुकेट से नई दिल्ली आ रहे एयर इंडिया विमान में अस्थिरता की जांच में सामने आई कुछ नई बातें। लोकसत्ते की पहली सुर्खी है पक्ष विपक्ष का आमने सामने प्रदर्शन, संसद में हंगामा। नवभारत टाइम्स ने इसी खबर को सचित्र प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है ऐसे भिड़े सांसद हो गई धक्का मुक्की। जनसत्ता में इस खबर का शीर्षक है संसद परिसर में सत्ता पक्ष विपक्ष के सांसद आमने सामने, भारी हंगामा। पिछले सप्ताह फुकेट से नई दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान के अचानक 300 फुट नीचे आने के मामले में हुई जांच को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए जनसत्ता ने शीर्षक दिया है मारिहुआना के प्रभाव में था पायलट। जबकि अमर उजाला की सुर्खी है एयर इंडिया पायलट गांजा के नशे में था, सहयोगी उड़ा रहा था विमान। पत्र ने पायलट एसोसिएशन द्वारा रखे पक्ष को भी शीर्ष समाचार में जगह देते हुए लिखा है टर्बुलेंस मामले में पायलट एसोसिएशन ने कहा हाइड्रोलिक में खराबी से हुई घटना। दैनिक भास्कर ने मतदाताओं को लुभाने के लिए कुछ राज्यों में बांटे जा रहे उपहारों के मुद्दे को अपनी संपादकीय लेख का विषय बनाया है और शीर्षक दिया है कम से कम गरीब राज्य तो रेवड़ी संस्कृति से दूर रहें।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। लोकसभा में खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: यशपाल जोड़ी, यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष तिवारी से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जयो कहासे हुजूर।
3: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चित्रलोक विविध भारती से।

0: दिल धड़कने दो, ये था फिल्म का नाम। याशिता शर्मा, शंकर महादेवन और साथियों की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। जावेद अख्तर ने इसे लिखा, शंकर एहसान लॉय का संगीत।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल

जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये था फिल्म का नाम। फरहान अख्तर और साथियों की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। जावेद अख्तर ने इसे लिखा, शंकर एहसान लॉय का संगीत।

उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में गीत दिल चाहता है फिल्म से हमने आपको सुनवाया। जावेद अख्तर ने इसे लिखा, शंकर एहसान लॉय का संगीत। वक्त हो चला है छोटे से अंतराल का।

0: अमिताभ बच्चन और फरहान अख्तर की आवाजों में गीत वजीर फिल्म से अभी आपने सुना। रोचक कोहली का संगीत था, गुरप्रीत सैनी और दीपक रमोला ने इसे लिखा।
1: एक आवाज जिसमें है जोश, जुनून, नशा। एक आवाज जो आपको अपने साथ बहा कर ले जाती है। एक आवाज जिसके साथ जुड़ी है।

0: आ रही हैं महबूबा महबूबा महबूबा विविध भारती पर सुन जरा 12 अगस्त दिन में और रात में 11 बजे
1: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चित्रलोक विविध भारती से।

शान और श्रेया घोषाल की आवाजों में गीत आप पीके फिल्म से सुन रहे थे। स्वानंद किरकिरे ने इसे लिखा, शांतनु मोइत्रे का संगीत। और इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम चित्रलोक यहीं संपन्न होता है।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है? शोधन, एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: शोधन ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे की शोधन आ गई सुबह सुबह, मुझे वो गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

आज के फनकार कार्यक्रम में बातें उस अभिनेत्री की जिसने फिल्मी दुनिया में अपने अभिनय, अपने नृत्य और अपनी खूबसूरती से हंगामा मचा के रखा था।

के फनकार कार्यक्रम आज समर्पित है एक खूबसूरत अभिनेत्री की याद को।

चार बरस की थी श्रीदेवी जब उन्होंने बतौर बाल कलाकार थुनैवन नामक फिल्म में काम किया था और इसके बाद बतौर बाल कलाकार उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। वो बेबी श्रीदेवी के नाम से जानी गई और केरला स्टेट का बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट अवार्ड मिला और आगे चलकर कई तरह के अवार्ड्स श्रीदेवी को मिले। फिर फिल्म जूली आई जिसमें श्रीदेवी ने अभिनेत्री लक्ष्मी की छोटी बहन का किरदार निभाया था। सन 1976 बतौर हीरोइन श्रीदेवी ने फिल्म संसार में कदम रखा तमिल फिल्म मुंडुरु मोडीचू के जरिए। निर्देशक थे महान निर्देशक के बालचंदर। दक्षिण भारत में श्रीदेवी का एक बड़ा ही जबरदस्त और कामयाब करियर रहा है, लेकिन यहां हम उस करियर की बातें नहीं कर रहे, हमें तो भाई हिंदी फिल्मों की बातें करनी है। तो आइए सन 1979 पर आते हैं जहां श्रीदेवी ने बतौर हीरोइन हिंदी सिनेमा के पर्दे पर अपना पहला कदम रखा। फिल्म थी सोलवा सावन।

इसकी 4 साल बाद श्रीदेवी ने जैसे मुंबईया फिल्म जगत में तहलका ही मचा दिया। ये फिल्म थी हिम्मत वाला। श्रीदेवी के हीरो थे जितेंद्र।

0: फिल्म हिम्मत वाला ने जबरदस्त धमाका किया। इस फिल्म के गाने बहुत चले, ये फिल्म भी बहुत चली और इसके बाद श्रीदेवी भी हिंदी सिनेमा में खूब खूब चली। आइए उस दौर की कुछ और फिल्मों की बातें की जाएं। फिल्म तोहफा।
1: बंकास।

जिसके बाद जितेंद्र और श्रीदेवी की जोड़ी ने उस दौर की कुछ नामी फिल्मों में काम किया। एक छोटी सी झलक इन गानों की, फिल्म मवाली। माना, माना।

सन 1986 में श्रीदेवी ने फिल्म नगीना में काम किया। ये अपने दौर की एक बहुत ही कामयाब फिल्म बन गई।

0: मिस्टर इंडिया एक कल्ट फिल्म बन गई और इस फिल्म में श्रीदेवी के अभिनय की बहुत तारीफ हुई। इस फिल्म में श्रीदेवी ने ये गाना भी गाया था पर्दे पर, जिसे असल में गाया कविता कृष्णमूर्ति ने।
1: समझे

जब मिस्टर इंडिया की बात हो तो एक गाने की बात ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। सरोज खान की कोरियोग्राफी वाला गाना फिल्म मिस्टर इंडिया का।

0: सन 1989 में ही श्रीदेवी ने यश चोपड़ा की एक बेहद महत्वाकांक्षी फिल्म में काम किया। इस फिल्म पर यश चोपड़ा बरसों बरस से काम कर रहे थे और आखिरकार कई हीरोइनों के नाम की संभावनाओं की खबरों के बीच ये तय हो गया कि श्रीदेवी ही हैं यश चोपड़ा की
1: चांदनी। ओ मेरी चांदनी, तू मेरी चांदनी।
0: जब फिल्म चांदनी की बात हो तो भला इस गाने की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है।
2: मिले

सन 1992 श्रीदेवी के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण साल बन गया। इस साल श्रीदेवी अमिताभ बच्चन के साथ नजर आईं। फिल्म थी खुदा गवाह।

साल 1993, श्रीदेवी की एक ऐसी फिल्म आई जिसे बहुत लोग आज याद नहीं करते। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नाकाम रही थी, रूप की रानी चोरों का राजा। इसके बाद श्रीदेवी संजय दत्त के साथ धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म गुमराह में नजर आईं। निर्देशक थे महेश भट्ट। सन 1994 में श्रीदेवी अनिल कपूर के साथ फिल्म लाडला में दिखी। सन 1997 फिल्म आई जुदाई। इस फिल्म में श्रीदेवी के साथ अनिल कपूर और उर्मिला मातोंडकर थे।

0: इसके बाद श्रीदेवी ने जाने माने प्रोड्यूसर बोनी कपूर से शादी रचा ली और वो फिल्म संसार से लंबे समय तक दूर हो गईं। लंबे समय तक फिल्म संसार से दूर रहने के बाद श्रीदेवी ने रुपहले पर्दे पर वापसी करने का मन बनाया। साल 2011 में आई गौरी शिंदे की फिल्म इंग्लिश विंग्लिश।
1: सॉरी, माय वाइफ्स इंग्लिश इज नॉट वेरी गुड, सो
2: मेरा केविन, दिस मैरिज इज अ ब्यूटीफुल थिंग, इट इज द मोस्ट स्पेशल फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप ऑफ टू पीपल हु आर इक्वल। लाइफ इज अ लॉन्ग जर्नी मेरा, समटाइम्स यू विल फील यू आर लेस केविन, समटाइम्स यू विल ऑल्सो फील यू आर लेस देन मेरा। ट्राई टू हेल्प ईच अदर टू फील इक्वल, इट विल बी नाइस।
0: इस फिल्म में श्रीदेवी के अभिनय की बहुत तारीफ हुई।

0: श्रीदेवी की आखिरी फिल्म बन गई फिल्म मॉम, और इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार देने की घोषणा की गई। लेकिन जब तक ये घोषणा आई, श्रीदेवी इस फानी दुनिया से अलविदा कह चुकी थी।
1: हाँ।

24 फरवरी 2018 को श्रीदेवी का निधन हो गया। जब राष्ट्रीय पुरस्कार बांटे गए तो अपनी मां की ओर से श्रीदेवी की बेटियों ने और उनके पति बोनी कपूर ने इस पुरस्कार को ग्रहण किया।

जानी मानी अभिनेत्री श्रीदेवी अपने चाहने वालों की याद में हमेशा रहेंगी और बनी रहेंगी वैसी ही शोह, चंचल और खूबसूरत अदाकारा।

0: ये था अभिनेत्री श्रीदेवी पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रम्प ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माई लाइफ माई स्ट्रगल्स का विमोचन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जीवन और संघर्षों का उल्लेख किया। श्री मोदी इस समय सभा को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: साथियों, बचपन के इन संघर्षों के बीच कोविंद जी ने शिक्षा को अपने सामर्थ्य को बढ़ाने का मार्ग बनाया। उन्होंने मेहनत की, उन्होंने संसाधनों की कमी को कमजोर नहीं बनने दिया और एक ऐसे मुकाम तक पहुंचे जिसकी कल्पना भी तब लोगों ने नहीं की होगी।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर भी विचार और उसे पारित करने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
2: केरल नाम परिवर्तन विधेयक का उद्देश्य संविधान की पहली अनुसूची में राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करना है। इस संबंध में केरल विधानसभा ने जून 2024 में एक प्रस्ताव पारित किया था। प्रस्ताव में कहा गया था कि मलयालम में राज्य को केरलम के नाम से जाना जाता है, जबकि संविधान की पहली अनुसूची में इसका नाम केरल दर्ज है। इस बीच खान और खनिज विकास और विनियम संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य खान और खनिज अधिनियम 1957 में संशोधन करना है। इस विधेयक का उद्देश्य देश के बढ़ते महत्वपूर्ण खनिजों की को पूरा करने के लिए भारत के खनन क्षेत्र को अधिक प्रभावी, निवेश के अनुकूल और सक्षम बनाना है। दिलनशी आरजू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।

0: राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना किया। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस को सम्मान, गर्व और गौरव के साथ मनाने और विकसित भारत का संकल्प लेने का आग्रह किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने लोगों से हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा अभियान के अंतर्गत हर घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील की। जम्मू कश्मीर में भी आज श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील के किनारे बुलेवार्ड रोड पर एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रैली का नेतृत्व किया, जिसमें हजारों विद्यार्थी, सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी और समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए। मुंबई के विले पार्ले में कल रात आग लगने की घटना में 2 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों के अनुसार विले पार्ले पश्चिम में एक भूतल और 12 मंजिला इमारत की 11वीं मंजिल पर आग लग गई थी। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया आज समाप्त हो रही है। इस पद के लिए 5,200 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से अंतिम चरण की जांच के बाद 18 उम्मीदवारों को चुना गया है। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन भी जारी है। विद्यार्थी कथित परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर हैं। रांची में जिला प्रशासन के देर रात विरोध स्थल पर पहुंचने के बाद तनाव बढ़ गया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि राज्य सरकार जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए एक विधेयक लाने की योजना बना रही है। बांकुरा में कल पश्चिमांचल उन्नयन परिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जल्द ही एक समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में एक मसौदा विधेयक तैयार किया जा चुका है। श्री अधिकारी ने आरोप लगाया कि धार्मिक संस्थानों की स्थापना के नाम पर विदेशों से धन प्राप्त हो रहा है और इस धन का उपयोग धर्मांतरण के लिए किया जा रहा है। नाइजीरिया के लागोस में आयोजित राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने पदक जीतने का शानदार सिलसिला जारी रखा है। करण सिंह और शेरजिन शांतिमोल ने कल रात सीनियर पुरुष स्पर्धाओं में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। सीनियर महिला स्पर्धा में भारतीय महिला फेंसरों ने फिर शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: क्या बात है, सुंदर। तो इस फिल्म ने बहुत नाम दिया।
2: हाँ।
1: और एक्सपीरियंसेस किस तरह से रहे कि इंटरनेशनल टीम के साथ काम करने के?
2: इंटरनेशनल टीम के साथ, क्योंकि योगन योगस जो हमारे सिनेमाटोग्राफर थे, वो विम वेंडर्स की फिल्म
1: टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड,
2: यस। सो एक एक नाम ऐसे आ रहे थे तो हमें लग रहा था माई गॉड, हम लोग ऐसे लोगों के साथ पहला ब्रेक होता है। उसके बाद जब फिल्म बन गई और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स हम लोग ट्रैवल हुए, वो पहला एक्सपीरियंस था। टोरंटो से शुरू हुआ, फिर हम बर्लिन आ ले गए और बर्लिन में हम बड़े स्टार्स से मिले, मतलब कियानो रीव्स। तो वो मतलब बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस।
1: 4-5 धड़कन मिस।
2: बिल्कुल टोटल। और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। अच्छा, वो पहली पिक्चर थी जहां हम लोगों को इतना मतलब वो मिला था। पैसे भी अच्छे मिले थे, लेकिन तभी भी स्ट्रगल पीरियड था। तो बर्लिन नाले जब होती है ना, बहुत ठंड होती है वहां, -10। मेरे पास एक ही कोट था, कपड़े भी ठीक ढंग से नहीं थे। एक साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट और कोट भी, मतलब वहां जाके मुझे फ्लोरियन ने और एक कोट मतलब दिया, एक विंटर कोट की, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क, क्योंकि मेरे पास दिल्ली की ठंड वाली कोट थी।
1: बिल्कुल,
2: इंडिया में वैसे कोट्स मिलते ही नहीं थे। वो तो बाद में ब्रिक लेन करने के बाद जब मैं लंदन शिफ्ट हो गई थी, देन आई अंडरस्टूड व्हाट विंटर कोट्स आर।
1: क्या एक्सपीरियंस था वो?
2: हाँ, मतलब बूट्स भी नहीं थे, चप्पल और सॉक्स पहन के गए थे बर्लिन आले अटेंड करने और मिल रहे किसे? कियानो रीव्स।
1: वाह।
2: पर ये
1: यही तो मजा है,
2: बहुत ही कमाल। और मेरे को एक्टर प्रशांत नारायणन वो भी आए थे और हम लोगों को रिट्ज़ कार्ल्टन में ठहराया गया था। तो हम तो पागल हो गए थे, मतलब लाइक द होटल इज सो ऑप्यूलेंट,
1: ग्रैंड,
2: या बट थैंकफुली लेटर इन लाइफ दिस

0: became a norm in life. Like many more films happened like this, जहाँ मतलब बहुत travel मैंने किया, jury में भी रही, और ये धीरे धीरे ये पार्ट ऑफ लाइफ बन गई.
1: बिल्कुल बिल्कुल. लेकिन ये जो
0: दिस इज द बिगिनिंग.
1: यस बिल्कुल. लेकिन इसके बाद इंटरनेशनल फिल्म्स और उनमें अवार्ड्स लेने और तारीफ पाने का सिलसिला लगातार चलता रहा.
0: जी.
1: तो इसके बाद कौन सी फिल्म आई?
0: इसके बाद मैंने यहाँ 12 आना किया, मतलब इंडिया में एक फिल्म की
1: मेनन के साथ,
0: राजा मेनन के साथ ही किया एक. और फिर ब्रिकलेन हैपेंड. फिर कुछ दिन कुछ साल मुझे बहुत अच्छी फिल्में नहीं मिल रही थी. फिर भी देख इंडियन सर्कस करके एक फिल्म की मैंने उस समय, और उसमें मुझे नेशनल अवार्ड मिला. लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत काम मिल रहा था. ऐसा
1: उस दौरान एक बांग्ला फिल्म भी की,
0: बिबौर. हाँ, बांग्ला बिबौर भी की. फिर मुझे ब्रिकलेन मिला, और एक फ्रेंच फिल्म भी की थी मैंने, लेट द विंड ब्लो, हवा आने दे करके. फिर ब्रिकलेन के बाद मैं लंदन शिफ्ट हो गई कुछ साल के लिए.
1: ये डिसीजन किस चीज पर बेस्ड था?
0: ये एक्चुअली वहां से कुछ अच्छे काम मिल रहे थे इसलिए था, और मैंने शादी भी कर ली. ये भी था,
1: ये भी था.
0: हाँ, प्यार हो गया.
1: वाँ,
0: ये
1: वाँ.
0: भी था, दोनों चीजें थी. और मैंने वहां पे म्यूजिकल थिएटर भी किया, बहुत बड़ा वेस्ट एंड पे, यू नो, रॉयल ओपरा हाउस में. जॉसलिन पुक, जिन्होंने गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क में म्यूजिक दिया, वो म्यूजिक डायरेक्टर थे इस म्यूजिकल के. तो बहुत मजा आया काम करके. और फिर
1: कितना फर्क है इंडियन थिएटर की दुनिया और ब्रॉडवे की दुनिया में?
0: द थिंग इज, इंडिया में हमें थिएटर, मराठी थिएटर या गुजराती थिएटर जैसे प्रोफेशनल थिएटर है, प्रोफेशनली चलती है वो. लेकिन हिंदी थिएटर में प्रोफेशनल थिएटर एक रेपुटरी कंपनी या ऐसे छोड़ के नहीं है. तो प्रोफेशनलिज्म जो है, क्योंकि जहां आपको पैसे मिलते हैं अच्छे खासे अपनी जिंदगी बिताने के लिए कि आप सिर्फ थिएटर कर रहे हो, वो नहीं होता यहाँ. तो अगर वो नहीं होगा तो आपकी क्वालिटी जो है वो सफर करेगी. क्योंकि अभी मैं एक प्ले कर रही हूँ जो मैंने और शारिब हाशमी, हम दोनों ने मिलकर लिखा. पर क्या होता है कि हमें जब फ्री वक्त मिलता है तभी हम वो कर पाते हैं, क्योंकि हमें पैसे नहीं मिलते हैं इससे. ये हॉबी हो जाती है, जबकि हम अपने पूरे, मतलब अब हम लोग एक्सपीरियंस्ड हैं तो फिर भी उसको एक लेवल के प्रोफेशनलिज्म तक ला पाते हैं. बट नो वन इज फंडिंग अस,
1: तो इसके सहारे जिंदगी नहीं बिताई जा सकती.
0: या तो उसमें फर्क हो जाता है. अभी जब मैं वहां पे प्ले कर रही थी तो हम जो 8 weeks का रिहर्सल कर रहे थे, हमें बाकायदा फुल पेमेंट मिलता था उसका, वीकली मनी, विच यूज टू बी वेरी गुड. उसके बाद शोज जब कर रहे हैं तो हमें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है उस समय. तो अगर ऐसा हो तो मैं तो जिंदगी भर थिएटर ही करूं.
1: बिल्कुल.
0: बिकॉज आपको लाइव परफॉर्मेंस में जो मजा आता है, जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलती है, जो रिएक्शन मिलता है, वो फिल्म में नहीं मिलता है.
1: ऑफ कोर्स.
0: बट The thing is, we always have to balance it because वो है ही नहीं.
1: तो लंदन में थिएटर होता रहा.
0: हाँ.
1: अलग अलग प्रोडक्शंस में काम किया.
0: और यहाँ पे भी मैंने पोस्टकार्ड्स फ्रॉम गॉड करके एक बहुत बढ़िया प्रोडक्शन किया दक्षा शेट और उनके डांस कंपनी के साथ. इंटरप्रिटेशन ऑफ इम्तियाज धारकर्स पोएम्स. और म्यूजिकल ही था वो.
1: वाह,
0: क्या बात है. तो ऐसी ऐसी चीजें करती गई मैं. बट ब्रिकलेन चेंज्ड अ लॉट ऑफ
1: एवरीथिंग. यस. मुझे ये बताइए कि लंदन में रहते हुए और कौन कौन सी फिल्में भी हुई?
0: फिल्में भी हुई, मैंने देव बेनेगल के साथ रोड मूवी की. मतलब यहाँ आना जाना. फिर और एक फिल्म की थी मॉनसून शूट आउट करके, जिसमें नवाज और मैं हैं, गुनीत ने प्रोड्यूस किया था उसको. बॉम्बे समर करके एक अमेरिकन डायरेक्टर के साथ एक फिल्म की. सो ऐसी चीजें मैं करती गई.
1: और लंदन का ये जो प्रवास है, ये कब और कैसे खत्म हुआ?
0: धीरे धीरे क्या हुआ कि इकोनॉमिक वहां पे स्टैग्नेशन आ रही थी ना, 2009-10, ये दैट वाज लाइक, यू नो, जो उनका स्टॉक मार्केट पूरा गिर गया, लीमन ब्रदर्स वगैरह सब क्रैश हो गए. सो वर्क वाज गेटिंग वेरी डिफिकल्ट देयर. आई वाज डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क हियर ओनली.
1: अच्छा.
0: तो मतलब जैसे देव बेनेगल की फिल्म है, मैं रह वहां रही थी पर यहाँ काम कर रही थी काफी सारा. सारी फिल्में इंटरनेशनल

0: की थी, बट आई वॉज डूइंग वर्क हियर, तो मुझे लगा कि यहाँ थोड़ा वक्त ज्यादा बिताया जाए।
1: तो आप वहां से वापस आ गई?
0: वापस आ गई।
1: और
0: एक चीज थी, मैंने पहले ही कहा था मुझे ठंड पसंद नहीं, सो द वेदर वॉज गेटिंग ऑन टू माई नर्व्स, वेदर आई लाइक इट और नॉट।
1: ये सही है, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर जो है मुंबई आपका घर हो गया।
0: जी।
1: भोपाल वाली फिल्म तभी हुई?
0: भोपाल वाली फिल्म भी लंदन में रहते हुए ही हुई।
1: अच्छा।
0: क्योंकि वो भी वहीं का प्रोडक्शन था। या रवि कुमार जो डायरेक्टर थे, ही इज ब्रिटिश।
1: ओके।
0: या
1: उस फिल्म में अभय आपके साथ थे?
0: नहीं, भोपाल प्रेयर फॉर रेन में मैं और राजपाल यादव थे।
1: ओके।
0: और मार्टिन शीन, कार्ल पेन।
1: अच्छा, हाँ,
0: वो इंटरनेशनल फिल्म थी।
1: जी जी जी, बिल्कुल। उसका एक्सपीरियंस कैसा था?
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रवि मतलब डॉक्टर थे एक्चुअली, और उनकी ये पहली फिल्म थी।
1: अच्छा।
0: और
1: एक ट्रेजेडी होने वाली है उसके इर्द गिर्द।
0: हाँ,
1: बुनी
0: उसकी,
1: गई
0: हाँ।
1: फिल्म।
0: फिर मैंने अन्ना कारेनिना भी किया उस समय, व्हेन आई वाज इन लंदन, जो राइट के साथ, मतलब काफी सारा वहाँ इधर दोनों का काम कर रही थी।
1: बिल्कुल मजेदार है ये। मुझे लगता है कि यहाँ भी एक गाना सुनते हैं, फिर आगे की बात करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो अब बताइए कौन सा गाना आपके जहन में आ रहा है?
0: मुझे नूर जहान के गाने जो है, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा।
1: क्या बात है, उन्हीं ने गाया है, आवाज दे कहाँ है।
0: बिल्कुल।
1: वो भी सुना जा सकता
0: वो
1: है।
0: भी, हाँ हाँ, वो भी सुना जा सकता है।

0: इन तमाम फिल्मों की बात हो रही है, इस बीच में मैं ये देख पा रहा हूँ कि आपने आई लव न्यू ईयर जैसी फिल्म भी की,
1: जी
0: मीना की, सिद्धार्थ की, ये सारे इंटरनेशनल फिल्म हैं, इंडिपेंडेंट फिल्म्स भी कहा जा सकता है। क्या बम्बैया चमक दमक वाले सिनेमा ने आपको आकर्षित नहीं किया?
1: आई लव एन वाई, सन्नी देओल और कंगना रनावत है उसमें,
0: वो एक फिल्म थी, यस
1: वो
0: यस।
1: मेन स्ट्रीम फिल्म ही थी. और सो आई प्ले हिज फर्स्ट गर्लफ्रेंड एंड आई डंप हिम,
0: अरे
1: सो आई हैड द
0: वाह,
1: प्लेजर ऑफ डंपिंग सनी देओल ऑन
0: डंपिंग द मेन हीरो, क्या बात है,
1: स्क्रीन.
0: मजे की बात है।
1: नहीं, ऐसा नहीं है एक्चुअली. मैं तो सिद्धार्थ बहुत ही, मतलब रिची मेहता जिन्होंने दिल्ली क्राइम डायरेक्ट की, उनकी फिल्म थी. और बहुत ही अच्छे फिल्म मेकर हैं वो, बहुत अच्छे राइटर भी हैं, दोस्त भी हैं, बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके. ये सब फिल्में की मैंने, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं मेन स्ट्रीम फिल्में नहीं करना चाहती थी. लेकिन ऐसा ही काम आता रहा मेरे पास. और मुझे लगता है कि ये ऐसा, आप हमेशा टाइप कास्ट हो जाते हो ना, कि आपको स्लॉट में ढाला जाता है कि आपने ऐसा काम किया है तो आप ऐसे ही हो. स्पेशली आप अगर ड्रामा स्कूल से हो तो लोग ये समझते हैं कि आप अगर अच्छे एक्टर हो तो आप मेन स्ट्रीम काम नहीं कर सकते. ऐसा नहीं होता है.
0: एक सील ठप्पा, एक टाइप
1: हाँ
0: कास्ट वाला मामला
1: हाँ बट
0: होता है।
1: ऐसा नहीं होता है. हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, बट दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स पार्च्ड की मैंने,
0: हाँ,
1: पार्च्ड
0: मैं
1: जो
0: बस उसी की तरफ आ
1: किया.
0: रहा था कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म आपके करियर की है
1: हाँ,
0: पार्च्ड, जो
1: पार्च्ड,
0: महिलाओं की जिंदगी पर एक तरह से कहा जाना
1: यस.
0: चाहिए।
1: और पार्च्ड वाज एक्चुअली अ स्टोरी दैट आई हैड रिटन
0: अरे
1: इनिशियली.
0: वाह,
1: यस,
0: ये तो कमाल की बात है, ये मुझे नहीं पता था,
1: हाँ,
0: वाह।
1: मैंने ये लिखा था. और मैंने एक दिन, हम लोग मिले थे लीना और असीम, और हम सोचे थे कुछ करे कुछ करे. तो मैंने लीना को ये कहानी सुनाई और उसको बहुत अच्छी लगी. उसने कहा कि यार इसको बनाते हैं. मैंने कहा बनाओ, मैं दे देती हूँ तुमको. सो दैट्स हाउ इट एक्चुअली स्टार्टेड. देन आई टुक हर टू दैट प्लेस जहां से मुझे सोर्स मिला था उस कहानी का. एंड देन शी डिड हर रिसर्च एंड शी रोट द स्क्रीन प्ले, और ऐसे करके बनी वो.
0: वो एक शानदार फिल्म बनी।
1: हाँ, वो फिल्म मेरे लिए बहुत स्पेशल इसलिए भी है कि द जर्म ऑफ द आइडिया केम फ्रॉम मी. और
0: इसकी शूट से जुड़ी हुई कुछ बातें,
1: हाँ, तो उसके बाद राधिका आप्टे, सुरवीन चावला, इन सब की कास्टिंग हुई. एंड वी हैड लाइक अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टाइम, शूटिंग दिस टुगेदर, बॉन्डिंग. एंड हमने साथ में बनाई इस फिल्म को. वी ऑल गॉट टुगेदर एंड मेड द फिल्म. रसल कार्पेंटर जिन्होंने टाइटैनिक शूट किया है, ही इज अ सिनेमाटोग्राफर ऑफ एवटार्स एंड टाइटैनिक, ऐसे बड़े बड़े फिल्मों ही शॉट द फिल्म. और ये असीम बजाज की वजह से है,
0: वाह
1: हु इज आर
0: वाह,
1: प्रोड्यूसर, और लीना के पार्टनर भी हैं वो. सो असीम इज रियली इनक्रेडिबल प्रोड्यूसर. वो ऐसे ऐसे लोगों को लेकर आए,
0: वाह,
1: एक छोटी फिल्म जो है उसका विजन बड़ा हो गया
0: बड़ा
1: पूरा.
0: हो गया, और फिल्म
1: हाँ,
0: बात भी बड़ी करती
1: बड़ी.
0: है,
1: हाँ,
0: और इसलिए वो बहुत दूर तक पहुंची एक
1: यस.
0: तरह
1: एंड
0: से।
1: लीना टुक दैट लिटिल स्टोरी दैट आई हैड, वो उसको वहां तक लेके चली गई.
0: वाह,
1: सो इट वाज रियली फैंटास्टिक. एंड आल्सो वर्किंग विद सच अमेजिंग एक्टर्स, सब लोग बिंदास खुल के हम लोगों ने काम किया.
0: बिल्कुल सही है। जोरम के बारे में बात कीजिए,
1: जी,
0: क्योंकि वो एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म
1: फिल्म
0: है।
1: है. हाँ, तो अगेन देवशीष मखीजा मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और मुझे उसका काम, सिर्फ काम ही पसंद नहीं है, मुझे वो इंसान बहुत पसंद है.
0: वाह,
1: ही इज अनअपोलोजेटिक, अनकॉम्प्रोमाइजिंग आर्टिस्ट
0: बिल्कुल,
1: जो
0: अपनी तरह की फिल्में करनी है।
1: आज की तारीख में आपको बहुत कम मिलती है. और मैं इसलिए देवशीष को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत मानती हूँ. तो जब जोरम वो कास्ट कर रहा था, तो मैं एक्चुअली आबूधाबी में थी. आई वॉज शूटिंग फॉर अ फिल्म कॉल्ड येलो बस, और वो भी एक इंटरनेशनल फिल्म है, अमेरिकन डायरेक्टर की फिल्म है. तो देवशीष ने कहा मुझे कि मेल ड्रिवन फिल्म है, बट आई वॉन्ट यू बिकॉज दिस कैरेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, एंड आई वॉन्ट समबडी हु विल जस्ट बी एफर्टलेस. मैंने कहा मैं कुछ नहीं पूछूंगी, मैं कर रही हूँ,
0: वाह,
1: दैट्स ऑल.
0: क्या बात है, और जोरम ने काफी नाम कमाया, काफी चर्चा बटोरी
1: बिल्कुल
0: देवाशीष की तमाम फिल्मों की
1: बिल्कुल
0: तरह।
1: बिल्कुल कमाल. और मुझे मनोज के साथ काम करने में बहुत अच्छा लगा. जीशान मेरा जूनियर है और बहुत अच्छा एक्टर है, तो इतने अच्छे एक्टर्स के साथ काम करने में बहुत बहुत मजा आया. एंड मनोज

0: भी बहुत अच्छे इंसान है,
1: बिल्कुल,
0: यू नो ही सच अ ब्यूटिफुल पर्सन. एक्टर तो सबको पता ही है वो है.
1: बिल्कुल. तो ये आपकी जो फिल्मोग्राफी है उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म बन जाती है. मुझे गौरी हरी दास्तान का नाम भी आपकी फिल्मोग्राफी में दिखता है, और मुझे लगता है कि इस फिल्म की भी बात होनी चाहिए, क्योंकि अनंत बहुत अलग तरह से फिल्में बनाते हैं.
0: अनंत जी के साथ मैंने 4 फिल्में की है.
1: हाँ बिल्कुल, पीछे
0: मैंने
1: भी
0: गौर हरी दास्तान से शुरू की, वो जर्नी जो है गौर हरी दास्तान से शुरू हुई. फिर रफ बुक करके मैंने एक फिल्म की थी उनके साथ, और वो काफी साल तक थी, अभी शायद वो हटाई गई है.
1: अच्छा.
0: पे थी वो, और उसको थिएट्रिकल रिलीज भी विवेक वासवानी ने प्रोड्यूस किया था. वो एजुकेशन सिस्टम पे था, वहां पे मैंने एक फिजिक्स टीचर का किरदार निभाया था. और एक्चुअली

0: मैथ्स टीचर का किरदार निभाया था. और एक्चुअली रफ बुक में मैंने अपने आप को कास्ट कर लिया था.
1: अच्छा,
0: आनंद जी के ऑफिस में मैं उनसे मिलने गई थी. उन्होंने कहा मैं रफ बुक करके एक फिल्म लिख रहा हूँ. तो यू नो इट्स अ स्टोरी अबाउट अ फिजिक्स टीचर एंड ही डज दिस एंड ही एंड व्हाई कांट इट बी अ शी. Because he was actually offering me a role in the film, but not the central character.
1: Right.
0: So he said, okay. और मैं Dallas जा रही थी next day किसी और film के लिए. When I came back, he said कि okay, these are your dates and you come. And yeah, now it's not he, it's she. I was like, okay.
1: Wow, wow.
0: Wonderful.
1: क्या बात है? हाँ.
0: देन उसके बाद मैंने डॉक्टर रखमा बाई,
1: वो भी उनके साथ है, बिल्कुल, साथ जिसका जिक्र हमने अभी पीछे किया,
0: बिल्कुल,
1: देश की पहली डॉक्टर, महिला डॉक्टर,
0: देश की प्रैक्टिसिंग महिला डॉक्टर
1: जी. हाँ,
0: वो की मैंने. और उसमें तो बहुत ही मतलब इट वाज अ हार्ट, क्योंकि ये जर्नी थी उसकी. और आई हैड टू लर्न ऑल्सो मराठी फॉर दैट. पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जब मुझे बेस्ट एक्ट्रेस मिला तो वहां लोगों को लगा कि मैं तो पुणे चा मुलगी हूँ.
1: क्या बात है.
0: और मुझसे ऑडियंस ने आके मराठी में बातचीत करना शुरू किया एंड आई वॉज लाइक कंफ्यूज कि मैंने कहा मैंने उतना ही सीखा
1: जो वहां दिख रहा है.
0: वहां दिख रहा है. एंड इट वॉज ओल्ड मराठी ऑल्सो.
1: यस,
0: इट्स नॉट द बोलचाल मराठी दैट इज बींग स्पोकन नाउ. अपनी बेटी को मैं ये जरूर कहती हूँ कि प्लीज आप मराठी सीखो, यू नो, बिकॉज यू आर स्टडिंग मराठी इन स्कूल. तो आपको सीखना है और आप बिल्कुल सीखो, अच्छे से सीखो.
1: क्या बात है. तो तीन फिल्मों की बात हुई ना अनंत महादेवन के साथ.
0: अभी पास्ट टेंस करके और एक फिल्म अभी मैंने उनके साथ अभी खत्म की है.
1: क्या बात है, एक ही डायरेक्टर के साथ चार फिल्म.
0: हाँ, उनके साथ मुझे काम करने में बहुत मजा आता है. वो सब्जेक्ट हमेशा बहुत ही अलग अलग चूज करके लाते हैं. मतलब दे आर सो. तो पास्ट टेंस में परेश और स्टोरी टेलर भी की फिफ्थ. यस,
1: लीजिए एक फिल्म तो छूटी गई थी.
0: आई हैव डन स्टोरी टेलर आल्सो विद आनंद जी.
1: क्या बात है, क्या बात है. अच्छा, एंग्री इंडियन गॉडेस भी आपके करियर की एक इम्पोर्टेंट फिल्म है और बहुत फेस्टिवल्स में इस फिल्म ने अपना झंडा लहराया.
0: जी जी जी जी. एंग्री इंडियन गॉडेस एक्चुअली पूरा इम्प्रोवाइज्ड फिल्म है. और वो बहुत ही कमाल का प्रोसेस था उसमें, क्योंकि वहाँ पैन नलिन जो डायरेक्टर हैं उन्होंने हमें कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, कुछ नहीं था. ऑल द एक्सेप्ट फॉर माय कैरेक्टर एवरीबडी आल्सो डेवलप्ड देयर ओन कैरेक्टर्स. मैं एक्चुअली और एक फिल्म शूट कर रही थी उस समय विकास मिश्रा की, इसलिए मेरे पास डेट्स नहीं था. दैट्स व्हाई आई हैड टू जॉइन दैट प्रोसेस लेटर. तो इसलिए मुझे नलिन ने कहा कि आई हैव टू गिव यू अ कैरेक्टर वेर यू हैव टू फिट इन एंड रिजॉल्व द थिंग्स नाउ बिकॉज एवरीबडी एल्स इज ऑलरेडी सिलेक्टेड. दे हैव गॉन थ्रू द 20 डेज वर्कशॉप विच आई वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ. आई कुडंट बी, जबकि मैं मतलब इट वॉज अ थिंग दैट आई ऑलवेज फील अ लिटल कि यू नो आई वॉज देयर इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस और वो एंड.
1: लेकिन फिर बीच में चीजें
0: दूसरी. एनीवे, सो इट वॉज लाइक कंप्लीटली डिवाइज्ड एंड इट वॉज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस. क्योंकि उस समय निर्भया का केस हुआ था एक साल और सब लोग हिले हुए थे कि जिस ढंग का वायलेंस देखा गया, जिस ढंग की मतलब कॉन्वर्सेशंस पब्लिक में आई, यू नो एवरीथिंग वॉज. सो द फिल्म केम आउट ऑफ दैट. So it's a personal film for all of us. Angry Indian Goddesses.
1: वाह, बिल्कुल. और उस फिल्म को अपना प्रॉपर ड्यू मिला, उसका काफी नाम हुआ उस फिल्म का. यहाँ भी एक गाना सुनते हैं.
0: बिल्कुल.
1: कौन सा गाना होगा?
0: इस समय मुझे लगता है स्वानंद किरकिरे. मेरा दोस्त भी है और मेरे प्ले में उसने गाना लिखा भी है. उसका जो मतलब मेरा फेवरेट गाना बावरा मन.
1: हमने अब तक स्वानंद की आवाज में सुना है.
0: हाँ.
1: अब हम तनिष्ठा की आवाज में सुनना चाहते हैं.
0: स्वानंद माफ कर दे. पर ये एनएसडी में जब हम थे ना, वो तब से गाता था.
1: तब से गाते. हाँ. बिल्कुल बिल्कुल.

0: अब बातचीत को हमें उस मोड़ पर ले जाना होगा जहां आपकी जिंदगी अचानक एक दिन पूरी तरह से बदल गई। वो क्या था और वो कैसे सामने आया?
1: मैं फुल प्लेट शूट कर रही थी। फुल प्लेट की जर्नी बहुत मुश्किल रही क्योंकि प्री प्रोडक्शन में आई लॉस्ट माई फादर एंड आई वॉज वेरी क्लोज टू हिम और इट जस्ट मतलब उस समय मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं फिल्म क्यों बना रही हूँ, मैं कर क्यों रही हूँ ये। और मेरे असिस्टेंट्स और मेरा पूरा टीम बहुत वरिड था कि ये बना भी पाएगी कि नहीं। एक पॉइंट पे मैंने सोचा था कि नहीं अभी नहीं कर सकते, बट देन माई प्रोड्यूसर टोल्ड मी कि तनिष्ठा एडवांसेस जा चुके हैं, यू नो द होल टीम वॉज वर्किंग, वो उनके सैलरीज नहीं आएंगी, इफ़ यू कैन आई अंडरस्टैंड बट सो आई सेड ओके ओके गिव मी सम टाइम एंड देन विल। तो उसके बाद काफ़ी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आई फिल्म में, मतलब वाइल वी वर शूटिंग इट, सो इट वॉज एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल। और फिर फिल्म ख़त्म हुई, शूटिंग ख़त्म हुई तो मुझे दूसरे और एक को प्रोड्यूसर को लाना पड़ा टू फिनिश द फिल्म। इट वॉज इनक्रेडिबली स्ट्रेसफुल।

0: फिर जब वो हुआ और हमने एडिट खत्म की, मेरी तबीयत थोड़ी सी अजीब लग रही थी एंड आई हैड जस्ट रैंडमली गॉन टू माय गायनेकोलॉजिस्ट टू डू सम चेकअप्स, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा था कि इतना कुछ हो जाएगा। और वहाँ उन्होंने मतलब स्क्रीनिंग और इन सब के बाद कहा कि मुझे स्टेज 4 मेटास्टेटिक कैंसर है।
1: लेकिन इसके कोई लक्षण पहले कहीं नजर नहीं आया, आप काम करती रही लगातार।
0: तो इतना फैल गया था मेरा कैंसर मेरे बॉडी में
1: और उसने कोई संकेत नहीं दिए।
0: मतलब संकेत अभी मुझे लगता है कि शायद दिए, लेकिन वो ऐसा कुछ मतलब नहीं था, यू नो दैट इट इज। सो आई वाज लाइक ये कैसे हो सकता है।
1: बिल्कुल,
0: यू नो, एंड इट वाज अनरियल। और इट वाज जस्ट लाइक अ फ्यू मंथ्स बैक आई लॉस्ट माय फादर टू
1: द सेम थिंग।
0: या इट वाज, ही हैड क्रॉनिक माइलॉयड ल्यूकेमिया, CML। सो आई डिडंट नो हाउ वुड आई टेल माय मदर।
1: ओ गॉड।
0: तो मैं रिपोर्ट्स जो है, हर दिन एक पॉजिटिव रिपोर्ट निकलता था, मतलब आपके लिए वो नेगेटिव है उस समय। ये हर एवरी रिपोर्ट इज पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, ये भी। तो मैं रिपोर्ट्स गाड़ी में रखती थी और फिर ऊपर आई हैड 9 ईयर ओल्ड, अभी वो 10 साल की, 9 साल की थी, डॉटर एंड अ मदर हु हैड लॉस्ट हर हस्बैंड जस्ट लाइक यू नो ईयर बैक, एंड आई डिडंट नो हाउ टू टेल हर। बट ऑब्वियसली आई हैड टू टेल हर एट सम पॉइंट। मेरी बहन न्यूयॉर्क में रहती है, मैं उसके साथ बात कर रही थी, और मेरे कुछ एक बहुत अजीज दोस्त है दिल्ली में, वो मेरे स्पिरिचुअल गुरु भी है, वैसे दोस्त है, बट ही इज सच अ काम एंड अ ब्यूटिफुल पर्सन। तो मैंने मतलब आई जस्ट ब्रोक डाउन एंड आई वॉज टॉकिंग टू दीज टू पीपल। मेरी बहन ने मुझे सबसे पहले ये कहा कि दीदी आई विल कम बट यू कांट डू दिस अलोन, आई एम टू फार अवे, यू आर इन टू मच ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन, क्योंकि मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है, मैं सिंगल हूँ, मेरी बेटी के लिए एक माँ है सिर्फ और कोई नहीं है, मेरी मम्मी के लिए भी मैं ही सपोर्ट सिस्टम हूँ, नाउ दैट माई डैड इज नॉट देयर, इमोशनली प्रैक्टिकली फाइनेंशियली देर इज नोबडी एल्स, so how would I do this, and the expenses of my treatment is obnoxiously high.
1: Oh ho ho ho.
0: Initially insurance also refused my claim.
1: Kyun?
0: Unke bahut hi gande funde hote hain, uske andar main ja hi nahi rahi hu, and I had to fight and fight and fight with the insurance.
1: Aap jeeti?
0: Yes.
1: Mm-hmm.
0: But the thing is there were too many battles. You know, isme main heal kaise hu? Because it's also about healing and I was coming and the stress of the film.
1: वो तो रखा ही हुआ था।
0: तो it was just, I had reached the rock bottom the day the insurance claim got rejected. मेरा अगले हफ्ते कीमोथेरेपी शुरू और मेरा इंश्योरेंस का मैंने जो पेपर वर्क करके दिया था, जो मांगा था मैंने सब कुछ दिया उनको, उन्होंने फिर भी मुझे मैसेज आया कि योर इंश्योरेंस क्लेम हैज बीन रिजेक्टेड। That day I really hit the rock bottom ki yaar iske aage ab acha hi hoga, isse bura aur kya hoga.
1: Bilkul.
0: But my sister told me ki nahi, tumko apne doston ko batana padega. You have to tell your friends, nahi to if not now then when, wo sirf party ke liye hai kya. That's when I reached out. Mera ek girl gang hai. Maine sabse pehle unko bataya.
1: Wo log kaun hai?
0: शबाना जी हमारी गैंग की लीडर है,
1: इसीलिए तो मैंने नाम पूछे हैं जी।
0: और उसमें दिया है, दिव्या है, तन्वी है, कोंकणा है, विद्या है, शहाना है, संध्या मृदुल है, उर्मिला मतौंदकर है, दिस वाज आवर गर्ल गैंग, ऋचा चड्डा है। तो ये इन्होंने मुझे, एक्चुअली रिचा ने मुझे डॉक्टर का मतलब रेफरेंस दिया जिनके पास मैं गई फाइनली। शबाना जी आके मेरे मम्मी से मिलके, यू नो जावेद साहब शबाना मतलब टर्न बाय टर्न घर आए थे, उनको जो मतलब हौसला दिया, दैट रियली सॉर्ट ऑफ मेड माय मदर्स लाइफ इजियर, कि उनको लगा कि नहीं अकेली नहीं है। And apart from them, I have a lot of friends जो मेरे घर के आसपास रहते हैं, संजय सूरी है, ओनीर है, मेरे बहुत अच्छे अजीज दोस्त हैं दीप्ति गुप्ता जो सिनेमाटोग्राफर हैं, और मतलब उसका तो मैं क्या

0: कहूँ कि रात के 2 बजे भी उसको फोन करो तो वो आ जाती है।
1: गजब।
0: हाँ, अनुराधा शेट्टी है, सब बहुत सारे और भी दोस्त हैं जो सब टर्न्स लेने लग गए मेरे हॉस्पिटल के साथ। एंड तो ये जर्नी फिर ऐसा लगा कि प्यार और मोहब्बत से ना सब कुछ जीता जा सकता है। मेरा जब ट्रीटमेंट खत्म हुआ, फर्स्ट राउंड ऑफ ट्रीटमेंट खत्म हुआ, अभी भी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, आई एम स्टिल ऑन अ टारगेट मेडिसिन, मुझे हर
1: 1.5 साल बीत चुका है।
0: हाँ, 21 दिन बाद मुझे अभी भी हॉस्पिटल जाना पड़ता है मेरे टारगेट मेडिसिन के लिए। बट जो मेन मतलब कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडिएशन, इन सब के बाद मैंने एक पोस्ट लिखा था फेसबुक पे, और मुझे यही उस समय एहसास हुआ दैट हम लोग मतलब सब चीज रोबोट्स के थ्रू रिप्लेस करने जा रहे हैं, AI, बट इट इज एक्चुअली जस्ट द टच ऑफ अ रियल ह्यूमन बीइंग व्हिच हील्स एवरीथिंग। और मेरे डॉक्टर्स ने भी मुझे यही कहा था कि अगर तुम पॉजिटिव रहोगे, माइंड डाइवर्टेड रहेगा, and if you believe that you'll be okay, then you will be okay.
1: ये कितना मुश्किल
0: था। ये मुश्किल नहीं था, because मेरे पास ये सपोर्ट था, और मेरी बहन आई थी, मेरी बहन मेरी बेटी को अपने साथ न्यूयॉर्क लेके गई कुछ महीने के लिए जब मेरा कीमो चल रहा था। एटलीस्ट वन पर्सन इज टेकन केयर ऑफ। मैंने बोला था मेरी मम्मी को भी लेके जाओ, दोनों को ले जाओ तुम, पर मम्मी ने रिफ्यूज किया कि मैं तुम का अकेले छोड़ के नहीं जाऊंगी। आई थिंक दैट्स द थिंग दैट ये सपोर्ट, और फिर मैंने कीमोथेरेपी के दौरान इसी वजह से आई कुड फिनिश माय फिल्म, आई स्टार्टेड राइटिंग अ प्ले कॉल्ड ब्रेस्ट ऑफ लक।
1: ये प्ले का आइडिया जो शुरू होता है, ये वाली कहानी बताइए।
0: ये
1: इस पूरे दौर से आप
0: बिल्कुल, जिस दिन मुझे फर्स्ट मेरा रिपोर्ट आया था, मैं शारिब से मिलने वाली थी, और मैंने सोचा मैं मिल क्यों रही हूँ उससे, और मैंने सोचा था कैंसिल करूं, फिर मुझे लगा कि नहीं यार मिलती हूँ क्योंकि माइंड
1: डाइवर्ट होगा।
0: मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था मैं उसको बताऊंगी कैसा रिपोर्ट में आया है, पर मैं रोक नहीं पाई अपने आप को, एंड आई ब्रोक डाउन। उसने मुझे अपने पत्नी नसरीन से बात करवाया फोन पे, बिकॉज शी हैड गॉन थ्रू माउथ कैंसर,
1: वेरी डिफिकल्ट टाइम,
0: वेरी डिफिकल्ट। शी गेव मी अ लॉट ऑफ होप, और मैंने जैसे फोन रखा, मैंने शाहरुख को कहा अभी लिखते हैं हम इसी के बारे में लिखते हैं।
1: क्या बात है।
0: एंड इमेजिन दैट वाज इवन बिफोर आई हैड स्टार्टेड द ट्रीटमेंट। तो दैट इवनिंग वाज इनक्रेडिबल, क्योंकि हमारा और एक दोस्त इंद्रनील जो भी मेरे फिल्म में है, वो भी आया हमसे मिलने, और दैट वाज द लास्ट इवनिंग। एक तरफ से रो रहे हैं, दूसरी तरफ से मजाक कर रहे हैं कि अरे यार क्या है,
1: देख लेंगे।
0: मेरा ही बॉडी है ना, मैं ही बॉडी को कहूंगी कि अब ठीक हो जा। अपने ही सेल्स हैं विच हैव गॉन रूग, इट्स अप टू मी इफ आई कैन हील। ये मतलब इट जस्ट वेंट बैक एंड फोर्थ लाइक दैट, एंड दैट्स द डे मतलब शारिब को मैंने बताया कि यार यही इसी सब्जेक्ट पे करते हैं हम अपना प्ले। फिर मेरा कीमो शुरू हुआ तो मैंने लिखना शुरू किया, और जब एक ढांचा लिख लिया था मैंने, फिर शारिब और मैं मतलब हम लोग जैम करते गए और उसको आगे बढ़ाते गए, डायलॉग्स पे काम करना शुरू किया, और लास्ट कीमो साइकिल पे मैंने शारिब को बुलाया अपने कीमो हॉस्पिटल में, और वहां से एक बहुत ही कॉन्क्रीट शेप लेना शुरू किया प्ले ने।
1: क्या बात है। और इस पूरी जर्नी के दौरान वो आपने प्ले कंप्लीट भी कर लिया।
0: यस, हमने शोज भी किए अब तो।
1: पहला शो कब कहां हुआ था?
0: पहला शो G5A में फरवरी एंड में हुआ।
1: जी जी।
0: उसके बाद हम काला घोड़ा फेस्टिवल में हम लोगों ने परफॉर्म किया, लखनऊ में किया, और अभी 24 मई को रंगशीला में हमारा परफॉर्मेंस है, और फिर आगे और भी करेंगे शोज।
1: यहाँ एक गाने की जगह बनाई जाए।
0: हाँ,
1: सुनते हैं।

0: कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
1: इस शो को किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है और जो लोग इस पूरे दौर से इस मुश्किल से गुजर चुके हैं वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं इससे?
2: तो ब्रेस्ट ऑफ लक को बहुत ही बढ़िया रिस्पांस, मतलब वी कुडंट थिंक सर्वाइवर से और ऑनकोलॉजिस्ट से और आम जनता हर तरीके के ऑडियंस से बहुत बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। जैसे मेरे ऑनकोलॉजिस्ट भी आए थे देखने और लखनऊ में बहुत फेमस ऑनकोलॉजिस्ट आए थे और उन लोगों ने भी यही कहा कि ये प्ले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखानी चाहिए क्योंकि कॉन्वर्सेशंस अराउंड कैंसर एंड अराउंड ब्रेस्ट कैंसर अराउंड द फैक्ट दैट स्क्रीनिंग आप चाहे कितनी भी हेल्दी हो आपको क्या कब हिट करती है आप नहीं कह सकते और ये चीज़ हम प्ले के तहत कहना चाह रहे हैं कि और इमोशनली कह रहे हैं क्योंकि वो एक एंटरटेनिंग प्लेटफॉर्म भी है जिसमें हमने एक कहानी कही है। पर स्क्रीनिंग करवाना अगर आप 40 के हिट कर गए हो एज अ वुमन आज की तारीख में मैमोग्राफी करवाना टेस्ट करवाना ये बहुत ज़रूरी है। इवन इफ यू आर हेल्दी आपको पता नहीं है मैंने ये नहीं की ये गलती की मैंने क्योंकि मुझे लगा मैं तो फिट हूँ मुझे कुछ नहीं है मैं बहुत हेल्दी लाइफ लिव करती हूँ। सो बट यू जस्ट नेवर नो ये जो म्यूटेशंस क्यों होती है आज तक साइंस को नहीं मालूम। तो हम लोग बहुत सारे चर्चे करते रहते हैं कि अरे आयुर्वेदा कर लो या ये कर लो वो कर लो। हाँ उन सब चीज़ों से क्या होता है कि आपका जनरल हेल्थ अच्छा होता है तो प्रोग्नोसिस सबका अच्छा होता है लेकिन दैट डजंट गारंटी एनीथिंग। ये म्यूटेशंस क्यों होता है वी रियली डोंट नो साइंस डजंट नो इट और आपको चीज़ों को साइंटिफिक नॉलेज के थ्रू ही एनालाइज करना पड़ेगा और उस नॉलेज के बेसिस पे ही आपकी जिंदगी आपको जीनी पड़ेगी।
1: बिल्कुल इस तरह की जब लाइफ थ्रेटनिंग चीजें होती हैं तो करेज कायम रखना अपना मेंटल और इमोशनल बैलेंस कायम रखना

0: सबसे इम्पोर्टेंट होता है एज अ सर्वाइवर. इतने सारे लोग जो इन चीजों से, इन मुसीबतों से गुजर रहे हैं, उनको आप अपने अनुभव से क्या कहना चाहेंगे?
1: पहला तो ये कि मैं अपने आप को अभी भी सर्वाइवर कह सकती हूँ कि नहीं, मुझे नहीं मालूम. बट मैं ये मानती हूँ कि आज मैं यहाँ पे हूँ, आपके साथ बातचीत कर रही हूँ, आज मैं अपने फिल्म को लेकर दुनिया भर ट्रैवल कर रही हूँ, अपना प्ले कर रही हूँ, अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ, अपनी बेटी को पृथ्वी में वर्कशॉप करवाने ले जा रही हूँ. आई एम लिविंग माई लाइफ एंड दैट्स ऑल आई कैन डू एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. आप यही कर सकते हो.
0: और
1: हियर एंड नाउ, कल का तो हमने ना तो आपको पता है ना मुझे. ये रियलाइजेशन मुझे हमेशा से था, बट अब तो मतलब ये इंटरनल है. वी रियली डोंट नो. मतलब मैं एक दिन पूरा आई वाज एब्सोल्युटली फाइन, द वेरी नेक्स्ट डे आई हैड अ टर्मिनल इलनेस. हाउ बिजार इज दैट. मेरे दोस्तों को जब पता चला, वो सब ये कहने लगे कि टैन, मतलब यू नो, क्योंकि आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट स्मोक, आई एम नॉट दैट, यू नो, सिगरेट मैंने आज तक जिंदगी में हाथ नहीं लगाया. आई ईट हेल्दी, आई हैव ऑलवेज बीन फिट. मेरा कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है रिप्रोडक्टिव कैंसर्स का. मेरा ब्राका टेस्ट नेगेटिव है, विच इज सपोज टू बी द हेरिडिटरी एलिमेंट ऑफ इट. सो हाउ देन, यू जस्ट नेवर नो. तो आप वही पंडित रविशंकर ने जो कहा था ना कि जा हवा तह दे. आप अपनी जिंदगी जियो इस वक्त, हियर एंड नाउ. मैं जब कीमोथेरेपी पे जाती थी, मैं दोस्तों को बुला लेती थी वहाँ, हमारे अड्डे चलते थे वहाँ. कोई पोएट्री पढ़ रहा है, कोई म्यूजिक सुना रहा है, वो हम चुटकुले मतलब ये, ताकि वो वक्त निकल जाए. मेरे ट्रीटमेंट का जो पेन है, बाल झड़ रहे थे, मैंने शेव करवा लिए
0: और वो भी पब्लिक को दिखाया प्रॉपरली.
1: यस,
0: कि यस आई एम गोइंग थ्रू दिस.
1: यस, आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट. आई मीन दैट्स अ पार्ट ऑफ माई लाइफ. I am an artist and I experienced it. I'm experiencing different things and I will express myself through those experiences. और हम यही करते हैं और यही कर सकते हैं.
0: बिल्कुल. तनिषा, क्या कुछ फ्यूचर प्लान्स जैसी कोई चीज होती है लाइफ में, वो आपने कुछ कर रखा है कि अभी कल का क्या करना है?
1: नहीं. मत कल का सिर्फ पता है, क्योंकि मैं परसों दिल्ली जा रही हूँ, फुल प्लेट की एक स्क्रीनिंग है वहाँ हैबिटेट सेंटर में.
0: तो क्या अगले प्ले की कोई प्लानिंग है?
1: कुछ चीजें लिख रही हूँ, लेकिन वो कब आएगी, कब होगा, ये पता नहीं अभी. बट आई एम राइटिंग सर्टेन थिंग्स. फिल्म भी लिख रही हूँ, प्ले भी लिख रही हूँ.
0: तो एक्टिंग चलने वाली है या अभी आप डायरेक्टर हो गई हैं?
1: नहीं नहीं, एक्टिंग तो बिल्कुल चलने वाली है. अभी ब्रेस्ट ऑफ लक में तो मैं एक्टिंग ही कर रही हूँ. हमने लिखा है, हम एक्टिंग कर रहे हैं. मैंने एक्चुअली लीना को रिक्वेस्ट किया कि आप डायरेक्ट कर दो. सो शी हैज डायरेक्टेड इट.
0: ओके, वाओ, बढ़िया बात है. तो अब मुझे ये बताइए कि जब आप प्ले या फिल्म या लिखना ये कुछ नहीं कर रही है, मतलब कोई क्रिएटिव प्रोसेस नहीं है, उस बीच में क्या चल रहा होता है?
1: हाँ, क्रिएटिव लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है. फिर मैं स्विमिंग कर रही हूँ आजकल, बहुत मजा आ रहा है. तो आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन द पूल, थोड़ा वहाँ रिलैक्स भी हो जाते हैं. बेटी भी सीख रही है, स्विमिंग सीख रही है. देन आई स्पेंड टाइम विद हर. खाना बनाने में मुझे मजा आता है और आजकल थोड़ा सा मुझे अपने डाइट पे भी कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, तो मैं खुद अपना कुछ बना लेती हूँ.
0: क्या बनाती
1: है? हाँ, मैं बोलूंगी ना आपको हार्ट अटैक आ जाएगा मेरा ना आजकल जो हो रहा है. मम्मी कहती कि अच्छे इसको बुला लो, उसको बुला. मैंने कहा कि घर पे लोगों बुलाएंगे, खिलाएंगे क्या, क्योंकि क्यूजीन तो ये बन रहा है. मेरी वजह से अभी मेरी बेटी भी जो है वो हेल्दी सुन सुन के, उसका एक चैप्टर है साइंस में अबाउट फूड एंड विटामिन्स, उसको सब एफर्टलेसली आता है. इतना सुन चुकी है वो किस खाने में क्या विटामिन है, क्या खाने से क्या डेफिशिएंसी होगी.
0: राइट राइट. So she's an expert now.
1: Yeah.
0: बिल्कुल.
1: वो actually मुझे टीज करने लगती है. अभी मम्मी पता है क्या कहेगी, ये देखो ये टेस्टी भी है और हेल्दी भी है, इसमें पता है ये विटामिन है, वो मिनरल्स है और ये मिलेगा.
0: पहले ही बोल देती है. क्या बात है तनिषा. बहुत दिलचस्प बातचीत आपसे हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे फिर कभी बैठेंगे और फिर इसी तरह से बातें करेंगे.
1: बिल्कुल. और जाते जाते एक गाना
0: जरूर.
1: जीवन से भरी तेरी आंखें
0: मजबूर करें जीने के लिए सफर, फिल्म का ये गाना. इस गाने को इंदीवर ने लिखा है.
1: हाँ.
0: और म्यूजिक डायरेक्टर कल्याण जी हैं.

0: तनिषा बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती के स्टूडियो में आने के लिए।
1: थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, मुझे बहुत मजा आया चीजें शेयर करने में, एक्चुअली यहाँ आने में। और जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ से और
0: जरूर आइए, स्वागत है।
2: अभी आप सुन रहे थे तनिष्ठा चटर्जी से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन किया मनीषा सिंह ने और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता श्री कामले।

வந்தே மாதரம். ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की लेखनी से अवतरित दिव्य रचना जो बनी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए तेजोमय प्रेरणा।

स्वाधीनता दिवस के पावन अवसर पर सुनिए राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अनुवादों पर आधारित वंदे मातरम एक जय घोष, इस रूपक श्रृंखला की विशेष कड़ी।

शनिवार 15 अगस्त 2026 को दिन में 11 बजे केवल विविध भारती पर। विशेष मेगा एपिसोड वंदे मातरम, एक जय घोष।

0: दोस्तों नमस्कार, रंग तरंग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज का रंग तरंग कार्यक्रम विशेष है। इस कार्यक्रम में आज हमने एक ऐसे कलाकार को आमंत्रित किया है जिनके गाने सुनते ही आपके पांव थिरकने लगते हैं, होठ संग संग गुनगुनाने लगते हैं। तो अब आपको बता दें, वो हैं जाने माने गायक, संगीतकार, पियानो वादक अदनान सामी। तो आइए सुने गायक, संगीतकार और पियानो वादक पद्मश्री अदनान सामी से यूनुस खान की बातचीत।
1: बहुत बहुत स्वागत विविध भारती में अदनान जी। और मुझे ये बताएं कि इतना लंबा सफर म्यूजिक की दुनिया में तय करने के बाद भी जब कोई नया गाना रिलीज होता है, क्या चल रहा होता है आपके दिल में?
2: वही चल रहा होता है जो पहले दिन चला था। मतलब कि जिस तरह की बटरफ्लाईज या गुदगुदियां पेट में पहले दिन से थी, शुरू से
1: जी,
2: वो आज भी बरकरार है और आज भी उतनी शिद्दत के साथ होती है और नर्वसनेस होती है, बेचैनी होती है कि हमारी जो मेहनत है वो लोगों को पसंद आएगी या नहीं आएगी। और बस यही दुआ रहती है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, वो लोगों को पसंद आए। अब तक लोगों ने बेतहाशा प्यार दिया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और बस दुआ ये है कि मैं उनकी जो उम्मीदें होती हैं उन पे मैं ठीक तरह से उतरूं और उनको वो चीज़ें मैं दूं। तो आज भी उतनी नर्वसनेस होती है, इसलिए जब मेरी नए गाने की जो वीडियो जब आप देख रहे थे, तो मैं जब आपके रिएक्शंस सुन रहा था, तो मैं उसी तरह से बेचैनी के साथ सुन रहा था जैसे कि मैं पहली दफ़ा कर रहा हूँ। क्योंकि हर दफ़ा जब आप कोई चीज़ करते हैं तो कोशिश ये होती है कि कोई अलग सी चीज़ करें, कोशिश करते हैं कि नई चीज़ करें, और उसके तहत कुछ पता नहीं होता कि लोगों को जो देख रहा होता है या सुन रहा होता है कि उनको वो चीज़ पसंद आएगी कि नहीं आएगी
1: जी।
2: तो और जितना एक और एक्स्ट्रा चीज़ जो होती है, जो शुरुआत में नहीं होती
1: जी,
2: जब शुरुआत में आप जब काम शुरू करते हैं तो कोई आपका कोई पिछला गाना नहीं होता जिसमें लोग बोले कि नहीं वो ज़्यादा अच्छा था। वो पहला गाना जो होता है वो कहते हैं यार वाह क्या बात है, क्योंकि कोई पुराना गाना होता ही नहीं है जिसके साथ वो कंपेयर करें। लेकिन फिर जैसे आप आगे आगे बढ़ते जाएं तो ये बहस शुरू हो जाती है कि कुछ लोग बोलते हैं नहीं यार ये बड़ा अच्छा था, और फिर कुछ लोग बोलते हैं नहीं लेकिन वो बात नहीं रही। या फिर वो बोलते हैं यार वो पिछला गाना

0: बेटर था, यू नो वो लेवल,
1: खुद से मुकाबला होता है।
0: हाँ, फिर इंसान खुद से ज्यादा मुकाबला कर रहा होता है
1: जी।
0: तो, और क्या है कि एक तरफ से आप ये कहने की कोशिश कर रहे होते हो कि यार वो उस वक्त का था, उसके साथ मत कंपेयर करो, लेकिन मैं समझता हूँ लोगों के जज्बातों को भी कि क्योंकि नए गाने के ऊपर भी ये एक तरह की नाइंसाफी है, क्योंकि आप एक नए गाने को एक पुराने गाने जो आपके अंदर घुसा हुआ है
1: जी
0: पता नहीं कितने सालों से, जिसने वो एक मकाम बनाया हुआ है आपके पास, मेरे को ओवरनाइट तो नहीं हुआ था
1: जी।
0: आज
1: जी।
0: अगर जिस तरह से लोग तेरा चेहरा के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि जी वाह क्या गाना है, लेकिन उसको भी वक्त लगा था,
1: जी
0: उसको भी वक्त लगा था क्या कहते हैं लोगों के दिमाग में बैठने के लिए। उस वक्त जब तेरा चेहरा आया तो उन्हें कुछ लोगों ने कहा हिंदी भीगी भीगी रातों में ज्यादा बेहतर गाना था
1: जी।
0: तो मैंने कहा यार वो गाना जो है आपके अंदर आपके सिस्टम में सालों से बैठ गया है,
1: जी
0: ये नया गाना इसको थोड़ा वक्त तो दो। अच्छा, फिर वक्त के साथ साथ कुछ गाने जो हैं वो ज्यादा मकबूल हो जाते हैं,
1: जी
0: कुछ गाने जो हैं वो फेड आउट हो जाते हैं, यू नो। अब जैसे कि एक मजे की बात ये है कि एक मेरा गाना है नैन से नैन मिला, अच्छा जब वो रिलीज हुआ था तो किसी को समझ नहीं आई, क्योंकि इट वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम फॉर एग्जाम्पल
1: व्हाट यू डू नॉर्मली।
0: हाँ मतलब कि फॉर एग्जाम्पल कभी तो नजर मिलाओ, भीगी भीगी रातों में, तेरा चेहरा, मेरी याद रखना, एंड देन सडनली लिफ्ट करा दे
1: जी बारिश
0: बारिश, एंड देन सडनली नैन से नैन आ जाता है जहाँ पे वो क्लासिकल भी है बीच में, एंड सो ऑन सो फोर्थ, तो वो शुरू शुरू में नहीं पसंद आया, लेकिन वो वक्त के साथ साथ इट बिकम अ काइंड ऑफ अ कल्ट सॉन्ग, वो बहुत पॉपुलर हो गए खासतौर पर डांस प्रोग्राम्स में एंड रियलिटी शोज में। तो वो कुछ गाने होते हैं जो बाद में अचानक उभर जाते हैं
1: जी।
0: और कुछ गाने जो होते हैं वो फेड आउट भी हो जाते हैं, तो
1: ऐसे कौन से गाने हैं जो आपके दिल के करीब थे लेकिन पब्लिक से उतना खास रिस्पॉन्स शुरुआत में नहीं मिला लेकिन आपके दिल के करीब आज भी है?
0: दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आई थिंक नैन से नैन,
1: जी
0: क्योंकि नैन से नैन
1: ये तो बेशक।
0: हाँ मतलब कि नैन से नैन जब मैंने बनाया था
1: जी
0: तो मैं उस गाने पे बहुत उस वक्त उम्मीदों के साथ में बैठा हुआ था कि ये गाना जो है ये एकदम लोगों को पसंद आएगा, और वो उस वक्त नहीं पसंद आया इतना, क्योंकि लोग जो गाने उससे पहले रिलीज हुए थे वो उसी एल्बम के, पहले तेरा चेहरा था, फिर मेरी याद रखना, फिर चैन मुझे आए ना
1: जी
0: गाना था, अच्छा उसके बाद फिर नैन से नैन आया, तो क्या था कि वो एकदम अलग किस्म का गाना था इन कंपैरिजन टू द प्रीसीडिंग सॉन्ग्स, तो वो कहीं पे लोगों को झटका लगा, तो क्योंकि दे वर कंपेयरिंग इट एट दैट पॉइंट इन टाइम विद द अदर सॉन्ग्स, तो वो वहां उन जॉनर्स में वो फिट नहीं आ रहा था, लेकिन मेरे दिल के बहुत करीब था। तो फिर बाद में तो मेरे अंदर थोड़ी सी मायूसी हुई, क्योंकि मैंने कहा यार ये तो होना चाहिए, यू नो इसमें राग दरबारी है, ये तो बड़े करीब है हमारे हमारे म्यूजिक में, राग दरबारी के तकरीबन सारे गाने सुपरहिट रहते हैं, राग ही ऐसा है, तो आई वाज क्वाइट यू नो स्लाइटली डिसअपॉइंटेड, यू नो, तो लेकिन मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा पर ठीक है, यू नो आई मीन जो हुक्म जनता का उसको तो सारा आंखों पर बंदा करता है, यू नो। तो कुछ सालों के बाद मैंने देखा कि इट वॉज सडनली गेटिंग रिवाइव्ड,
1: राइट,
0: एंड इट वॉज गेटिंग रिवाइव्ड फ्रॉम द रियलिटी शोज, क्योंकि उसके अंदर रिदम जो था ना वो बहुत यूनिक किस्म का रिदम था
1: जी,
0: तो वो जो डांसर्स थे उनको बेहद पसंद आ रहा था, क्योंकि वो इट लेंट इटसेल्फ टू अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ इंटरेस्टिंग डांस,
1: वाओ,
0: तो वहां से अचानक वो गाना जो था
1: वापस आ गया,
0: वो वापस आया और फिर इट बिकेम वेरी पॉपुलर,
1: बिल्कुल,
0: सो मच सो के फिर, और मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात, क्योंकि एक होता ना वो एक वो जो एक निग्लेक्टेड बच्चा होता है वो अचानक जो है उसको अपनी जगह मिल रही है, यू नो,
1: क्या बात,
0: तो देन आई हैड टू देन आल्सो इंक्लूडेड इनटू माय कॉन्सर्ट्स,
1: यस,
0: क्योंकि अक्सर इंसान कॉन्सर्ट्स जो है वो उन्हीं गानों को शामिल करता है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर होते हैं
1: जी,
0: यू नो, तो उसकी अहमियत ऐसी हो गई थी फिर जिसकी वजह से वो फिर पॉपुलर हुआ।
1: जब आप आशा जी के साथ काम कर रहे थे
0: जी
1: तो वो किस तरह की आपकी कैफियत थी और उनसे जुड़ी कोई यादगार घटना हमारे साथ शेयर कीजिएगा?
0: देखिए जैसे मैंने अक्सर ये जिक्र किया है, आशा जी का और मेरा जो रिश्ता था वो एक बहुत ही अलग किस्म का रिश्ता था, एक तरफ से वो मेरी माँ का दर्जा था उनकी।
1: इसकी शुरुआत कैसे हुई?
0: सबसे पहली मेरी मुलाकात उनसे हुई थी तकरीबन 10-11 साल की उम्र में, आई वॉज अ किड इन लंदन, और वो और पंचम दा दोनों आए हुए थे उनका कॉन्सर्ट था रॉयल आल्बर्ट हॉल में,

0: तो जो रिकॉर्ड भी हुआ है
1: जी,
0: उसकी रिकॉर्डिंग भी है। तो मैं उस कॉन्सर्ट में था, तो जो ऑर्गेनाइजर्स थे उस कॉन्सर्ट के वो हमारे फैमिली के जानने वाले थे। तो मेरी अम्मी ने उनसे कहा कि देखो हम उनसे मिलना चाहते हैं, और उनको पता था कि बेटा जो है वो बहुत म्यूजिक में है एंड ऑल दैट। तो उन्होंने उस कॉन्सर्ट के बाद उन्होंने एक मुलाकात करवाई लंदन में, क्योंकि वो कॉन्सर्ट के बाद दे वर जस्ट स्पेंडिंग फ्यू डेज एज अ हॉलीडे। तो मैं वहाँ पे गया अपनी वालदा के साथ, तो मैं म्यूजिक 5 साल की उम्र से मैं बजा रहा था। तो लेकिन उस वक्त मैं सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में बजाता था, तो मैं अपनी कैसेट लेके गया हुआ था, कुछ रिकॉर्डिंग्स थी मेरी पियानो पे। तो आशा जी मिली, तो आशा जी को मैंने अपनी पोर्टेबल मशीन पे मैंने उनको म्यूजिक सुनाया, उन्हें बेहद पसंद आया। तो उन्होंने कहा कि एक सेकेंड ठहरो,
1: पंचम
0: ये तो मैं पंचम को बनाती हूँ, ये तुमको पंचम को भी सुनाना पड़ेगा। मैंने कहा जी ठीक है। आई यूज टू लव आडी बर्मन, बल्कि बचपन में हम जब लिस्बन में रहते थे तो वहाँ पे हिंदी फिल्में जब आती थी तो मैं बस ये ढूंढ रहा होता था, लोग अक्सर हीरोज या हीरोइंस को देख रहे होते थे, मैं ढूंढता था कि बर्मन नाम कहाँ पे है।
1: वाह वाह वाह,
0: अब बर्मन नाम है तो बस ठीक है, मैं देखूंगा फिल्म। और वो यकीनन, चाहे वो मुझे अभी तक याद है, वहां पे मैंने अभिमान देखी, मैंने मैंने यादों की बारात देखी, दीवार देखी, शोले देखी, वहीं पे सब बर्मन। लेकिन मुझे एक उलझन थी कि यार ये SD और RD क्या है।
1: हाँ, बिल्कुल
0: मुझे समझ नहीं आती, तो ना ही मुझे कोई बताए
1: जी
0: बर्मन है ना, बस ठीक है मैं देखूंगा। बाद में पता चला कि बाप बेटे, अब समझ भी आता है कि भाई उनका जॉनर जो था, जो मिठास थी, वो उसमें एक कॉमन DNA था।
1: यस,
0: यू नो, सो यू कुड टेल। सो एनी हाउ पंचम दा आए और मैंने उनको कैसेट सुनाई। अच्छा, उनका रिएक्शन जो था वो बड़े मजेदार था।
1: हाँ.
0: उनका रिएक्शन जो था वो थोड़ा शक्की मिजाज का था। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, उन्होंने कहा ये तुमने बजाया? मैंने कहा हाँ जी मैंने बजाया। अगर तुमने बजाया तो बहुत अच्छा बजाया। मैंने कहा अगर क्या मतलब है
1: जी?
0: अगर से मतलब कि अच्छा, मैं लियो की शान के खिलाफ है कि अगर आप उसकी
1: गुस्ताखी कर दें,
0: गुस्ताखी कर दें या फिर शक करें उसकी बात के।
1: जी जी,
0: मैं भी फिर जिद में, मैंने कहा हाँ जी मैंने ही बजाया। देन ही वुड टर्न अराउंड एंड से हाँ हाँ अगर तुमने बजाया तो वो बहुत अच्छा बजाया। मैंने कहा जी मैंने ही बजाया। अच्छा, वो भी उनके अंदर भी एक थोड़ा सा बचपना था। ही वेंट इन टू द रूम नेक्स्ट डोर एंड ही ब्रॉट आउट अ पोर्टेबल कैसियो।
1: जस्ट टू टेस्ट यू।
0: हाँ, मतलब कि उस जमाने में कैसियोज जो थे ना, उनके सबसे नए, मतलब कि नए निकले थे कैसियो ब्रांड से, विच वर पोर्टेबल। बाद में दुनिया में बेतहाशा पोर्टेबल आ गए थे, लेकिन कैसियो वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंपनीज दैट स्टार्टेड दीज पोर्टेबल वन। अच्छा, ही ब्रॉट आउट अ कैसियो, मैंने कहा बजा के दिखाओ।
1: ओ हो,
0: तो मैंने बजा दिया। ही लुक्ड एट मी एंड ही सेड हाँ तुमने ही बजाया।
1: क्या
0: बहुत अच्छा बजाया,
1: क्या बात,
0: यू नो। एंड दैट्स व्हेन ही वाज कन्विंस्ड दैट इट वाज मी हु हैड प्लेड इट, यू नो।
1: मतलब वो इतना नायाब था।
0: जी जी जी,
1: अनबिलीवेबल हो गया था।
0: हाँ,
1: द ग्रेट पंचम के लिए बिलीव करना कि ये बच्चा जो है वो इतना शानदार बजा सकता।
0: हाँ, करेक्ट।
1: तो बचपन से आप जादू ही रहे हैं।
0: तो उसके बाद फिर ये हुआ कि मुझे अभी तक याद है आशा जी के अल्फाज कि उन्होंने कहा कि देखो बेटा, अगर तुम इसी तरह से मेहनत करो तो शायद एक दिन तुम म्यूजिक डायरेक्टर बनो।
1: वाह।
0: तो मैंने कहा यार, मतलब कि क्या बात है, यू नो, आई वाज लाइक वाओ, यू नो, दी आशा भोसले सेइंग दिस टू मी। और देखो प्रोफेसीज भी कभी कभी कैसे निकलती हैं कि मेरा पहला रिकॉर्ड और मेरा पहला रिलीज इंडिया में वो उनके साथ था।
1: जी,
0: यू नो, आई मीन शी कुड नॉट हैव प्रेडिक्टेड दैट, नोबडी कुड हैव प्रेडिक्टेड दैट।
1: यस,
0: दिस वाज फेट, यू नो, एंड दिस वाज डेस्टिनी, एंड इट हैपेंड। एंड वो खुद इस बात पे हैरान है कि देखो याद है मैंने तुम्हें कहा था। एंड मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल मुझे याद है। एंड आई सेड देखो ऊपर वाले ने किस तरह से हमको इकट्ठे किया कि आपने ये बात बोली और जब मेरा पहला रिलीज हुआ तो आप ही के साथ हुआ। तो मैंने कहा ये ऊपर वाला ही चीजें तय करता है।
1: कुछ बहुत इंटरेस्टिंग वाकयात हुए होंगे इस पूरे एल्बम को बनाने के दौरान, क्योंकि आशा जी वाज वेरी जॉली एज वेल एज वो बहुत मेहनत करती थी।
0: मैं आपको एक चीज बताऊं कि जब हम पहले दिन जा रहे थे स्टूडियो लंदन में, तो मुझे अभी तक आशा जी यूज टू बी अ वेरी, मतलब कि बहुत जॉली मिजाज की थी, बहुत हंसमुख थी और बहुत बबली थी, अपने एटीट्यूड उनका बड़ा ज़बरदस्त था। और शी वॉज़ वेरी टॉकेटिव, बहुत बोलती थी अलग अलग चीज़ों पर।

0: एंड शी वॉज ऑलवेज फुल ऑफ लाइफ. तो जिस सुबह मैंने उनको पिक किया उनके होटल से, और हमारा रास्ता जो था स्टूडियो का तकरीबन 40-50 मिनट का था. अब वो अनकैरेक्टरिस्टिकली क्वाइट, हम दोनों पीछे बैठे हुए थे और वो बस क्या कहते हैं गाड़ी में बाहर बस देख रही थी और चुप थी.
1: आपके लिए तो बहुत अनकंफर्टेबल हो गया.
0: अच्छा, अब मैं यू नो मैं तो एकदम अननर्व हो गया ना
1: जी.
0: मैं बहुत ज्यादा अननर्व हो गया. मैं बहुत परेशान हो गया कि मैंने कहा यार मुझसे कोई गलती हुई है, मैंने कोई गलत बात बोल दी, पता नहीं क्या चक्कर क्या है, इतनी क्वाइट क्यों है. क्योंकि वो कभी भी इस तरह से, मैंने उनको कभी इस तरह से इतना चुप नहीं देखा. तो देयर वाज दिस वेरी अनकंफर्टेबल साइलेंस इन द कार. अच्छा, मैंने कोशिश की थोड़ी सी पोलाइट कॉन्वर्सेशन, यू नो ठीक ठाक सोई आप कुछ चीज़ की, हाँ सब ठीक ठाक. देन शी वुड स्टॉप क्वाइट. मैंने कुछ और मैं बात बोलूँ तो एक एक अल्फाज के साथ जवाब दे दिया. ये नहीं कि कोई गुस्से में या कुछ नहीं, बस क्वाइट. थोड़ी देर गुजरी, मैंने कहा हिम्मत करके मैंने आशा जी से पूछा, मैंने कहा आशा जी क्या हुआ है, सब ठीक तो है ना, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है. तो शी सेड मैं सोच रही हूँ. मैंने कहा किस बात की सोच रही हैं आप? सोच रही हूँ कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं. मैंने कहा क्या कर पाएंगे, मुझे अभी तक समझ नहीं आई. सोच रही हूँ कि मैं ये रिकॉर्डिंग ठीक तरह से कर पाऊंगी कि नहीं. मैंने कहा आशा जी आप ये कह रही हैं, मुझे तो फिर चुल्लू पर पानी में डूब जाना चाहिए. क्योंकि अगर आप दी आशा भोसले इज स्केर्ड और फियरफुल, इफ यू आर स्केर्ड कि आपसे रिकॉर्डिंग होगी या नहीं होगी, तो मैं फिर किधर जाऊं
1: जी. जी
0: मैं तो बच्चा हूं आपके सामने. मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि मैं उनको थोड़ा सा, मैं कहा आशा जी फॉर गॉड सेक यू नो एंड ऑल दैट. नहीं नहीं समय तुम्हें नहीं पता, यू नो जब भी हम नया काम पकड़ते हैं तो ये फीलिंग होती है
1: जी.
0: तो मैंने कहा अच्छा, यू नो मैं क्या बोल सकता हूँ. तो अच्छा, उनकी बेटी वर्षा
1: जी
0: वो भी उनके साथ आई हुई थी लंदन
1: जी.
0: तो जब हम पहुंचे स्टूडियो में, मैंने वर्षा को फोन किया. अच्छा, वर्षा के साथ मेरी बड़ी बहुत क्लोजनेस, बहुत दोस्ती थी. शी वाज अ वंडरफुल पर्सन, गॉड ब्लेस हर सोल. मैंने वर्षा को फोन किया, मैंने कहा वर्षा मुझे एक चीज बताओ, ये आशा जी शी इज वेरी क्वाइट. मैंने पूरा पूरा बताया. अच्छा, वर्षा यूज्ड टू बी अ रियल चिल्ड आउट पर्सन, यू नो. आई इज लाइक दैट ओनली. मैंने कहा क्या मतलब? वो डोंट वरी अबाउट इट. वो हर नए प्रोजेक्ट से पहले उनका यही हाल होता है, ये बिल्कुल नॉर्मल है. और ये करके उसने ठक कर दिया. मैंने कहा यार ये ऐसी कैसी हो सकता है. श्योर इनफ जैसे वो माइक्रोफोन के सामने गई,
1: रूप बदल गया.
0: मतलब कि इट वाज लाइक अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द स्पॉट.
1: वाओ,
0: शी सडनली बिकेम अ जायंट.
1: क्या बात, मेटामॉर्फोसिस.
0: सामने वो मेटामॉर्फोसिस लिटरली जैसे होता है ना
1: जी.
0: माय गॉड, उसके बाद जो एटीट्यूड था ना कि यू नो थ्रो एनीथिंग एट मी आई कैन टेक इट, बल्कि मैं इसको लेके इसको चबा के उसको 10 और तरीकों से. इट वॉज लाइक दैट. इट वॉज लाइक मैं उनको एक लाइन देता था, वो कहती मैं इस तरह भी गा लेती हूँ, मैं इस तरह भी गाती हूँ, इस तरह भी गाती हूँ. मैं कह रही यार मुझे सारे पसंद है, मैं क्या करूँ. आई वॉज लाइक अ किड इन अ कैंडी स्टोर. जैसे वो होता ना, लालच नहीं हो जाती कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए. शी कुड इंटरप्रेट मेलोडी इन सो मेनी डिफरेंट वेज दैट शी वुड स्पॉइल यू फॉर चॉइस.
1: क्या बात.
0: एंड शी वुड स्पॉइल द म्यूजिक कंपोजर, क्योंकि बाद में आप किसी और के साथ काम करो ना, क्योंकि बस यही है.
1: तो आपको याद आए कि चॉइस थी.
0: ऑफ कोर्स, मतलब कि यार, मतलब कि इन्होंने आदत खराब कर दी. हाँ, कभी कभी दूसरों के साथ कई दफा काम करके, मतलब यार मुझे एक और ऑप्शन है, बस यही है. तो यू नो आई मीन द पॉइंट ऑफ द मैटर इज दैट ऑफ कोर्स अदर सिंगर्स आर ग्रेट, दैट्स नॉट अ पॉइंट, बट शी वाज अ फिनोमेना.
1: जी,
0: शी वाज अ फिनोमेना एंड दैट इज व्हाई शी वाज आशा भोसले. यू नो जैसे लता जी ने कहा, लता जी ने एक बड़ी खूबसूरत बात बोली. उन्होंने कहा जो गाने मैं गा सकती हूँ वो आशा गा सकती है, लेकिन जो गाने आशा गा सकती है वो मैं भी नहीं गा सकती.
1: वाह,
0: आई मीन दैट कुड,
1: कितनी खूबसूरत,
0: कितनी खूबसूरत और कितनी बड़ी बात
1: जी.
0: और कौन इंसान कह रहा है, लता मंगेशकर. दैट्स अ ह्यूज थिंग एंड दैट्स प्रोबब्ली वन ऑफ द अल्टीमेट कॉम्प्लीमेंट्स शी कुड हैव गॉटन फ्रॉम एनीवन
1: जी.
0: तो दैट इज व्हाई शी वाज आशा भोसले. लेकिन मजे की बात, ये तो एक किस्सा था. एक और बड़े मजे का किस्सा जो था
1: जी,
0: वो इसी प्रोजेक्ट में था. अब हम लंदन में रिकॉर्ड कर रहे हैं. अब हमारा कल्चर और ब्रिटिश कल्चर या यूरोपियन कल्चर जो है वेस्ट का, वो बड़ा डिफरेंट है. इन द सेंस कि हमारा जो एक ट्रेडिशन है हमारे कल्चर में, जिस तरीके से हम बड़ों की इज्जत करते हैं, हम या तो जी लगा देते हैं, या फिर अगर हमारे माँ बाप के अगर दोस्त हों तो वो ऑटोमेटिकली अंकल बन जाते हैं या आंटी बन जाते हैं. यू नो व्हाट आई मीन. तो हम इस तरह की तहजीब जो है हमारे कल्चर में बहुत अंदर है कि हम सबको बहुत इज्जत प्यार के साथ,

0: इसका ये मतलब नहीं कि वेस्ट जो है वो अगर नाम से पुकारते हैं उसका ये मतलब नहीं कि वो उनकी इज्जत नहीं करते, बस वहाँ का ट्रेडिशन अलग है
1: जी,
0: यू नो. तो अच्छा, अब क्या था कि मैं तो जानता हूँ कि हमारा ट्रेडिशन क्या है. अब आशा जी हैं और या फिर आशा आंटी हैं या आशा ताई हैं या जो भी जो हमारे अब जैसे मेरी बेटी मदीना 9 साल की है, वो आशा जी को आशा दादी बुलाती है.
1: वाह,
0: यू नो,
1: क्या प्यारी बात.
0: तो हाँ, तो द पॉइंट इज कि ये हमारे अंदर एक चीज होती है. अब अगर मेरे कोई कॉलीग है तो वो उनको अंकल बुलाएगी या काका बुलाएगी या व्हाटएवर. तो ये चीजें हमने सिखाई, हमारे ट्रेडिशन में है, व्हिच आई थिंक इज अ ब्यूटीफुल थिंग
1: जी.
0: अच्छा, अब क्या हुआ कि पहली दफा आशा जी मेरे साथ रिकॉर्ड कर रही है लंदन में. तो अब मैंने सोचा, मैंने कहा यार आशा जी कम्स फ्रॉम एन ओल्ड स्कूल ऑल्सो. मुझे बाद में पता चला था शी वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव पीपल आउट देयर, यू नो व्हाट आई मीन. लेकिन मुझे इतना नहीं पता था उस वक्त. तो मैंने दिल में सोचा, मैंने कहा यार ये सारे बंदे जो हैं जो इंजीनियर्स और ये जो सारे जो काम करते हैं तो सब गोरे हैं, तो ये तो बिल्कुल फट से क्या कहते हैं फर्स्ट नेम बेसिस पे आ जाते हैं बेतकल्फी के साथ. अब उसका ये मतलब नहीं कि वो डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उनका तरीका ही ऐसा है, उनका ट्रेडिशन ऐसा है. लेकिन मैंने कहा अगर आशा जी माइंड कर जाए तो फिर तो मेरी तो ऐसी की तैसी हो जाएगी, मैंने तो रिकॉर्डिंग करनी है उनके साथ अगले हफ्ते. एक मैंने पूरे हफ्ता भर रिकॉर्डिंग करनी है, तो अगर उनका मूड पहले दिन ही खराब हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा. तो उन्होंने पूछा है, अच्छा मुझे सैमी बुलाते थे क्योंकि अदनान उस वक्त जरा मुश्किल था. ऑलराइट सैमी, व्हाट्स हर नेम. आई सेड लिसन शी इज अ लेजेंड. या आई नो, आई मीन यू टोल्ड अस बिफोर शी इज अ लेजेंड. या बट व्हाट्स हर नेम. मैंने कहा कि यार अगर मैं उनको बोलूंगा आशा बोल से हे आशा, यू नो. मैंने कहा यार ये तो
1: दिक्कत हो जाएगी,
0: ये जो दिक्कत हो जाएगी अगर वो माइंड करेंगे तो फिर मेरा क्या होगा. तो मैंने कहा हर नेम इज आशा जी.
1: Wow.
0: So he said, but what's the first full name? I said, her name is Asha Ji Bhosle.
1: What a trick.
0: हाँ, तो उन्होंने कहा आशा जी भोसले. I said, yeah. Okay, fine. और वही हुआ. नाम फर्स्ट नेम पे ही बुलाना था ना उन्हें. तो जैसे आशा जी एंटर हुई, क्या कहते हैं स्टूडियो के अंदर, हाय आशा जी, इट्स एन ऑनर टू मीट यू. अच्छा, आशा जी जो थी बड़ी इंप्रेस्ड हुई
1: जी और
0: मेरी तरफ. उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ये हमारी परंपरा को कितना अच्छा जानते हैं. मैंने कहा बस देख लो आशा जी. आशा जी, कैन यू जस्ट से दैट वन मोर टाइम अ लिटिल लाउडर प्लीज. कितने तहजीब वाले हैं ना. वो इतनी खुश हुई कि उन्होंने सब, आई विल मेक इंडियन टी फॉर यू. तो शी वेंट इनटू द किचन, शी मेड कड़क चाय, टिपिकल कड़क चाय सबके लिए. और वहां से शुरुआत हुई हमारी रिकॉर्डिंग की. एंड बाद में बड़े सालों बाद मैंने फिर आशा जी को वो किस्सा सुनाया. मैंने कहा पता कि वो कैसे हुआ. बड़े शैतान हो तुम, उन्होंने मुझे बताया नहीं इस तरह. मैंने कहा शी सेड एंड शी हरसेल्फ सेड टू मी
1: जी
0: सामी, इस तरह से मैं जानती हूँ उनका कल्चर, मैंने बहुत काम किया उनके साथ, मैं जानती हूँ कि वो इस तरह से. मैंने कहा मुझे तो नहीं पता था ना
1: जी.
0: तो मैं तो अब चाह रहा था कि आप किसी भी तरीके से ऑफेंड हो जाएं किसी तरीके से, कि होता है कि भाई कभी कभी कुछ लोग जो हैं वो बुरा मान जाते हैं. तो चीज़ें नहीं, मैं इस तरह की चीज़ों पर बुरा नहीं मानता. मैंने तो ज़िंदगी में ऐसे ऐसे लोग देखे जो ऐसी ऐसी इज्जत करते हैं लेकिन पीछे से छुरा मार देते. तो नाम से कुछ नहीं होता, नियत से होता है, जो बहुत बड़ी बात है, जो सच बात भी है. तो बहुत तरह की बहुत सारी चीजें थी. अपार्ट फ्रॉम म्यूजिक देयर वर मेनी मेनी थिंग्स दैट आई लर्न फ्रॉम हर. जैसे मैंने कहा ना कि वो एक माँ का दर्जा रखती थी मेरे दिल में, तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, ना सिर्फ संगीत के बारे में, ना सिर्फ माइक्रोफोन के सामने आने की जो टेक्निक्स होती हैं, लेकिन जिंदगी के बारे में बहुत कुछ उन्होंने मुझे सिखाया. बहुत छोटी छोटी ऐसी ऐसी बातें उन्होंने मुझे सिखाई जो अक्सर बहुत सारे लोग इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन उनकी बातें, उनकी जो कहावतें थीं वो बहुत अनमोल थीं और आज भी मेरे दिल में बसती हैं. और यू नो, बहुत कुछ सीखा और बहुत प्यार वाली थी. शी वॉज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन.
1: यस,
0: जो थी वो दिल के सामने और शक्ल पे दिखता था उनका. उनसे लड़ती भी थी.
1: अच्छा,
0: ओ एंड हाउ. मतलब कि वो मेरे साथ लड़ती भी थी. अगर मैं लेट से 2-4 महीने अगर मैंने फोन ना किया किसी वजह से या विजिट नहीं किया तो मतलब कि बरस जाती थी.
1: ओ.
0: अच्छा वक्त आया, अच्छा आगे, अच्छा अब आज कैसे याद आई. फोन गलती से तो नहीं लगा दिया. मतलब सार्कैज़म टू द कोर. एंड देन शी वुड गिव इट टू मी एंड आई वुड जस्ट सिट देयर एंड से अच्छा आशा जी आप बोलिए जो आपने बोलना है. अच्छा फिर मैं जब उन्होंने कहीं पे पॉज किया तो मैंने कहा हो गया. हाँ हो गया, मैं ठीक हूँ, अब बोलो तुम्हें क्या कहना है.
1: जिनसे वो प्यार करती थी उनके लिए खाना भी बनाती थी.
0: ऑफ कोर्स. एंड यू नो शी वुड वो ताना भी मुझे देती थी इस बात का. तुम भूल गए हो ना, रात के 12 बजे कभी कभी आते थे, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे लिए पराठे और ऑमलेट बना के तुम्हें देती थी. एंड दैट इज अ फैक्ट. She did.
1: क्या बात है.
0: You know, so you know, she would love to, like I said, she would

0: मदरली यू नो, एंड उनके साथ कोई तकल्लफ नहीं था
1: जी,
0: उनके साथ वही अपनापन था। और वो भी कई दफा शी यूज्ड टू आल्सो बी अवेक टिल लेट, तो कभी कभी मैं अगर उस साइड पे होता था तो मैं अचानक आ जाता था तो उन्हें सबसे पहले पूछ, खाना खाया तुमने कि नहीं? मैंने कहा नहीं खाया। अच्छा बैठो। जो भी उस वक्त किचन में था, अगर और कुछ नहीं तो वो ऑमलेट और पराठा बना देती थी। यू नो, लाइक आई सेड, शी वाज वेरी मदरली, तो वो दिल से सब कुछ करती थी, जो भी था दिल में था
1: जी। कितने प्यार से आपने उन्हें याद किया है, कितनी शिद्दत से याद किया है, ये महसूस हो रहा है।

0: पराठा बना देती थी, यू नो, लाइक आई सेड शी वाज वेरी मदरली, तो वो दिल से सब कुछ करती थी, जो भी था दिल में था
1: जी. कितने प्यार से आपने उन्हें याद किया है, कितनी शिद्दत से याद किया है, ये महसूस हो रहा है.

0: उतना ज्यादा नहीं है जितना उनका है, लेकिन एक चीज जो आपको नजर आएगी, यू विल फाइंड अ वास्ट बॉडी ऑफ वर्क ऑफ अलग अलग किस्म के जॉनर्स. मैंने शुरुआत की इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक की एज अ पियानिस्ट, एज एन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक पियानिस्ट.
1: वहां भी जाकिर भाई जैसे लोगों के साथ बजाया.
0: जी, तो मेरा सबसे पहला प्यार जो था वो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक था और है. अच्छा, हकीकत ये है, मेरे होते ना कि बचपन की जो एम्बिशंस होती हैं, ख्वाहिशें होती हैं, उसमें सिंगर बनने का कोई इरादा नहीं था.
1: ओके,
0: आई वांटेड टू जस्ट बी अ पियानिस्ट एंड अ कंपोजर.
1: जी,
0: गायकी जो थी वो मेरे अंदर कभी वो ख्वाहिश नहीं थी. गाना, मैं इसलिए मैंने गाना शुरू किया क्योंकि हर म्यूजिशियन जो है गुनगुनाता तो है ही. तो क्या होता था, मैं जब कोई ट्यून कंपोज करता था तो उसका डेमो बनाता था.
1: जी,
0: अच्छा, डेमो में मैं खुद ही गा देता था,
1: जाहिर है.
0: फिर बैठ के मैं फैंटेसाइज करता था, क्या किशोर दा अगर गाएंगे तो क्या बात होगी, या रफ़ी साहब अगर गाए तो क्या बात होगी. अच्छा, रफ़ी साहब या किशोर दा, मैं कहाँ बैठा हूँ, लंदन बैठा हूँ या मैं जिधर भी बैठा हूँ, मैड्रिड बैठा हूँ, अब वहाँ पे मेरा क्या एक्सेस है उनके साथ. और फिर उसके थोड़ी देर, कुछ अरसे बाद तो उन सब का भी इंतकाल हो गया. तो मैं एक्चुअली गायकी में इसलिए पढ़ा क्यों, मैं अपने गाने इसलिए मैंने गाने शुरू किए क्योंकि और कोई गाता नहीं था. तो मजबूरी के तहत मैंने खुद गाना शुरू कर दिया. और जब भी मैं रिकॉर्ड करता था तो मैं कहता था कि यार ये गाना जो है ना, ये अगर फलाना सिंगर गा, तो थोड़े अरसे बाद लोगों ने मुझे ये कहना शुरू कर दिया कि यार लेकिन तुम्हारी आवाज़ में भी बड़ा अच्छा लग रहा है, तुम तो अपनी आवाज़ में रखो.
1: जी,
0: तो जब मुझे ऐसे लोगों ने मुझे कहना शुरू किया, सवाए मैंने कि मेरी वालदा के अलावा, क्योंकि माँ के लिए तो सबकी आवाज़ें अच्छी होती है ना, अपने बच्चों की हर चीज़ अच्छी होती है. तो लेकिन जब क्या कहते हैं दूसरों ने कहना शुरू किया तो थोड़ा सा हौसला बढ़ा मेरा. तो उसमें फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता मैं गायकी में आया. तो मेरा जो बॉडी ऑफ वर्क है उसमें इंस्ट्रूमेंटल इंडियन क्लासिकल भी है, फ्यूजन भी है, वर्ल्ड म्यूजिक, देन इंडिपेंडेंट म्यूजिक भी है, और फिर फिल्म म्यूजिक भी है. तो सिर्फ एक तरह का म्यूजिक नहीं है, एक जॉनर में म्यूजिक नहीं है मेरे. यू विल फाइंड ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स एंड मीडियम्स.
1: जी,
0: इंस्ट्रूमेंटल हो
1: सकता है,
0: यू नो, एंड ऑल दैट. तो वो मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ, लेकिन क्वांटिटी ऑफ ईच ऑफ देम माइट नॉट बी एज मच.
1: यस,
0: तो मेरा ये था कि लकी का म्यूजिक मैंने किया, मैंने कुछ और फिल्मों का भी किया, लेकिन फिर मैंने एक और भी चीज महसूस की. मैंने ये अक्सर देखा कि कभी कभी, और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ है, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, कि बड़ी मेहनत करते हो एक म्यूजिक पे, एक साउंड ट्रैक पे, और फिल्म फ्लॉप हो जाती है.
1: जी,
0: तो क्या होता है कि एवरीथिंग गोज डाउन विद द शिप. अब क्या है कि वो गाना, जो गाने हैं वो आपने बेशक बेहद अच्छे कर दिया हूँ, मगर उनको मौका ही नहीं मिला उभरने का, क्योंकि फिल्म जो थी वो पहले दिन ही डूब गई थी. तो अब आप भी उसके साथ ही डूब गए, आपका म्यूजिक भी डूब गया, और फिर किसी ने उसको सुना ही नहीं. तो ये मेरे लिए बड़ी मायूसी की बात थी, क्योंकि मैं बहुत लगन के साथ, बहुत मेहनत के साथ, आई गेट वेरी इमोशनली अटैच टू एवरीथिंग दैट आई डू. आई डोंट माइंड कि मैंने अगर कोई इंडिपेंडेंट गाना बनाया और उसको ठीक तरह से लोगों को मौका मिला उसको सुनने के लिए, और अगर लोगों को नहीं पसंद आया, नो प्रॉब्लम, कम अज़ कम सुना तो सही.
1: जी,
0: उसने कम अज़ कम थोड़ी सी रोशनी तो देखी कि भाई आपको मौका तो मिला उसको ना पसंद करने का, लेकिन अगर आपने सुना ही नहीं
1: तो अफसोस होता है,
0: तो फिर अफसोस होता है ना, जंगल में मोर नचा किसने देखा.
1: जी, लेकिन अगर लकी की म्यूजिक की बात की जाए, आपका फेवरेट क्या है?
0: अच्छा, लकी की बड़ी इंटरेस्टिंग मैं बात बताता हूँ.
1: जी जी,
0: वो फिल्म भी फ्लॉप हुई थी
1: लेकिन वापस रिवाइव हुई.
0: नहीं, लेकिन उसकी वजह पता क्या है?
1: जी,
0: इसमें आई हैव टू गिव क्रेडिट कि जो प्रोड्यूसर थे व्हिच वाज भूषण कुमार, ही कुड सी दैट मूवी में गड़बड़ है.
1: जी,
0: अच्छा, उस जमाने में सीडीज और कैसेट्स का जमाना था और गाने बड़े अच्छे शूट हुए थे
1: बहुत.
0: हाँ, तो अब क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया कि फिल्म की रिलीज को डिले कर दिया और उन्होंने गानों को भरपूर तरीके से उन्होंने प्रमोट करना शुरू कर दिया, और उस प्रमोशन की वजह से सीडीज और कैसेट्स जो थी वो
1: खूब चली.
0: अच्छा, जिस दिन वो फिल्म रिलीज हुई, अनफॉर्चुनेटली द फिल्म डिडंट डू वेल.
1: जी,
0: ठीक है, इट डिडंट डू वेल फॉर व्हाटएवर रीजन, इट वेंट डाउन इमीडिएटली, इट अफेक्टेड द
1: सेल्स ऑफ द म्यूजिक,
0: सेल्स ऑफ द म्यूजिक, बट बाय दैट टाइम वो पार हो चुके थे.
1: जी जी,
0: दे वर ऑलरेडी डिक्लेयर्ड अ सुपर हिट बिकॉज़ द पीपल लव द सॉन्ग्स. ठीक है ना, तो अब दैट वाज वन ऑफ दोज वेरी फ्यू एग्जांपल्स इन हिस्ट्री, म्यूजिकल हिस्ट्री कह लो व्हाटएवर, कि जहां पर द मूवी डिडंट डू वेल बट द साउंड ट्रैक डिड रियली.

0: जब आप म्यूजिक देते हैं उसमें भी वो प्यार और वो शिद्दत नजर आती है। खासतौर पर मैं उस फिल्म का जिक्र करना चाहता हूँ जिसका जिक्र लोग कम करते हैं, लकी नो टाइम फॉर लव।
1: जी,
0: जितने मीठे और प्यारे गाने आपने बनाए हैं।
1: थैंक यू।
0: आपने और क्यों नहीं किया ऐसा काम?
1: दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैं थोड़ा सा सुस्त हूँ,
0: लगता नहीं आपको देख के।
1: मेरा मतलब है कहने का कि अगर आप मेरा डिस्कोग्राफी अगर आप देखोगे तो आपको
0: देर देर से आते हैं।
1: हाँ, और दूसरी चीज ये कि मेरे में आपको ज्यादा, इफ यू कंपेयर इट टू अ लॉट ऑफ अदर म्यूजिक कंपोजर्स इन हिंदुस्तान, मेरा बॉडी ऑफ वर्क जो है वो

0: रियली वेल,
1: लोग आज भी याद करते
0: हैं। हाँ, लोग आज भी याद करते हैं। हालांकि कभी कभी ऐसा भी होता है, अब जैसे कि पंचम दा का शोले,
1: जी,
0: ही गॉट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अवार्ड्स एंड सेल्स बिकॉज ऑफ शोले, बट फ्रैंकली स्पीकिंग इवन ही यूज्ड टू एक्नॉलेज दैट शोले इज नॉट माय बेस्ट पीस ऑफ वर्क।
1: ऑफ कोर्स दैट्स द ट्रुथ,
0: या एंड दैट्स द ट्रुथ, एंड ही यूज्ड टू आल्सो से इट,
1: जी,
0: बट बिकॉज द फिल्म वाज सच अ कोलोसल हिट दैट इट ऑटोमेटिकली हेल्प्ड
1: एवरीथिंग।
0: अच्छा, अगर आपको याद हो लगान पिक्चर, अगर आपको याद हो जब वो शुरू में उसका साउंड ट्रैक जब रिलीज हुआ तो किसी को समझ नहीं आ रही थी उसका,
1: जी,
0: एंड इट वॉज, यू नो, इट वॉज, पीपल वर कंफ्यूज्ड कि यार किस तरह के गाने हैं, किस तरह के, दे वर नॉट वर्किंग। द मूवी रिलीज्ड एंड इट बिकेम अ कोलोसल हिट ऑफ इट्स टाइम, एंड ओवर नाइट द म्यूजिक सडनली बिकेम अ सेंसेशन because of the visual and the story line attached to the songs, but they were very situational songs. So now people understood those songs. They understood the context.
1: Right.
0: And suddenly people then started to listen to the songs. अच्छा, आई लव द सॉन्ग्स इवन बिफोर द मूवी वाज रिलीज्ड,
1: जी,
0: क्योंकि मैं हमेशा ये मानता हूँ कि गाना जो है उसको अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए,
1: वो एक सेपरेट एंटिटी,
0: वो एक सेपरेट, मैं हमेशा उसको ऐसे देखता हूँ, मैं कहा यार, क्योंकि देखो फिल्म जो है वो फेड आउट हो जाती है,
1: जी,
0: गाने जो है वो रहते हैं, क्योंकि दे आर वेरी इजी, यू कैन लिसन टू अ सॉन्ग एनीवेयर ना,
1: राइट,
0: यू कैन लिसन टू अ सॉन्ग इन योर हेडफोन्स, इन योर, ऑन योर फोन, इन योर कार, एवरीवेयर, यू कांट वॉच अ फिल्म एवरीवेयर, ऑफ कोर्स टुडे you have the mobile phones and all
1: still,
0: that lekin phir bhi
1: ji.
0: You don't have the time to watch a film all the time,
1: ji.
0: But music stays with you, music always stays with you, and it's very convenient. So I always feel that a song should be, yes, it should be situational, it should help the film's narrative, lekin it should stand on its own two feet,
1: right, very
0: ab jaise kuch gaane aise hain jo bade khoobsurat bane hue hote hain lekin uski picturization itni zyada achhi nahi hoti, kabhi bhi banda kehta hai yaar काश मैंने पिक्चराइजेशन नहीं देखी होती तो बेटर होता।
1: पल पल दिल के पास,
0: पल पल दिल के पास। मुसाफिर हूँ यारो,
1: जी,
0: मैं जिंदगी भर मैं उसको बचपन से सुनो, मैंने सडनली देखा यार ये तो टांगे पे ऊपर गाना शूट हुआ है,
1: जी,
0: and it was, it was okay, you know what I mean, but you know songs ultimately outlive the movie, so then you need, the song needs to stand on its own two feet. There are very few examples of songs which were part of the narrative, but they're still out, even though you would not understand, like, for example, a song like Julie. Ab Julie ka naam kyun hai? Kyunki film ka naam Julie tha.
1: जी.
0: उसका मेन कैरेक्टर जूली था, लेकिन आज भी आप अगर सुनो, कितने लोगों ने जूली फिल्म देखी है आज के दौर में, लेकिन गाना कितने लोगों ने सुना है,
1: जी,
0: भूल गया सब कुछ, क्योंकि वो गाना इतना खूबसूरत है।
1: एंड कैन वी बिलीव दैट हम 50 साल पहले की म्यूजिक की बात कर रहे हैं?
0: एग्जैक्टली, एंड इट इज स्टिल सो ब्यूटीफुल एंड रिलेवेंट।
1: रिलीज इन 1975।
0: वाओ, देयर यू गो। तो देखिए बात ये है ना कि यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि म्यूजिक जो है वो अब इट शुड स्टैंड ऑन इट्स ओन टू फीट, एंड देन व्हाट हैपेंस इज दैट यू सी, क्या था कि वो जो गाने थे, जो अगर फिल्म ने अच्छा काम नहीं किया फॉर वट एवर रीजन, लेकिन द रिकॉर्ड लेबल उस जमाने में HMV थी, तो व्हाट दे यूज्ड टू डू वाज वो उन गानों को पुश करते थे,
1: जी,
0: कंपाइलेशंस में और इस तरह से, तो वो गाने जो थे यू नो बेस्ट ऑफ किशोर और या फिर फलाना, you know, किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट में वो उसको पुश करते थे, और जब वो पुश करते थे तो वो गाने जो थे वो बहुत मकबूल हो जाते थे ऑन देयर ओन। अच्छा, यहाँ आज के और कुछ अरसे से दौर ये है कि भाई अगर फिल्म नीचे गिर गई तो उसकी सारी चीजों को भूल जाओ,
1: जी, ये आज के जमाने,
0: हाँ, आज के जमाने, तो व्हाट हैपेंड वाज कि ये मेरे साथ दो चार दफा हुआ जहाँ पे पिक्चरें जो थी वो नहीं चली और वो म्यूजिक जो था वो डूब गया फिल्म के साथ, तो वो मेरे लिए बड़ा वो डिसहार्टनिंग था, तो देन आई सॉर्ट ऑफ सेड यू नो व्हाट आई विल बी वेरी वेरी चूजी ऑफ हुम आई वांट टू वर्क विद व्हेन इट कम्स टू कंपोजिशन,
1: राइट,
0: फिल्में गायकी तो मैं करता हूँ सबके साथ, लेकिन मैंने कहा जहां तक कंपोजिशन करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए कंपोजिशन इज लाइक गिविंग बर्थ टू समथिंग,
1: उसमें आपका अपना एक सिग्नेचर होता है,
0: जी,
1: जो सुन के ही अगर कीन लिसनर है वो अंदाजा लगा सकता है कि भाई ये आपका म्यूजिक है,
0: हाँ, तो इसके अंदर मैं अपनापन बहुत अंदर से निकालता हूँ,
1: जी,
0: तो वो आई गेट टू इमोशनली अटैच्ड टू इट, जैसे मैंने कहा ना, अगर आपने उस गाने को प्रॉपर प्लेटफॉर्म दिया और उसको एक मौका दिया उभरने के लिए, और वो अगर उसके बावजूद नहीं उभरा तो मैं डिसअपॉइंट नहीं होऊंगा,
1: जी,
0: मैं कहूंगा यार ठीक है लोगों को नहीं पसंद आया, चलो ठीक है विल ट्राई बेटर, लेकिन कम अज कम लोगों ने सुना तो सही, लेकिन यहाँ पर कई दफा होता था कि लोगों ने सुना ही नहीं, उनके तक पहुंचे ही नहीं और वो पहले से डूब गया। अच्छा, कई दफा जब मैं कभी कभी कोई पुराना उस तरह का उन फिल्मों में से अगर कोई गाना

0: मैं किसी को सुना, अरे यार ये तो बड़ा अच्छा है, कब रिलीज हो रहा है? मैं कहा यार ये क्या, मैं
1: ये और तकलीफ
0: बढ़ा, ये और तकलीफ बढ़ाती है, यू नो। अच्छा लेकिन फिर ये क्या हुआ, मैं चुप हो जाता हूँ।
1: तो उनमें से कौन सा गाना आपके दिल के सबसे करीब है?
0: देयर वाज अ सॉन्ग फ्रॉम अ फिल्म, दिस रादर द साउंड ट्रैक
1: ओके
0: ऑफ अ फिल्म कॉल्ड सदिया।
1: जी
0: द फिल्म, I really enjoyed making the soundtrack of the film Sadiyan. और उसमें बड़े interesting किस्म के गाने हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं आज भी।
1: जी।
0: And मुझे बड़ा उससे बड़े दुख हुआ
1: कि फिल्म नहीं चली,
0: कि वो फिल्म नहीं चली और लिहाजा वो गाने जो थे वो रह गए। लेकिन वो गाने जो हैं वो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। अगर आप उनको सुनोगे तो आप यू विल अंडरस्टैंड मे बी वाई मे बी आई एम emotionally very attached to those songs.
1: And Lucky के कौन से गाने की बात?
0: सुन जरा। मैंने कि सुन जरा I loved, नहीं actually I, honestly I loved so many of the songs. I loved शायद ये तो प्यार है, क्योंकि मेरी पहली मर्तबा लता जी के साथ गाने का honor हुआ।
1: जी।
0: तो जो एक again वो एक ख्वाब था मेरा।
1: कितनी धड़कनें बड़ी हुई थी।
0: लता जी के साथ again एक जो experience था वो अनमोल था। मतलब कि मैं लता जी को पहले से जानता था, क्योंकि मेरा आशा जी के साथ आना जाना हमेशा रहता था, तो कई मर्तबा दीदी के साथ भी मुलाकात होती रहती थी। और वो बहुत ही दिलचस्प खातून थी, वो बड़े मज़ेदार, शी वॉज़ अ ग्रेट कॉन्वर्सेशनलिस्ट। बड़ा मज़ा आता था उनके साथ गुफ्तगू करने का और गपशप मारने का, लेकिन कभी काम नहीं किया। और जब पहली दफ़ा जब उनके साथ इसी गाने के लिए जब मैंने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने एक्सेप्ट किया, तो मैं तो बहुत नर्वस था, यू नो आई वॉज वेरी नर्वस। और अच्छा पता है ये जो महान लोग होते हैं ना, इज हु आर बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल, दे नो देयर ग्रेटनेस।
1: यस
0: दे नो इट, दे आर वेरी मैटर ऑफ फैक्ट अबाउट इट। मतलब उनके अंदर उस तरह का कोई मगरूरपन नहीं होता, लेकिन उनको पता है कि भाई मैं लता मंगेशकर हूँ या मैं अमिताभ बच्चन हूँ, और मुझे पता है कि मेरा असर जो है, ऑरा जो है, वो अगले बंदे जो मुझसे कई दर्जे जूनियर है उसके ऊपर इस वक्त क्या बीत रही होगी। You know what I mean? उनको पता है। और उनका सबसे बड़ा जो बड़ापन है
1: जी,
0: वो ये होता है कि वो आपको सबसे ज्यादा, सबसे पहले आपको
1: ईज
0: कराते हैं, यू नो, टू मेक यू रिलैक्स, बिकॉज दे नो दैट आपके अंदर क्या, मतलब कि
1: हवाइयां उड़ी हुई हैं।
0: उनको पता है, तो उनका सबसे पहले तो ये होता है कि आपको काम डाउन करें। तो अच्छा अब क्या हुआ कि मैं पहली दफ़ा रिकॉर्ड कर रहा था लता जी के साथ, तो मैंने फोटोग्राफर बुलाया। अच्छा उस ज़माने में कहाँ BTS हुआ करता था, कहाँ जिस इस तरह की जो चीज़ें जो आजकल में होती हैं, और पैप्स तो होते ही नहीं थे, तो देयर वाज नो सच थिंग। तो अपने ही किसी फोटोग्राफर को बुलाया, तो अब मैं बैठा हूँ स्टूडियो में, मैं उनको गाना सिखा रहा था, ठीक है, मैं गाना बता रहा था उनको, मैं कीबोर्ड पे था और वो मेरे साथ बैठी हुई थी। उन्होंने देखा कि एक कैमरामैन है, तो उन्होंने ये कैमरामैन, अच्छा मैं एकदम घबरा गया। मैंने कहा हाँ जी लता जी, कैमरामैन आप माइंड तो नहीं कर रही अगर कुछ दो चार फोटोज ले ले? हाँ नहीं नहीं नहीं कोई ऐसी बात नहीं, नहीं एक सेकंड मुझे खड़ा होने दो। मैंने कहा खड़ा किस लिए? मैं यहाँ पे खड़ी होंगी और ये, और शी हैड द पेपर विद द लिरिक्स, जब यहाँ पे खड़ी होंगी ना आपके सामने तो फोटोग्राफ में लगेगा कि मैं आपसे सीख रही हूँ।
1: अरे गजब,
0: मेरा तो जबड़ा गिर गया उस वक्त।
1: ओह,
0: शी वांटेड मी टू हैव दैट मेमोरी।
1: वाओ,
0: कि वो अगला बंदा जब देखेगा उस फोटो को उसको नजर आएगा कि मैं आपसे गाना सीख रही हूँ। मैंने कहा यार कौन करता है ये,
1: कौन करता है?
0: तो आप मतलब कि यू आर गिविंग मी दैट ऑनर दैट यू स्टैंडिंग एंड लर्निंग एंड गिविंग मी दैट ऑनर एज अ म्यूजिक डायरेक्टर, दैट यू गिविंग मी दैट रिस्पेक्ट, एंड आई एम जस्ट I'm a kid in front of you. मैंने उस दिन उनसे इतना बड़ा ये एक सबक सीखा कि वहां पर वो करने से वो छोटी नहीं हुई, वो मेरे आंखों में इतनी बड़ी हुई कि मैंने उससे सबक सीखा कि ये होता है genuine humility.

0: देखिए लता जी, आशा जी की बात हुई, बच्चन साहब के साथ भी तो ऐसी कुछ हुआ है।
1: ऑफ कोर्स बच्चन साहब के साथ भी ऐसा ही हुआ
0: जी।
1: मैं देखिए उनसे अच्छा मेरा जो यू नो आई मीन ही फॉर मी वाज ऑलवेज यू नो अ स्टार एंड आइकॉन एंड एंड यू नो अ लेजेंड यू नो एंड ही विल ऑलवेज बी। तो उनके साथ जब मैं इंटरैक्ट मैंने करना शुरू किया और सबसे जो खूबसूरत बात थी वो ये थी कि इन सब लेजेंड्स के एक चीज़ जो कॉमन थी जो मेरे लिए बहुत अहमियत रखती थी वो ये था कि आई वॉज एबल टू गेट ए फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस टू सी हाउ दे क्रिएटेड देयर मैजिक, कि व्हाट वाज द प्रोसेस, कि वो किस मरहले से गुजरते हैं और अपने दिमाग को किस तरह से तैयार करते हैं उस तरह के लेवल की परफॉर्मेंस निकालने के लिए, कि व्हाट प्रोसेस दे वेंट थ्रू। और हर एक बंदे का अपना अपना तरीका होता है
0: अपने आप।
1: तो वो मैंने बच्चन साहब के साथ भी देखा, मैंने आशा जी के साथ भी देखा, लता जी के साथ भी देखा।
0: उनके साथ शूट कितना डिफिकल्ट था आपके लिए?
1: ओह इट वाज अमेजिंग। अमित जी के साथ तो शूट ऐसा था कि मतलब कि हर एक टेक जो थी वो अनमोल थी।
0: अच्छा।
1: और हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे ज्यादा मुश्किल बात ये हुई जब हम एडिट पे बैठे, क्योंकि उन्होंने हर एक शॉट के हमने 3-4 वर्जन्स किए थे। अच्छा वो इम्प्रोवाइज करते, मैं भी इम्प्रोवाइज करता हूँ क्योंकि मेरा तो क्लासिकल म्यूजिक से ही मतलब कि बैकग्राउंड है और हमारे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में तो सब कुछ इम्प्रोवाइज होता है, तो वो इम्प्रोवाइजेशन का कीड़ा जो है वो मेरे भी बचपन से है, तो वो तो Because he's a master at that. तो वो जब जो अलग अलग टेक्स थी हम कहते यार ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। हम कई दफा ऐसी उलझन में पड़ जाते थे that we used to literally flip a coin कि कौन सा शॉट रखे, क्योंकि we didn't know which one to keep.
0: Right.
1: You know, because they were all so good and different in their own way. He would give us every shot, he would give in a different way. So, wo unke saath kaam karke jo experience mila was something that was absolutely priceless. And I learned so much from all of these people.
0: Kya
1: and it was such an incredible pleasure.

0: चलते चलते विविध भारती के सुनने वालों के लिए आप क्या गुनगुनाएंगे जो दुनिया भर में आपको सुन रहे हैं और म्यूजिक के ट्रूली दीवाने लोग हैं?
1: इश्क तुम्हारा

0: वाह वाह वाह वाह, सबसे अच्छी मुलाकातें वो होती हैं जिनमें आगे की गुंजाइश बाकी रहे।
1: बेशक।
0: तो हमारे साथ ये वादा कीजिए कि अपनी पसंद के 10 गानों पर इसी तरह फ्री व्हीलिंग बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में लाइव आएंगे।
1: जरूर आऊंगा, जरूर, विथ प्लेजर, विथ प्लेजर।
0: शोर मचा के आपको बुलाएंगे
1: तफसील में,
0: तफसील में, तफसील में, बिल्कुल। तब दूसरों की भी बातें होंगी, आपके उस्तादों की,
1: जरूर जरूर, है ना,
0: और इंस्पिरेशंस की, आपके फेवरेट गानों की,
1: ऑफ कोर्स।
0: तो उस मुलाकात का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: माय प्लेजर, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: दोस्तों, आज के रंग तरंग कार्यक्रम में आप सुन रहे थे जाने माने गायक, संगीतकार और पियानो वादक पद्मश्री अदनान सामी से यूनुस खान की ये बातचीत। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन सहयोग योगिता जाधव, रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। तो अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
3: रंग तरंग,
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। 12 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: 1947 अर्थ इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे सुखविंदर सिंह और साथियों की आवाजों में। जावेद अख्तर के बोल थे, एआर रहमान का संगीत था।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मले

0: थे उदित नारायण और विजेता पंडित की आवाजों में। मजरूर सुल्तानपुरी के बोल थे, जतिन ललित का संगीत था।
1: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
2: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
1: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
2: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
3: सखी सहेली।
0: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए अब सुने जिंदगी ना मिलेगी दोबारा फिल्म का गाना। फरहान अख्तर और साथियों की आवाजें हैं।

चक दे इंडिया फिल्म का गाना आप सुन रहे थे हेमा सरदेसाई की आवाज में। जयदीप साहनी के बोल थे, सलीम सुलेमान का संगीत था। लागा चुनरी में दाग, ये नाम फिल्म का है। इसी फिल्म का गाना आपको सुनवा रहे हैं सुनिधि चौहान, श्रेया घोषाल और साथियों की आवाजों में।

लगा चुनरी में दाग फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। सुनिधि चौहान, श्रेया घोषाल और साथियों की आवाजों में स्वानंद किरकिरे के बोल थे शांतनु मोइत्रा का संगीत। इसी के साथ आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम सुरीला सफर। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हर रोज हम एक इबारत या टेक्स्ट फेसबुक पर पोस्ट करते हैं, फेसबुक पेज पर। इसमें वो शब्द समाये होते हैं जिन पर आधारित गाने इस कार्यक्रम में शामिल किए जा सकते हैं। तो आज की जो इबारत है वो हम आप तक पहुंचा देते हैं। पर्वत के पीछे चंबेदा गांव था, वहां एक प्रेमी जोड़ा था। उन्होंने मिलकर एक खूबसूरत ख्वाब देखा था, एक छोटा सा घर जिसकी खिड़की से पहाड़ और वादियां दिखाई दें, और आंगन में दोनों के नाम का एक पेड़ हो, उस पौधे में सदा प्रेम के फूल खिलें। लेकिन बीते दिन लौट कर नहीं आते, हालात ने उन्हें एक दूसरे से दूर कर दिया। वक्त की आंधी में उनके टूटे हुए ख्वाब कहीं बिखर गए। सालों बाद वो फिर उसी गांव में लौटी, मतलब वो यानी लड़की। पहाड़ वही थे, पगडंडियां वही थीं, मगर वो नहीं था। तभी हवा में जैसे उसकी आवाज गूंजी, बूझ मेरा क्या नाव रे, नदी किनारे गांव रे। वो ठिठक गई। ये वही गीत था जिसे उसने कई बार उसके साथ गुनगुनाया था। ये वही जगह थी जहां उसने लिखी थी एक प्रेम कहानी। तो फिर आगे क्या हुआ, यही तो आपको बूझना है आज। आज आपको पूरी करनी है ये कहानी, और दो लाइन में आपको बताना है कि आगे क्या होता है। उसका प्रेमी वापस मिलता है या नहीं, जहां से गाने की आवाज आई थी वहां उसका प्रेमी आया या नहीं, ये आपको बताना है। दो लाइन की एक छोटी सी इबारत लिखिए, और बहुत बड़ी टिप्पणी लिखने की जरूरत नहीं है। दो लाइन में बताइए प्रेमी उसका वापस लौटा या नहीं। अगर लौटा तो फिर क्या हुआ, अगर आप बूझ जाते हैं तो फिर ठीक है, वरना हम प्रोग्राम के आखिर तक तो आपको बताएंगे ही कि आखिर कहानी में आगे क्या होता है। अब बहुत सारे श्रोताओं ने टिप्पणी लिखी है, कहानी का निचोड़ लिखा है किसी ने, किसी ने मिलती जुलती कहानी लिख डाली है, किसी ने अंदाज़ा लगाया है। लेकिन बहुत लोगों को अंदाज़ा लगाना बाकी है, तो आप ज़रा बूझिए कि इस कहानी में आगे क्या होता है। वो प्रेमी जोड़े में जो बिछड़ जाते हैं, प्रेमी वापस लौटता है कि नहीं, और साथ में वो शब्द भी बूझिएगा जिससे गाने चुने हमने, वो गानों के बोल भी आप बताते चलिए। फिलहाल बताइए गीतकार का नाम, फिल्म है आज और कल, गीतकार का नाम बूझिए, संगीतकार है रवि। आवाज किसकी है ये तो आप बता ही सकते हैं। फिल्म आज और कल। इबारत में जो शब्द है उन्हीं शब्दों से

साहिल लुधियानवी गीतकार, ये हमने पूछा था आपसे, सभी श्रोताओं ने बहुत जल्द जवाब दिया। संगीतकार का नाम भी सही लिखा, रवि मोहम्मद रफी की आवाज, फिल्म आज और कल। एक श्रोता ने लिखा, छोटा सा घर होगा बादलों की छाव में, रिमझिम सितारों का आंगन होगा, बीते हुए दिन कुछ ऐसे, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। और बहुत सारे श्रोताओं ने गाने के बोल लिखे हैं। एक श्रोता ने लिखा, पर्वत, घर, फूल, वक्त, ख्वाब, नाम, प्रेम, प्रेम कहानी। भाई गाने के बोल भी तो लिखिए, इतनी कंजूसी क्यों? और कंजूसी वहाँ कीजिए जहाँ हमने कहानी पूरी करने की बात कही है। सिर्फ एक या दो लाइन में आप कहानी पूरी कीजिए कि क्या होता है वो पर्वत, पर्वतों के बीच में, पेड़ों के झुरमुटों के बीच, जब वो वापस लौटती है। एक बार उनके ख्वाब टूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं, जब वो वापस आती है और गाना गूंजता है वादियों में, बूझ मेरा क्या नाम रे, तो उस समय क्या वो उसका प्रेमी वापस आता है या नहीं, ये आपको बताना है। पूरे प्रोग्राम में हम पूछते रहेंगे, आखिर में इसका हम जवाब देंगे, मतलब कहानी पूरी करेंगे। ये अधूरी कहानी हमने दी है आपको। एक श्रोता ने पूरी करने की कोशिश की है, देखते हैं क्या लिखा है। बिछड़ते समय प्रेमी ने प्रेमिका को एक पीला दुपट्टा दिया और कहा, जो इस जगह पहले लौटेगा वो इस पेड़ की ऊपरी शाख पर ये दुपट्टा बांध देगा, तब दोनों को यकीन हो जाएगा कि अभी भी हमें एक दूसरे से प्रेम है और इंतजार है। जब प्रेमिका गांव लौटी तो देखा पेड़ की ऊपरी शाख पर एक नहीं अनगिनत पीले दुपट्टे लहरा रहे थे। क्या बात है भाई, हमारी आंखों के सामने तो सीन आ गया है, कैसे दुपट्टे लहरा रहे होंगे। तो जरा आप अपना निजी अनुभव बताइए कि आपने कभी किसी के लिए ऐसा पीला दुपट्टा, नीला दुपट्टा, लाल बांधा है, या फिर किसी के लिए प्यार का धागा बांधा है। वैसे मंदिर में जाते हैं तो अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए हम धागा बांध कर आते हैं। कभी अपने प्यार की खातिर कोई धागा बांधा है, जरा बताइए, वो अनुभव ही साझा कर सकते हैं, हम आप तक पहुंचाएंगे। और इस तरह की मन्नतों वाला धागा जब बांधते हैं तो ये अच्छी बात है, उसमें दुआओं की बाकायदा तावीज होती है। एक श्रोता ने लिखा है, कदम आवाज की दिशा में बढ़े तो देखा आंगन में लहराते उसी पेड़ की छांव में बैठा वो आज भी उसी के इंतजार में वही गीत गा रहा था। क्या बात है भाई, नजरों से नजरें मिलते ही जैसे सालों की दूरी मिट गई और अधूरा प्रेम हमेशा के लिए पूरा हो गया। आज के शब्द, पर्वत, चंबा, ख्वाब, पगडंडी, खूबसूरत गाना और गाने के बोल भी लिखे हैं, लेकिन हम अभी नहीं बताएंगे क्योंकि आपको बूझते रहना है हम कौन से गाने सुनवाने वाले हैं। अब जरा हमें हीरो हीरोइन का नाम बताइए फिल्म।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष तिवारी से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जीतवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जयो कहा से हुजूर।
0: विविध भारती से यह है कार्यक्रम सुरीला सफर। आदमी और इंसान फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया था इस प्रोमो से पहले, और आपसे पूछा था हीरो हीरोइन का नाम। धर्मेंद्र और सायरा बानो सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया, जल्द जवाब दिया। एक श्रोता ने लिखा है कि आज आपने इबारत को पूरा करने का हम साथियों को मौका दिया है, बहुत अच्छा लगा आपका नया तरीका। तो हुआ ये कि जिस समय वो उस जगह पर पहुंची थी उसी समय वो शख्स भी अपनी पुरानी यादों को पुनः जीने के इरादे से संयोग वश वहाँ पर पहुँच गया था और वही गीत गाकर खुश हो रहा था। दोनों अपने इस गीत को गुनगुनाते हुए फिर से मिले, क्या बात है भाई। और एक श्रोता ने लिखा है कि जब प्रेम सच्चा है तो मिलेंगे ही ना, मिले मतलब वो प्रेमी जोड़ा मिल जाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि ये जैसे कि पुनर्जन्म की कहानी हो और अगले जन्म में मिले। एक श्रोता ने ये लिखा है, एक श्रोता ने लिखा है कि एक प्रेमी जोड़ा अर्थात मेरी धर्म

हैं और मैं स्वयं इन दिनों कश्मीर के पर्वतों के बीच बाबा बर्फानी के दर्शन के बाद अभी इस समय एक कश्मीर के हॉलीडे होम में रुके हुए हैं, जिसकी खिड़कियों से पहाड़, वादियां, पेड़ पौधे और खूबसूरत फूलों के अद्भुत नज़ारों का दर्शन कर रहे हैं। और मन बस यही कह रहा है कि धरती पर अगर जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। और इस जन्नत को बचाए रखने के लिए हम सबको कोशिश करनी पड़ेगी, मतलब हरितिमा बचाए रखना है हम सबको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमें अभी आपके जवाब का और आपकी कहानी पूरी करने का इंतज़ार है कि देखते हैं कौन सही मंजिल तक पहुंच पाता है, कहानी की थीम को कौन पकड़ पाता है। बहुत सारे श्रोताओं ने पकड़ने की कोशिश की है, लेकिन आप अपनी जो विचारधारा है वो साझा करते रहिए। अब हम आपको सुनवा रहे हैं CID फिल्म का गाना, और ये वही गाना है जिसे उसने सुना पर्वतों की वादियों में और इसी गाने के जरिए अपने प्रेमी को याद किया। तो आपको पूछना है आवाज किसकी है और गीतकार कौन है और संगीतकार कौन है। फिल्म है CID।

0: शमशाद बेगम की आवाज थी, मजरूह सुल्तानपुरी की बोल थी, ओपी नैयर का संगीत था। श्रोताओं ने सही लिखा है, सीआईडी फिल्म थी। और जरा बताइए कि ऐसा कोई गाना याद आ रहा है जिसमें कि गांव हो, पीपल हो और इसमें गांव का पूरा परिवेश हो, ऐसा कोई गाना याद आ रहा है जिसमें नदी भी हो? क्योंकि आज की इबारत में ये शब्द कई बार आ गए हैं, तो नदी, गांव और पीपल वाले अगर कोई और गाने आपको याद आते हैं तो ज़रूर बताइए, हम आप तक पहुंचाएंगे। एक श्रोता ने लिखा है कि प्रेमी अक्सर लौटते ही हैं, कुछ या बहुत कुछ खोकर, टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया है। और एक श्रोता ने लिखा है कि सालों बाद लौटने पर जब उसने देखा सफ़ेद स्वेटर जिस पर गुलाब के फूल की बहुत सुंदर कढ़ाई थी, उसे तुरंत ही याद आ गया उसके द्वारा दी गई प्यार की निशानी उसके प्रीतम प्यारे ने पहनी है। क्या बात है, हमारे श्रोताओं के अंदर एक कथाकार भी है, बहुत अच्छा लग रहा है जानकर। बहुत सारे श्रोताओं ने एक
1: सुनी परिपे विज्ञापन पड़े
2: फोन 50,000 रिवार्ड पॉइंट्स एक्सपायर लिंक पर थी एपीके डाउनलोड करनी
3: ठीक लगुनी स्कैम भी है पारे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार, विपक्ष से संसद चलने देने का आग्रह। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी बाधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं से आत्मकथा पढ़ने और रील्स तथा सोशल मीडिया की शॉर्टकट संस्कृति से बचने का आग्रह। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ और विधवा उपकर लगाया, इस राशि को अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए चल रही कल्याणकारी योजनाओं पर लगाया जाएगा। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में उत्साह, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, वंदे मातरम की भावना देश की पहचान को मजबूत कर रही है। राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट। और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंगफील्ड कप के दूसरे दौर में जावोखेर सिंदारोव को हराकर पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है और संसद में सदस्यों की ओर से उठाए गए सभी सवालों का जवाब देगी। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है और वो चर्चा के लिए तैयार है।
1: आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दें, 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं, देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।
0: श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रही।
1: विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
0: वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही मांग रहा है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री गांधी ने कहा कि विपक्ष को गृहमंत्री के किसी भी बयान में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि वो जवाबदेही चाहता है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। लोकसभा में आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों को प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर को मिले चंदे में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की। राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही सुबह शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे। विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। इस समय दोनों सदनों की कार्यवाही जारी है। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी सहित प्रदेश की अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर राजधानी रांची में विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन भी जारी है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा कि सरकार द्वारा उनकी मांगे स्वीकार किए जाने तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से छात्रों के साथ संवाद करने की अपील की। प्रदर्शनकारियों के अनुसार वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी देर रात आंदोलन स्थल पर पहुंचे और आमरण अनशन कर रहे छात्रों से अनशन समाप्त करने का आग्रह किया। हालांकि छात्रों ने अनशन जारी रखने की बात कही और बताया कि आंदोलन की आगे की रणनीति कोर कमेटी तय करेगी। इस बीच झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र कल निर्धारित समय से एक दिन पहले ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। परीक्षा विवाद और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर सदन में लगातार हंगामा हुआ। छात्रों का कहना है कि केवल परीक्षा रद्द करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच कर दोषियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से आग्रह

0: किया है कि वो अपने प्रिय व्यक्ति की आत्मकथा पढ़ें और रील्स तथा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के युग में शॉर्टकट अपनाने से बचें। उन्होंने विकसित भारत के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित युवाओं की निरंतर आवश्यकता पर भी बल दिया।
1: हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा, यहीं से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन किया। ये आत्मकथा श्री कोविंद के उल्लेखनीय जीवन सफर का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद का मार्गदर्शन उनके लिए शक्ति का एक बड़ा स्रोत रहा है।
1: कोविंद जी ने ये काम हम सब के लिए किया है, क्योंकि उनके जीवन में ऐसा कितना कुछ है जिसमें गरीब वंचित तबके से आए तमाम लोग अपने जीवन की परछाई देख सकते हैं। कैसे एक साधारण परिवार मुश्किल हालातों में भी जीवन की शुचिता और ईमानदारी से समझौता नहीं करता।
0: इस अवसर पर श्री कोविंद ने कहा कि राजनीति केवल सत्ता हासिल करने का साधन नहीं है, बल्कि राष्ट्र की सेवा करने का एक माध्यम भी है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और हाईस्पीड डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं। राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ और विधवा उपकर लगाया है। संशोधित दरें कल आधी रात से लागू हो गई हैं। इससे प्राप्त राशि को अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए चल रही कल्याणकारी योजनाओं के लिए दिया जाएगा। भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता और विधायक राकेश जम्वाल ने इस फैसले को जन विरोधी बताया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारतीय व्यापार महोत्सव का उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत की बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित करना है, जिससे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में देश की प्रगति को गति मिल सके। नई दिल्ली में भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने ये बात कही। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने कहा कि प्रौद्योगिकी और व्यापार भारत की विकास यात्रा के दो प्रमुख आधार हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप का शुभारंभ करेंगे। ये ऐप गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र की विभिन्न लाइब्रेरियों को एक साथ जोड़ने के लिए विकसित किया गया है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने हथकरघा क्षेत्र में एक बड़े बदलाव का आह्वान किया है। उन्होंने उद्योग को पुनर्जीवित करने और बुनकरों तथा कारीगरों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए नवाचार, बाजार उन्मुख डिजाइन और टिकाऊ उत्पादन पर बल दिया। नई दिल्ली में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले वार्षिक सम्मेलन सूत्र 2026 में श्री सिंह ने ये बात कही। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है।
2: इस वर्ष हर घर तिरंगा 2026 अभियान वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के जज्बे को समर्पित है। यह अभियान देशभक्ति, तिरंगे के प्रति गर्व और हमारे राष्ट्रगीत में झलकने वाले मातृभूमि के प्रति प्रेम का जश्न मनाता है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य लोगों को तिरंगा घर लाने और भारत की आजादी के उपलक्ष्य में उसे फहराने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसकी शुरुआत इस सोच के साथ हुई थी कि राष्ट्र ध्वज के साथ हमारा रिश्ता हमेशा व्यक्तिगत होने के बजाय औपचारिक और संस्थागत रहा है। इसलिए एक राष्ट्र के तौर पर सामूहिक रूप से तिरंगे को घर लाना न केवल तिरंगे के साथ व्यक्तिगत जुड़ाव का प्रतीक बन गया, बल्कि राष्ट्र निर्माण के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता का भी प्रतीक बन गया। इस पहल का मकसद लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना जगाना और भारतीय राष्ट्रध्वज के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि वंदे मातरम की भावना ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया और आज भी ये देश की पहचान को मजबूत कर रही है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित हर घर तिरंगा बाइक रैली में हिस्सा लेने वालों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कही।
3: इन तिरंगा यात्रास, बाइक एंड साइकिल रैलीज, कल्चरल प्रोग्राम्स एंड कंसर्ट्स, ईच एक्टिविटी हैज अ डिफरेंट फॉर्म बट द सेंटीमेंट बिहाइंड देम इज कॉमन। द नेशनल फ्लैग इज द सिंबल इन विच एवरी सिटीजन कैन फाइंड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस

दिवस को सम्मान, गर्व और गौरव के साथ मनाने और विकसित भारत का संकल्प लेने का आग्रह किया। सोशल मीडिया पोस्ट में एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने लोगों से हर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा अभियान के तहत हर घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज युवाओं से देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी उठाने और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान देने का आह्वान किया। नई दिल्ली में तिरंगा

0: कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
1: स्वतंत्रता दिवस से पहले मध्य प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान जोर पकड़ रहा है। प्रदेश में 9 से 17 अगस्त तक चल रहे इस अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में तिरंगा यात्रा के साथ की। इसके बाद से प्रदेश भर में तिरंगा यात्राएं, बाइक और साइकिल रैलियां निकाली जा रही हैं। गांवों से लेकर शहरों तक तिरंगा मेले, प्रदर्शनियां, मानव श्रृंखला और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्कूल कॉलेजों में भी रंगोली, चित्रकला, निबंध और देशभक्ति गीतों जैसी प्रतियोगिताओं के जरिए बच्चों और युवाओं को अभियान से जोड़ा जा रहा है। 13 से 15 अगस्त तक लोगों से अपने घरों, दुकानों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराने की खास अपील की गई है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर विचार विमर्श और पारित करने के लिए चर्चा शुरू हुई। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने यह विधेयक प्रस्तुत किया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 में और संशोधन करना है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवे के लगभग 89% आरक्षित टिकट ऑनलाइन बुक किए जा रहे हैं। वर्ष 2013-14 में ये आंकड़ा लगभग 49% था। श्री वैष्णव ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। मुंबई के घाटकोपर इलाके में आज तड़के एक चौल में भूस्खलन होने से 6 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्थानीय अधिकारियों द्वारा बचाव और राहत कार्य जोरों पर है।
2: मुंबई के घाटकोपर इलाके में आज तड़के भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 6 लोगों की मौत हो गई। बृहन मुंबई महानगर पालिका के अनुसार यह घटना चिराग नगर स्थित गौसिया चौल में हुई। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक पहाड़ी का एक हिस्सा चौल पर गिर गया, जिससे 2 से 3 मकान मलबे की चपेट में आ गए। घटना के बाद मुंबई की महापौर ऋतु तावड़े और अतिरिक्त नगर आयुक्त पूर्वी उपनगर डॉक्टर अविनाश ढाकने ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और जारी बचाव कार्यों का निरीक्षण किया। प्रार्थना के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से मैं स्वीति जैन।
0: वहीं मौसम विभाग ने राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कल तक बिजली चमकने और तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा तट के पास उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में एक नया कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण उत्तरी और तटीय ओडिशा के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का एक नया क्षेत्र बना है, जिससे उड़ीसा में बारिश बढ़ गई है। भद्रक, केंद्रापड़ा और जगत सिंहपुर में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज चेतावनी जारी की गई है। 25 अन्य जिलों के लिए येलो चेतावनी जारी की गई है। IMD को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उड़ीसा में व्यापक बारिश होगी और आज व कल कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। तटीय इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। खेलों में ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंगफील्ड कप के दूसरे दौर में जावुखेर सिंदारोव को हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। 95 चालों तक चले इस मैच में प्रज्ञानंदा ने शुरुआत से अंत तक अपना दबदबा बनाए रखा। इस जीत के साथ ही प्रज्ञानंदा के 2 मैचों में 1.5 अंक हो गए हैं। अभी समाचार मिला है कि लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार, विपक्ष से संसद चलने देने का आग्रह। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी बाधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं से आत्मकथा पढ़ने और रील्स तथा सोशल मीडिया की शॉर्टकट संस्कृति से बचने का आग्रह। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ और विधवा उपकर लगाया। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में उत्साह। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा, वंदे मातरम की भावना देश की पहचान को मजबूत कर रही है। और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता के दूसरे दौर में जावुखेर सिंदारोव को हराकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: इते बेल जाय कार्यक्रम सुनथिले आकाशवाणी दिल्लीरु आकाशवाणी कटक। आमर परवर्ती कार्यक्रम आंचलिक संवाद सुनि परिबे किछि समय परी।

मेरा गांव मेरा देश फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। शब्दकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। ये जिद्दी फिल्म का गाना है, गीता दत्त और मन्ना डे की आवाजें, हसरत जयपुरी के बोल, सचिन देवबर्मन का संगीत।

जिद्दी फिल्म का गाना था, गीता दत्त और मन्ना डे की आवाजें थी, हसरत जयपुरी के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत था। आइए प्रोग्राम के आखिर में सुनते हैं बहू बेगम फिल्म का गाना, लता मंगेशकर, आशा भोसले और साथियों की आवाजों में। साहिल लुधियानवी के बोल हैं, रोशन का संगीत है। सुनिए प्रोग्राम का आखिरी गाना और इसी के साथ अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।

आप सुन रहे थे लाल पत्थर फिल्म का गाना, आशा भोसले की आवाज में। नीरज की रचना थी, शंकर जयकिशन का संगीत था। हमने उद्घोषणा की थी बहू बेगम फिल्म के गाने के लिए, लेकिन हम माफी चाहते हैं, वो गाना हम नहीं सुनवा सके, हमारे कंप्यूटर जी थोड़े से नाराज थे। बहरहाल अब प्रोग्राम का सफर खत्म होता है। आज्ञा दीजिए, ममता सिंह को नमस्कार।

0: की सहेली।
1: कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाली हमारी सारी सखियां, सहेलियां और श्रोता भाइयों को और सोनाली तुम्हें भी दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
2: दीपा आपको और सभी सखियों, सहेलियों को, श्रोताओं को सोनाली पाठक का सब प्रेम नमस्कार।
1: बिल्कुल, आपका जो नमस्कार है सभी ने उसे
2: स्वीकार लिया
1: है। और हेल्थ का ध्यान रखना बिल्कुल अच्छे हैं, और हेल्थ का ध्यान रखना, सेहत का ध्यान रखना इसलिए जरूरी है कि बदलते मौसम में देखिए ना, घर घर में हम सुन रहे हैं किसी को नजला हो गया है, किसी को
2: खांसी
1: हो गई है, कहीं बुखार है, तो ऐसे में अगर हम पहले से ही थोड़ा सा अपना ध्यान रखते चलते हैं ना, तो ये जो बदलते मौसम में तबीयत जो खराब हो जाती है ये जरा संभल जाती है,
2: ये संभल जाती है। और जो लोग रोज अखबार पढ़ते हैं ना दीपा, उन्हें मालूम होता है कि भाई अभी बहुत जगह पे इस तरह की बीमारियां फैली हुई है, तो पानी उबालकर पीना चाहिए या अपना ध्यान रखना चाहिए। यानी बहुत सारी सूचनाएं होती हैं, बहुत सारी योजनाएं होती हैं, तो हमें रोज अखबार पढ़ते रहना चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा। और ऐसे ही देखो ना, ये मौसम ऐसा है कि यहाँ पे अलग अलग व्यंजन खाने का और बनाने का बड़ा मन करता है। अच्छा चलिए सखियाँ, बनाने का भले मन नहीं करता होगा लेकिन खाने का तो करता होगा ना।
2: मेरा तो मन करता है।
1: बिल्कुल, तो वैरायटी सबको चाहिए, एक विविधता होनी चाहिए ना, सिर्फ अपने जीवन में खाने में भी।
2: हाँ, और है ना वही तरह के जब हम खाने खाते हैं ना, तो बच्चे क्या, बड़े बूढ़े सारे लोग ना परेशान हो जाते हैं, कह रहे वही बना लिया। तो ओट्स जो होते हैं ना, प्रोटीन से भरे होते हैं, तो उसके व्यंजन, बहुत सारे व्यंजन हमारी सखियों ने, हमारे श्रोताओं ने लिखकर भी भेजे हैं।
1: बिल्कुल,
2: किसी ने डोसे का लिखा है, किसी ने उपमा लिखा है, तो किसी ने खीर लिखा है। तो आप भी लिखकर भेजिए कि आपके घर में ओट्स के व्यंजन बनते हैं, और नहीं बनते तो क्या बनने चाहिए।
1: बिल्कुल, और देखिए थोड़ी मेहनत तो लगेगी लेकिन मेहनत का फिर फल भी तो बहुत मीठा होता है।
2: मीठा होता है।
1: और जब सारे खुश हो जाएंगे और उस मेहनत का जब रंग निखर के आएगा, तो फिर देखिए न सिर्फ हर दिन हमारा जीवन भी सवर जाएगा। और यही शब्द है हमारा आज
2: मेहनत
1: का।
2: तो आज का है शब्द हमारा, विचार आपके, इसमें मेहनत है। यानी किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, बिना मेहनत के हमें बहुत सफलता नहीं मिल सकती।
1: बिल्कुल, और आजकल की जो हमारी बेटियां हैं, उन्हें लगता है साड़ी पहनने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन जो अनुभवी महिलाएं हैं वो कहती हैं तुम जितनी देर में ड्रेस पहनोगे हम उतनी देर में साड़ी पहन लेंगे,
2: चट से पहन लेंगे।
1: तो साड़ियों का अपना एक सुंदर संसार है, और एक महिला जितनी खूबसूरत साड़ी में लगती है किसी अन्य परिवेश में, परिधान में शायद कम लगती है। ये आपको क्या लगता है आप जरूर बताइएगा सखियां, कि साड़ी पहनना आसान है या ड्रेस पहनना आसान है, और अगर आसान ड्रेस है तो खूबसूरत किस में ज्यादा दिखते हैं।
2: और श्रोता भाई भी बताएं कि महिलाएं किस ड्रेस में, यानी किस परिधान में ज्यादा सुंदर लगती है।
1: जी,
2: तो खंडुआ साड़ी ओडिशा के बारे में हम जानकारी देंगे, और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने, हमारे बहुत सारी सखियों ने भी इस विषय में मैसेज लिखना शुरू कर दिया है। साथ ही आज एक खास दिन है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है, तो सारे युवाओं को भी हम बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं देते हैं।
1: बिल्कुल, उन सभी को, उनकी ऊर्जा को सलाम, और उन्हें ये एक सीख भी देते हैं कि अपनी ऊर्जा को एक सकारात्मक पथ पे आगे बढ़ाते हुए अपने जीवन को संवारते चलें।
2: जी,
1: और अब हम क्या करें,
2: गीत सुनते हैं।
1: चलो

0: सुन सोनाली, कहाँ खोई हुई हो संदेशों में।
1: यहाँ आने के बाद में हम दोनों नहीं होते हैं दीपा। हमारे साथ में इतने सारे श्रोता, इतनी सारी सखियां जो घर में सुनते हैं और हम उनके संदेश पढ़ते हैं।
0: बिल्कुल, तो संदेशों के माध्यम से बहुत सारी हमारी सखियां इस वक्त हमारे साथ हैं,
1: जुड़ी हुई है। और आज एक खास दिन है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस।
0: बिल्कुल,
1: तो युवा जो होते हैं ना, किसी भी देश का वर्तमान और भविष्य की सबसे मजबूत नींव होते हैं। उनके भीतर असीमित ऊर्जा, कुछ नया करने की ललक और दुनिया को बदलने का साहस होता है। और इसी ऊर्जा और सामर्थ्य को सम्मानित करने और युवाओं से जुड़े मुद्दे पर वैश्विक ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से हर साल 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस यानी इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। और ये दिन युवा दुनिया भर के युवाओं की उपलब्धियों का उत्सव मनाने का दिन है और समाज निर्माण में उनकी भागीदारी को रेखांकित करने का एक साझा मंच है।
0: बिल्कुल सही कहा। और अगर हमारे देश की हम बात करें तो इस संदर्भ में देखा जाए तो ये दिन और भी खास और जीवंत हो उठता है, क्योंकि हमारा देश जो है वो दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, जहाँ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा 35 वर्ष से कम आयु का है। तो भारत का युवा जो है उसको हम केवल जनसांख्यिकीय लाभांश यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड ये नहीं हम बोल सकते, ये आंकड़ा नहीं है वो लोग, ये नहीं हम मान सकते, बल्कि देश के आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक बदलाव का मुख्य कारक भी हमारे युवा हैं।
1: ये तो बात आपने बहुत सही कही दीपा। और आज का भारतीय युवा केवल अवसरों की तलाश नहीं कर रहा है, बल्कि स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया और नए विचारों के जरिए खुद अवसर पैदा कर रहा है। अंतरिक्ष से लेकर खेल के मैदान तक या तकनीक से लेकर सामाजिक क्रांति तक भारत का युवा हर क्षेत्र में विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और एक देश के युवाओं का ये संगम इस बात का प्रतीक है कि जब युवा सशक्त होता है तो वह न केवल अपने देश की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है, बल्कि पूरी दुनिया को एक नई दिशा दिखाने का भी सामर्थ्य रखता है।
1: बस युवाओं को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे समय का बहुत ध्यान रखना चाहिए।
0: बिल्कुल सही
1: कि ये जो महत्वपूर्ण वर्ष

0: ये जिंदगी में बार बार नहीं आती
1: बिल्कुल, और ये ऊर्जा भी बार बार नहीं मिलेगी, है ना, इसे संगठित करके रखना होता है।
0: तो बस ये जो समय है इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए, और हमारे जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि भाई समय का ध्यान रखो, थोड़ा मोबाइल से दूर रहो, थोड़ा पढ़ लिख लो, तो उन बातों को जो युवा ध्यान में रखते हैं ना उनका जीवन उज्जवल हो जाता
1: बिल्कुल।
0: है। और सबसे जरूर बात है मेहनत।
1: जी बिल्कुल सही कहा, और ये वो सुनहरे वर्ष हैं जहां आप जो चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास आजादी है, स्वतंत्रता है, क्योंकि आगे चल के जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी जिम्मेदारियां हमेशा बढ़ती जाती है, और उस वजह से कई बार अपने सपनों को हमें पीछे छोड़ना होता है क्योंकि जिम्मेदारी ज्यादा बड़ा रूप ले लेती है। तो आप चाहें जो चाहें वो कर सकते हैं, बशर्ते बस ये ध्यान रखिएगा कि हमारे घर वाले कहीं पे उनका उनकी मानहानि ना हो या उन्हें ऐसा ना लगे कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। अगर आप अपने गांव, देश, प्रदेश कहीं से भी बाहर दूर हैं तब भी माता पिता को ये लगे जहां भी हमारा बच्चा है बिल्कुल सही है और एक सकारात्मक सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ रहा है,
0: और अपने देश, अपने बड़े बुजुर्ग और अपने घर का नाम रोशन हो, इस बात का युवाओं को ध्यान रखना चाहिए।
1: बिल्कुल। अच्छा एक संदेश आया है, ये पढ़ना चाहती थी सोनाली। इन्होंने आधिकारिक जो थीम है इस साल की वो बताई है, थीम है अलग परिस्थितियां समान आकांक्षाएं। तो इस विषय पर जोर देता है इस साल का ये थीम कि भले ही दुनिया भर के युवाओं की सामाजिक और भौगोलिक स्थितियां अलग हो लेकिन उनके सपने और जरूरतें एक जैसी हैं।
0: बहुत सुंदर संदेश लिखकर भेजा है, और अब क्या किया जाए।
1: आज थोड़ी हल्की सी फुहार यहाँ पर रिमझिम सी बरसात हो रही है, तो चलिए दोस्तों
0: उसे महसूस करते हैं गीत के माध्यम से।

0: तो चलो चलते हैं
1: साड़ियों के संसार में।
0: हाँ बिल्कुल। अच्छा साड़ियों से संदेश भी आया, लेकिन हम पहले जानकारी दे दें कि ये खंडुआ साड़ी होती क्या है। ओडिशा में इसकी प्रसिद्ध ये साड़ी है, वहाँ की पारंपरिक बांध कला तकनीक से बनाई जाने वाली साड़ी है। वैसे तो ओडिशा के कई क्षेत्र में बुनी जाती है ये वाली साड़ी, लेकिन मुख्य रूप से कटक जिले के नुआपटना और गंगा मणिबंद गाँव में बुनी जाती है।
1: और दीपा इस साड़ी का आध्यात्मिक महत्व भी है। पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा जी के वस्त्र खंडुआ रेशम से ही तैयार किए जाते हैं, जिन पर जयदेव रचित गीत गोविंद के श्लोक भी बुने हुए हैं।
0: और इक्कत तकनीक से इसमें ताने और बाने के धागों को पहले से बांध कर और रंग कर के पैटर्न तैयार किया जाता है, जिसे बंद कला कहा जाता है। और जो दूसरे ट्रेडिशनल जो सिल्क साड़ियां हैं ना, उनकी तुलना में खंडुआ साड़ी काफी हल्की होती है, जिसे पहनना बहुत आसान होता है। इसके सिल्क और कॉटन दोनों में इसे बुना जाता है।
1: और डिजाइन की बात की जाए तो इसमें मुख्य रूप से हाथी, मोर, कछुआ, शंख, फूल और मंदिर की आकृति यानी टेंपल बॉर्डर जैसे शुभ प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। और रंगों की बात की जाए तो लाल, पीला, नारंगी और केसरिया जैसे जीवंत रंगों का अधिक इस्तेमाल होता है। और इस विशेष साड़ी के दो और तीन प्रकार हैं, जैसे खंडुआ पाट जो शुद्ध रेशम से बनी साड़ी होती है, इसका उपयोग मुख्य रूप से मांगलिक अवसरों, त्योहारों, विवाह और धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है
0: जी। और सूती खंडुआ उसी तरह होती है, लेकिन इसमें शुद्ध कॉटन से बनाई जाती है। ये वाली साड़ी हल्की होती है, ब्रीदेबल यानी कि सांस लेने योग्य। अगर ऐसा नहीं लगना चाहिए कि साड़ी पहन के कुछ भारी सा लग रहा है
1: या चुभ रहा है,
0: वैसा नहीं लगता इसे पहनकर। एकदम आरामदायक होती है ये वाली साड़ी। आप चाहें तो सखियां रोजमर्रा के उपयोग में ले सकती हैं इसको, और गर्मी के मौसम के लिए तो बहुत उपयुक्त साड़ी है ये।
1: और गीत गोविंद खंडुआ, ये खंडुआ का सबसे पवित्र और पारंपरिक रूप माना जाता है। इसके बॉडी या आंचल पर देवनागरी या ओडिया लिपि में गीत गोविंद के श्लोक बुने जाते हैं। इसे मुख्य रूप से भगवान जगन्नाथ के वस्त्रों के रूप में और धार्मिक अनुष्ठानों में पहना जाता है। और एक है टसर खंडुआ, इसमें टसर सिल्क का उपयोग किया जाता है। इसमें साड़ी को एक प्राकृतिक हल्का सुनहरा और मैट टेक्सचर मिलता है।
0: अब देखो ये इतनी तरह की साड़ी है, तो अगर आपको टसर जो फैब्रिक है वो पसंद है तो उसकी साड़ी ले सकते हैं, अगर कॉटन पसंद है तो वो ले सकते हैं, सिल्क पहनना चाहती हैं तो वो ले सकते हैं। आप चाहे तो इस साल की दिवाली या बड़े उत्सव, कोई बड़े उत्सव के लिए भी इस साड़ी को ले सकते हैं। तो प्राइस रेंज अगर आप बोलें कि किस प्राइस में आती होंगी, तो 2,500 से 25,000 के ऊपर तक ये साड़ी मिलती है। तो जितने शुद्ध रेशमी धागे उसमें बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल। और हमने जो पूछा था ना कि क्या पहनना ज्यादा पसंद है, तो हमारी एक सहेली लिखती है कि मुझे साड़ी पहनना बेहद पसंद है और पहनती भी हूँ, पर अब ड्रेस पहनना शुरू कर दिया है। ड्रेस पहनना ज्यादा ईजी लगता है, झट से

0: लो और चल दो। मुझे भी साड़ी में खूबसूरती ज्यादा दिखती है, पर सलवार सूट हो या कोई भी ड्रेस हो अगर सलीके से पहना गया रंग उम्र और समय के अनुसार तो वो भी बहुत खूबसूरत लगता है। पर साड़ी की बात तो कुछ और निराली है, तो भाई साड़ी जीतती जा रही है, जीत तो साड़ी की हो रही है।
1: और एक सखी ने लिखा है, आज हरियाली अमावस्या है, आज भी महिलाएं खूबसूरत रंग बिरंगी हरी साड़ी चूड़ी में सज धज कर मंदिरों में बाजारों में दिख रही है। साड़ियां चूड़ियां और राखियों की खरीदारी चल रही है, मेहंदी लगवाने की भी भीड़ लगी हुई है, गर्मी है फिर भी सभी को अपनी बारी का इंतजार है।
0: वहीं हमारे एक श्रोता भाई ने लिखा है, जी ये डिपार्टमेंट तो केवल माताओं बहनों का है। भाई बात तो सही है, लेकिन खरीदने तो जाना तो आप ही को पड़ेगा ना। आगे लिखते हैं कि इस विषय में मुझे कुछ नहीं पता, केवल साड़ियों के विषय में सुनकर जानकारी बटोरेंगे। आप सिर्फ जानकारी नहीं बटोरेंगे, इस साल उन्हें दिलाएंगे भी।
1: हाँ बिल्कुल, प्रॉमिस चाहते हैं। और एक साथी ने लिखा है कि काश साड़ी परिधान पुरुषों के लिए भी होता, पैंट शर्ट तो महिलाओं के परिधान में सम्मिलित हो चुका है, धोती थोड़ा साड़ी से मैच करती है, पूरी नहीं। पर देखा है ना, आजकल साड़ियों से भी ना पुरुष उसके परिधान बनाते हैं, उसके धोती सिलवाते हैं, कुर्ते बनवाते हैं, जैकेट बनवाते हैं। तो पुरानी अगर साड़ी हो चुकी है तो उससे जो हमारे पुरुष भाई हैं वे भी उससे कुछ कुछ जैकेट्स वगैरह धोती वगैरह बनवा सकते हैं।
0: बिल्कुल, और वो भी कहीं दिखा सकते हैं कि देखिए हमारा भी अंदाज अलग है, निराला है। जैसे कि इस गाने में हमारी हीरोइन देखिए क्या कह रही है।

0: सब घूंघट तो जरा ओढ़ो।
1: वंदे मातरम। ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की लेखनी से अवतरित दिव्य रचना जो बनी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए तेजोमय प्रेरणा। स्वाधीनता दिवस के पावन अवसर पर सुनिए राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अनुवादों पर आधारित वंदे मातरम एक जय घोष, इस रूपक श्रृंखला की विशेष कड़ी।

0: शनिवार 15 अगस्त 2026 को दिन में 11 बजे केवल विविध भारती पर। विशेष मेगा एपिसोड वंदे मातरम, एक जय घोष।
1: सोनाली, अब एक वक्त हो चला है अंतराल का,
2: तो लेते हैं ब्रेक।

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर है, कार्यक्रम है सखी सहेली। और एक मैसेज को पढ़ के ना दीपा मैं थोड़ी भावुक हो गई।
1: क्यों?
0: इतना सुंदर मैसेज है। हमारे एक साथी लिखते हैं कि मेरी माताजी के देहांत को 19 साल हो गए हैं, पर आज भी मेरी माताजी के नाम से हर साल एक बार एक साड़ी खरीदता हूँ और यथा उचित प्रसंग नहीं तो उनके जन्म दिवस पर किसी जरूरतमंद बुजुर्ग महिला को ये साड़ी दान में दे देता हूँ। निजी तौर पर जब भी मैं अकेला महसूस करता हूँ तब मेरी माताजी की साड़ी को ओढ़ के सो जाता हूँ, तो मुझे मेरी माताजी की कमी महसूस नहीं होती। इस विषय को आज चर्चा में लाने के लिए आप सभी और विविध भारती का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ।
1: जी, ये कुछ इसी तरह की भावनाएं शायद हमारी बहुत सारी सखियों की भी होती होगी। हम जो हमारे प्रिय हैं, जो हमसे दूर चले जाते हैं, उनकी कोई पहनी हुई चीज सदा हमारे पास रहती, तो एक धरोहर के रूप में
0: हमारे साथ रहती
1: और याद उनकी ताजा बनी रहती है। तो आपने भी ये अपना अनुभव शेयर किया तो उसके लिए हम आपको धन्यवाद कहते हैं।
0: और भाई देखिए ना, कभी कभी दीपा ऐसा होता है ना कि बहुत सारी साड़ियों के सेल भी लगे होते हैं, उसकी भी सूचना हमें अखबारों से मिल जाती है
1: जी,
0: कि फला फला कंपनी की जो साड़ियां हैं वो बहुत सस्ती और बहुत अच्छी होती हैं, तो उसका हमारे शहर में सेल लग गया, उसमें 50% ऑफ है, तो कभी 25% है, और खासकर बारिश के मौसम में बहुत साड़ियों के सेल लगते हैं।
1: सोनाली, आपका इशारा समझ गए हम, मान गए भाई कि अखबार रोज पढ़ना बेहद जरूरी है,
0: और उसमें सिर्फ साड़ी के बारे में नहीं पढ़ना है। नहीं तो ऐसा है कि उस पन्ना खोल लिया, देख लिया कि कहाँ सेल लगा है।
1: हम महिलाएं यही करती है ना, सबसे पहले उस पन्ने पे जाती हैं जहाँ पे एग्जीबिशन कहाँ चल रही है, सेल कहाँ चल रही है, सबसे पहले हम वो पढ़ते हैं और फिर घर में कहते हैं भाई शनिवार रविवार को हम तो बिल्कुल व्यस्त रहने वाले हैं।
0: नहीं, यानी रंग बिरंगा जो पन्ना होता है ना वो महिलाओं को ज्यादा भाता है। पर ऐसे नहीं है, गृहिणियों को भी सारा पेपर, सारा अखबार रोज पढ़ना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, अखबारों से हमें बहुत बहुत नए नए विषयों की जानकारी मिलती है, और बहुत कई बार हम सचेत भी हो जाते हैं दीपा, कि अगर देखिए ना वो जो दुर्घटना घटी, अगर उसमें ऐसा होता, यानी कोई मेन होल में गिर गया है, मोबाइल में लगा हुआ था लड़का बच्चा जो था, तो हमें बाहर निकलते वक्त मोबाइल ऐसे मोबाइल में झुक कर देखते नहीं जाना है, हमें रास्ते से चलते वक्त सावधानी से जाना है। ये मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे कई सारे ऐसे वाकया होते हैं कि जो हम अखबारों के कारण हम सचेत हो जाते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और कहीं हमारे शहर के किसी और क्षेत्र में जहाँ बहुत दूर है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, हमें सब कुछ पता चलता रहता है, यहाँ तक कि देश विदेश की सारी मुख्य जानकारियाँ भी हम प्राप्त कर पाते हैं, जो कि ऐसा नहीं है कि महिलाएं हैं तो हमें कुछ बाहर के बारे में ना पता चले, ये जरूरी नहीं है। हर चीज के लिए सतर्क और सचेत रहना आज के जमाने में सबके लिए, उम्र कोई भी हो, बेहद जरूरी है।
0: वैसे दीपा, अखबार केवल कागज के कुछ पन्नों का संग्रह नहीं होता है, बल्कि वर्तमान समय का सजीव दस्तावेज होता है। इसमें मौजूद हर तरह का समाचार हमें समाज, देश और विश्व स्तर से जोड़कर रखता है। और जो लोग रोज अखबार पढ़ते हैं वे केवल घटनाओं से परिचित नहीं होते, बल्कि बदलते समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना भी सीख जाते हैं। और ऐसा होता है ना कि सुबह की चाय की चुस्कियों के साथ जब हम अखबार के पन्ने खोलते हैं तब मानो ज्ञान की एक नई खिड़की खुल जाती है। कहीं विज्ञान की नई उड़ान है, कहीं खेल जगत की नई विजय गाथा है, कहीं संस्कृति की सुगंध है, तो कहीं समाज की चुनौतियों का आईना हमें नजर आता है।
1: ये इसी बात पर देखो एक संदेश आया है, ये संदेश में हमारे श्रोता भाई कहते हैं कि मैं सुबह सुबह हमेशा चाय पीते पीते अखबार पढ़ता हूँ और दोपहर में आराम से क्रॉसवर्ड, जो उसमें सेक्शन होता है जिसमें शब्द खाना पूर्ति करना होता है, वो करता हूँ। इससे मेरे दिन की शुरुआत अच्छी होती है और मूड भी फ्रेश होता है।
0: ये बहुत अच्छी आदत है, ये ना खासकर बुजुर्गों को भी ये करना चाहिए। जो क्रॉसवर्ड होते हैं ना, उससे हमारा दिमाग तेज रहता है, उससे हमारा दिमाग चलता है, तो बढ़ती उम्र के साथ साथ क्या होता है, दिमाग की नसें थोड़ी सी सिकुड़ने लगती हैं, तो क्रॉसवर्ड जरूर हमें बढ़ती उम्र के साथ करना चाहिए। एक हमारे साथी ने लिखा है कि स्कूल में किताब पढ़ने का शौक हुआ स्कूल की लाइब्रेरी के कारण, उसके बाद बाहर की किताबें, कुछ चुनिंदा लेखकों का पता चला, उनको पढ़ा, फिर अखबार थाम लिया, जो अब तक साथ है। कितनी अच्छी बात है। वही एक साथी कहते हैं कि अखबार पढ़ना सबसे पहले स्कूल में हर रोज हिंदी की हेडलाइन

0: टाइम के प्रेयर में पढ़ने के लिए बोला जाता था। मैट्रिक में स्कूल में टीचर ने बताया इंग्लिश पेपर पढ़ो, इससे इंग्लिश अच्छी होती है। बस वो आदत दिनचर्या में शामिल हो गई है। बहुत लोग सुबह की चाय के साथ अखबार देखते हैं, जो एक बेहतरीन दिनचर्या है, जो ना सिर्फ देश दुनिया की खबरों से जोड़ता है बल्कि मानसिक विकास में भी मदद करता है।
1: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अखबार जो भाषा का मूक शिक्षक है, इसकी शब्द संपदा हमारी अभिव्यक्ति को निखारती है, विचारों को परिपक्व बनाती है और दृष्टिकोण को व्यापक भी करती है। और संपत्ति लेख जो हम अगर पढ़ते हैं तो उससे हम तर्क करना सीखते हैं, जबकि प्रेरणादायक समाचार जीवन में आशा और उत्साह का संचार करते हैं। और देखो ना सोनाली, आज सोशल मीडिया के तेज बहाव में सूचनाएं क्षण भर में आती जाती रहती हैं, पर लेकिन अखबार सत्य, संतुलन और विश्वसनीयता का दीपक बनकर हमारे विश्वास को प्रकाशित करता है।
0: एक हमारे सखी ने भी लिखा है कि मुझे संपादकीय पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, इसमें तार्किक और गंभीर सोच विकसित होती है। स्क्रीन पर स्क्रॉल करने के बजाय प्रिंट या अखबार पढ़ने से ध्यान केंद्रित करने की शक्ति बढ़ जाती है। वर्षों से सुबह का अखबार निश्चित और शांत होकर पढ़ना चाहती हूँ। सुबह का काम निपटाकर 9 बजे के बाद नाश्ता करने के बाद मैं पेपर पढ़ती हूँ और ज्ञानवर्धन के साथ मेरा बहुत समय अच्छा व्यतीत होता है। किसी कारणवश अगर दिन में पेपर छूट जाए तब भी मुझे समय मिलता है तो रात में मैं पेपर जरूर पढ़ती हूँ।
1: बिल्कुल, और ये संपादीय जो संपादकीय लेख जो है इसे पढ़ना बेहद जरूरी है बच्चों को भी, क्योंकि अगर आप किसी भी तरीके की प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं कॉम्पिटिटिव और मतलब पूरे ऑल इंडिया लेवल पे, तो इसमें ये एडिटोरियल सेक्शन आपको बहुत काम करता है, बहुत मदद करता है जानकारी हासिल करने के लिए। और कहीं पर कुछ ऐसा सेक्शन आता है कि आपको ऐसे या निबंध कहीं पे लिखना है तो ये खंड आपको आसानी से उसको पार करने में मदद करता है।
0: और आप क्या करना है?
1: हमें तो गीत सुनना है।
0: सुनते हैं गीत।

0: तो भाई अखबारों से यारी करनी है और थोड़ा ये मोबाइल में भी बैठना जरूरी है, लेकिन स्क्रोलिंग से करना है। उतनी नहीं, अगर ज्ञान की जरूरत उसके द्वारा लेनी है तो वो भी लेना जरूरी है। लेकिन एक देखिए संदेश यहाँ पर आया है, हमारे श्रोता ने लिखा है कि अखबार पढ़ना, ये सबसे पहले स्कूल में हर रोज हिंदी की हेडलाइन प्रेयर में पढ़ने के लिए बोला जाता था, और मैट्रिक में स्कूल में टीचर ने बताया था कि इंग्लिश पेपर पढ़ो, तो इंग्लिश इससे हमारी अच्छी हो गई। उसके अलावा एक और संदेश आया है, ये कहता है कि स्कूल में किताबें पढ़ने का शौक हुआ और स्कूल की लाइब्रेरी के कारण, उसके बाद बाहर की किताबें कुछ चुनिंदा लेखकों का पता चला, उसको पढ़ा, फिर अखबार थाम लिया, जो अब तक साथ है।
1: एक साथ ही लिखते हैं, अखबार पढ़ना ये ऐसी आदत है, जिस दिन अखबार की छुट्टी होती है उस दिन बहुत खालीपन लगता है, वो दिन अधूरा लगता है। जो समय अखबार पढ़ने का होता है समय कटता नहीं। मेरा समय दोपहर का है अखबार पढ़ने का, जब काम से फ्री होकर बैठती हूँ तो अखबार पढ़ती हूँ, और इसी समय सखी सहेली कार्यक्रम आता है तो उसको भी सुनते हुए अखबार पढ़ते हुए। अखबार हम जो पढ़ते हैं हमको वही अखबार अच्छा लगता है। जिस दिन गलती से कोई दूसरा डाल जाए तो पढ़ लेते हैं तो मज़ा नहीं आता है उस अखबार। मैंने अपने बच्चों के लिए अंग्रेजी अखबार भी शुरू किया था, दोनों बस स्पोर्ट की खबर पढ़ लेते थे, बस बाकी कुछ नहीं। अखबार पढ़ने की आदत सभी को होना चाहिए, जिससे शहर देश विदेश के समाचार मिलते हैं, जिससे हमारा ज्ञान बढ़ता है।
0: बिल्कुल, और ज्ञान बढ़ाने के लिए मेहनत करना जरूरी है, ताकि हम जीवन में आगे बढ़ सकें, और यही हमारा आज का शब्द भी है। तो बहुत सारे विचार आए हैं, हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मेहनत सफलता की कुंजी है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, कठिन श्रम के बिना तो कुछ भी नहीं मिलता। किसी लक्ष्य को पाने या काम को पूरा करने के लिए किया जाने वाला शारीरिक या मानसिक प्रयास, इसे लोग पुरुषार्थ या श्रम भी कहते हैं, जो सफलता की तरक्की की नींव है। मजदूरी, खेलकूद या खेती जैसे काम जिसमें शरीर की ताकत लगती है, मानसिक श्रम पढ़ाई योजना बनाना या बौद्धिक कार्य जिसमें दिमाग का उपयोग होता है।
1: एक और साथी कहते हैं
0: जी
1: पढ़ना चाह रहे,
0: बस इसमें एक बात और इन्होंने कही है कि इंसान हर कठिनाई का सामना करना सीखता है, मेहनत से व्यक्तित्व का विकास और मजबूती भी आती है।
1: एक कहते हैं कि कहते हैं मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, मेहनत वो सुनहरी कुंजी है जो भाग्य के बंद कपाट को खोलती है, मेहनत ही सफलता का रहस्य है। यानी इन्होंने पूरा जीवन का सार ही लिख दिया इस छोटे से संदेश में।
0: सही बात है। एक संदेश और ये कह रहा है कि मेहनत हमारा जीवन, मेहनत हमारा नारा, मेहनत में जगमगाता है तकदीर का सितारा। इतिहास गवाह है कि मेहनत हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, बिना मेहनत जीवन में सफलता नहीं, मेहनत सफलता की ऊंचाइयों तक हमें पहुंचने में संभव कर देता है हमारा रास्ता।
1: एक सखी ने लिखा है, हमारी दोनों सखियां मेहनत करके इतने सुंदर और अच्छे कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करती है, फिर उन्हें सजाकर प्रस्तुत करती है, हम सभी मिलकर सुनते हैं, उनके बारे में दो शब्द कहते हैं, अंत में हम और आप दोनों ही खुश होते हैं। मेहनत करने के बाद जो मिलता है उसकी खुशी का कोई वर्णन नहीं कर सकता, इसलिए मेहनत तो जरूरी करनी चाहिए, कभी कभी परिणाम देर से मिलता है पर मिलता जरूर है।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: और धन्यवाद कहते हैं।
0: बिल्कुल धन्यवाद उन्हें। और देखिए मेहनत सिर्फ सखियां नहीं, आप भी उतनी ही करते हैं। बिल्कुल, कभी कभी तो ऐसा लगता है इस मैसेज को लें, किस मैसेज को छोड़ें, ये भी असमंजसता हमारे सामने आ जाती है। और मेहनत के बगैर तो कहीं कोई सुंदरता आ ही नहीं सकती, जैसे कि इस गाने में ये सुंदरता है।

0: और उस कार्य को करते ही नहीं। कार्य सिर्फ सपना बनकर रह जाता है, यानी मेहनत नहीं करने से कार्य सिद्ध नहीं होता है। संस्कृत में एक श्लोक है, उद्मेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि नाम मनोरथे, यानी कि भाई तभी कोई भी काम पूरा होगा जब आप उसको सिद्ध करने की कोशिश करेंगे।
1: और एक साथ ही कहते हैं कि बिना मेहनत के कोई भी कार्य संभव नहीं है, और इस कड़ी मेहनत से जो प्राप्त होता है उसका आनंद ही कुछ अलग होता है। परिश्रम से मिली सफलता में जो सुकून है वे कहीं और नहीं है। बेशक सफलता देर से मिले पर निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि मकान बनाने से ज्यादा समय महल बनाने में लगता है।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक और संदेश है, ये कहते हैं कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। मेहनत वो सुनहरी कुंजी है जो भाग्य के बंद कबाड़ को खोलती है। मेहनत ही सफलता का रहस्य है।
1: और दीपा, जब हम कोई व्यंजन बनाते हैं तब भी हमें थोड़ी मेहनत करना पड़ता है।
0: बात तो बिल्कुल सही कही,
1: क्योंकि ऐसा होता है ना कि बोलते हैं कि सिर्फ ये तो 2 मिनट में बन जाएगा। हाँ, बनने में भले ही उसे 2 या 4 या 5 मिनट लगते हैं, पर उसके पीछे जो तैयारी होती है ना उसमें 1 घंटा चाहिए। कि उसमें जब हमें प्याज काटना होता है, मिर्ची काटना पड़ता है, फिर अगर कुछ हरी धनिया है तो उसे साफ करना पड़ता है, धोना पड़ता है, फिर उसके बाद में फिर बर्तन कौन से, सब चीज़ के जिस चीज़ में बनाना है हमें वो बर्तन अलग अलग चुनने पड़ते हैं, तो उसके पीछे बहुत मेहनत होती है। यानी मेहनत के सिवा हमारा व्यंजन भी नहीं बन सकता।
0: बिल्कुल सही कहा भाई, मेहनत हम करते चलेंगे लेकिन साथ में कैसे बनाना है वो भी सीखते चलेंगे। तो ओट्स की एक रेसिपी आई है सोनाली, ये इसमें सामग्री दिया है, ओट्स को लेना है 1/2 कप, पानी या दूध ले सकते हैं आप 1 से 1.5 कप तक, सब्जियां लेनी है प्याज टमाटर गाजर या मटर बारीक कटी हुई, आपके पसंद की और भी सब्जियां आप बढ़ा सकते हैं, तड़के और मसाले के लिए घी या तेल ले लें, जीरा हल्दी नमक और लाल मिर्च। बनाने की विधि है कि कढ़ाई में घी या तेल गर्म करें, जीरा और प्याज डालकर हल्का भूने, बारीक कटी सब्जियां और टमाटर भी डालें, हल्दी नमक और मसाले डालकर इसको मिलाएं, ओट्स डालकर 1 मिनट तक और भूने। अब पानी या दूध डालकर उबले इसमें उबाल आने दें, 3 से 4 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं। ये थोड़ा सा गाढ़ा होता चला जाएगा, ये ओट की तासीर, आप जितना जितना पानी डालेंगे वो सोखता चला जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए एक तरह की खिचड़ी की तरह ही हो गई। अब इसमें ओट्स के साथ आप चाहें तो थोड़ा हुआ भीगा हुआ इसी रेसिपी में भीगी हुई दाल डाल सकते हैं, जैसे मोगर की दाल या मूंग की दाल की जो छिलके वाली मूंग की दाल है वो भी डाल सकते हैं। तो ये अपने आप में एक पूर्ण आहार बन जाएगा।
1: और एक साथी ने लिखा है कि ओट्स को कढ़ाई में भून ले, उसे ठंडा कर ले, उस भुने हुए चने के साथ उसे पीस ले, आपके लिए स्वादिष्ट पौष्टिक सत्तू आटा तैयार है। और इसी आटे से आप नमकीन पराठे और रोटी बना सकते हैं। ये सुपाच्य भी है और खाने में बहुत लजीज लगती है। देखिए ना, ओट्स के बहुत सारे व्यंजन बनाए, ओट्स का चीला बनाया जा सकता है। ओट्स को सूखा ही हमें पीस लेना है, उसमें फिर आप थोड़ा सा बेसन, थोड़ा सा चावल का आटा मिला दे, उसमें अदरक लहसुन मिर्ची की पेस्ट डाल दे और उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के उसका घोल बना के और उसके चीले बना सकते हैं। गरम गरम भी अच्छे लगते हैं। उसके बाद में इसी मिश्रण में अगर आप थोड़ा सा रवा डाल के, दही डाल के उसे थोड़ी देर के लिए ढककर रख दे, और जब बनाना हो तब उसमें फ्रूट सॉल्ट डाल के उसका हम ढोकला भी बना सकते हैं।
0: बिल्कुल। तो एक और संदेश देखिए, ये एक छोटी सी रेसिपी आई है सोनाली, कहते हैं कि ओट्स का चीला बनाने के लिए आप 1 कप ओट्स लें और 1 कप बेसन दोनों मिक्स कर लें। इसमें लौकी प्याज टमाटर हरी धनिया, आप चाहें तो गाजर वगैरह भी कीस के कद्दूकस करके डाल सकते हैं। घी लगाकर इसको चीले बनाएं और हरी चटनी के साथ खा सकते हैं। और जब ये चीले बनाएंगे तो पता भी नहीं चलेगा घर में बच्चों को कि आपने इन्हें ओट्स का चीला खिला दिया है, है ना?
1: बहुत अच्छा लगता है ओट्स, और इसकी खीर भी बहुत अच्छी बनती है। कि घी में थोड़ा सा ओट्स को भून लिया और उसके बाद में उसमें दूध डाल दिया। अगर आप उसमें शक्कर नहीं डालना चाहते हैं तो उसमें खजूर है ना, खजूर को थोड़ा सा घी में ऐसा नरम करके और उसे मिक्सी में से चला के उसकी जो पेस्ट है खजूर पेस्ट डाल के उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल के दे सकते हैं। तो ये बुजुर्गों को भी दे सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं। ऐसी पौष्टिक चीज़ें जब घर में बनती है ना, और जब घर उस खुशबू से महकता है, उसका हम वर्णन नहीं कर सकते।
0: बिल्कुल सही। और ओट्स का सत्तू बनाना भी बताया है हमारे एक श्रोता ने, कहते हैं कि ओट्स को कढ़ाई में भून लें, उसे ठंडा कर लें, इसे भुने हुए चने के साथ पीस लें, आपके लिए स्वादिष्ट पौष्टिक सत्तू आटा तैयार है। इस आटे से आप नमकीन पराठे बनाइए या रोटी बनाइए, ये सुपाच्य भी है और खाने में बहुत लजीज है।
1: और अब क्या करना है,
0: देखिए क्या करते हैं।

0: दीपा हमारे एक साथी लिखते हैं कि साथे ओट्स में कुछ भी मिक्स नहीं होता, ये केवल जई ओट्स शुद्ध रूप होते हैं। हालांकि स्वाद और सेहत के लिए लोग इसमें दूध, फल और मसाले मिलाते हैं। मीठे ओट्स में मिलने वाली चीजें, उन्होंने कहा कि उसको पकाने भिगाने के लिए दूध या पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है और उसमें केला, सेब, स्ट्रॉबेरी या आम, मेवे या बीज, बादाम, अखरोट, चिया सीड्स, कद्दू के बीज या मीठेपन के लिए उसमें शहद, गुड़ या मैपल सिरप डाल दिया जा सकता है और इस तरह से स्वादिष्ट ओट्स की रेसिपी बन सकती है।
1: तो आज तो बहुत सारे ओट्स बनाने के तरीके हमने भी सीख लिए हैं।
0: बहुत सारे सीखे, श्रोताओं से हम बहुत कुछ सीखते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और देखो, अब वक्त कहता है कि आज तो हमें लेना होगा विदा।
0: पहले श्रोताओं को धन्यवाद कह देते हैं। सारे श्रोताओं को दिल से धन्यवाद इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स लिखने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। और अब लेते हैं इजाजत। आप सभी को सोनाली पाठक
1: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।

0: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं लेखक, निर्देशक और कॉमिक क्रिएटर आलोक शर्मा से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग।
1: मैं एक रेडियो स्टेशन गया, एफएम रेडियो तब नए नए आए थे। जीवन का मेरा पहला अनुभव था कि मैं एक रेडियो स्टेशन के अंदर गया और उन्होंने ऑडिशन के लिए बुला लिया। मैंने जस्ट एक मेल भेजी थी उनको कि मैं आना चाहता हूँ, ऑडिशन देना चाहता हूँ। उन्होंने ऑडिशन में बुला लिया। मैंने जीवन में उससे पहले कभी कोई रेडियो स्टेशन नहीं देखा था। मैंने वहां जाके विभत्स ऑडिशन दिया, एक बहुत ही भयानक, अभी भी सोचता हूँ तो मैं सिहर जाता हूँ। मैं एक किरण श्रीधर नाम के आरजे हुआ करते थे, अभी भी हैं, तो मैं अभी भी मतलब कभी कभी किरण को नतमस्तक हो जाता हूँ कि उसने मुझे आधे घंटे कैसे झेला था उस स्टूडियो के अंदर। मैं तो नहीं झेल सकता था अगर कोई मेरे जैसी हरकतें करता वहां पे। तो मैंने बहुत खराब ऑडिशन दिया, बहुत ही ज्यादा खराब। मतलब मैं स्टूडियो के बाहर जाते जाते ही समझ गया था कि ये लोग मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहेंगे। लेकिन यहाँ मेरी कहानी में एंट्री होती है विविध भारती की। तो विविध भारती मैंने सुनना शुरू किया मेरे ख्याल से जब मैं नवीं में फेल हुआ था उसके बाद, क्योंकि रात में छाया गीत और ये सब आते थे, मुझे बड़े अच्छे लगते थे, थोड़े सुकून वाले गाने होते थे।
2: बिल्कुल,
1: क्योंकि रात में आपको थोड़ा सा सुकून चाहिए था क्योंकि तपता हुआ दिन निकाला है सारे स्कूल से लेके पड़ोस तक। तो वहां मैंने विविध भारती सुनना शुरू किया, जहां मैं आप सबको सुनता था। कमल शर्मा थे, आप थे, आप हैं और बहुत सारे उद्घोषक। मुझे अभी भी याद है आप लोगों का एक होली का कार्यक्रम आया था जो बहुत बहुत मजेदार था। मैंने उसको रिकॉर्ड करके रखा था एक कैसेट में। तो मैं बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड करता था। अमीन सयानी साहब को मैं मिमिक किया करता था। तो मुझे लगा था रेडियो में तो मैं जाके मतलब तूफान ही मचा दूंगा, क्योंकि जैसे कार्टूनिंग में मैंने तूफान मचाया हुआ है अपने दिमाग में। तो जब रेडियो में गया और मैंने ये पूरा ऑडिशन खराब कर दिया, खराब करने के बाद जब मैं बाहर निकल रहा था तो जो आरजे थी, जैसा कि होता है, एक कुछ तो गलत इन्फॉर्मेशन गई एकदम फट करके ऑन एयर। और मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये मन्ना देखी आवाज है। तो उनके जो क्रेडिट थे उसमें क्रेडिट गलत गया हुआ था। तो उन्होंने बोला पक्का? मैंने कहा आप चेक कर लीजिए। इंटरनेट था, उन्होंने तुरंत चेक किया, उन्होंने तुरंत मिस्टेक करेक्ट किया। और उसके बाद वो मन्ना दे पर कार्यक्रम था और मैंने उनको लगातार ट्रिविया देना शुरू किया, वो प्रोग्राम ठीक हो गया। और उनको लगा कि ये तो ठीक है, आया था ऑडिशन देने लेकिन आदमी काम का। लेकिन वो 6 महीने तक मुझे हायर नहीं कर सकते थे। ऑडिशन में अगर आपने गड़बड़ कर दी, उनका कुछ तो रूल था, वो 6 महीने तक हायर नहीं कर सकते थे। मैंने 6 महीने से उंगलियों पे गिने, 6 महीने मुझे पता है मैंने कैसे गिने। और मैंने ये भी दिमाग नहीं लगाया कि 6 महीने ऐसे नहीं होता है, 6 महीने वर्किंग डेज के हिसाब से होता है। मैंने 6 महीने डेट टू डेट लगा के
2: और दिन बढ़ गए उसके बाद।
1: नहीं नहीं कम हुए, क्योंकि वर्किंग डेज के हिसाब से तो

0: 6 महीने अगर काउंट करेंगे तो वो 7 महीने हो जाता है, सैटरडे संडे हटा के, नेशनल हॉलीडेज हटा के, मैंने वो गिने ही नहीं। जस्ट जिस दिन 6 महीने पूरे हुए, मैं बैठा, मैंने कॉमिक्स बनाई एक पेज की कि मैंने क्या क्या गड़बड़ किया रेडियो में आपके यहाँ आके, लेकिन मुझे दूसरा चांस चाहिए। वो कॉमिक्स बना के मैंने प्रिंट किया एक पेज का और मैंने उनको भेज दिया। तो मुझे किसी अनजान नंबर से कॉल आया कि अच्छा आप कार्टून बनाते हैं। मैंने कहा हाँ, तो आप आके मिलेंगे हमसे। मैं वेट कर रहा था रेडियो स्टेशन से कॉल आएगी, लेकिन ये किसी एड एजेंसी से कॉल थी। वो रेडियो से किसी एड एजेंसी को चला गया था मेरा मेरी कॉमिक। तो वो रेडियो की जो प्रोग्रामिंग डायरेक्टर थी, उनके हस्बैंड थे, उनकी एड एजेंसी थी, उन्होंने मुझे फ्रीलांस दे दिया। वो फ्रीलांस निपटाते तक मुझे रेडियो से कॉल आया कि अभी 6 महीने पूरे हुए तुम्हारे, अब आ जाओ। तो वो कॉमिक्स की बदौलत मुझे थोड़ा कॉमिक्स का काम मिला, थोड़ा रेडियो को मिला, और मेरा रेडियो में पदार्पण हुआ इस तरह से। और फिर मैंने रेडियो शोज भी किए। फिर एक वही है ना कि एक फेलियर के बाद जो चमड़ी मोटी हो जाती है वो,
1: करेक्ट,
0: हाँ वो चमड़ी मोटी हो गई। तो रेडियो शोज भी किए, प्रोड्यूस किया बहुत कुछ, वॉइस ओवर्स किए, फिर तो शर्म भी झिझक भी चली गई माइक के सामने की। तो इस तरह से रेडियो का करियर शुरू हुआ मेरा।
1: तो यहाँ से रेडियो शुरू हो गया
0: जी,
1: है ना। और ये यात्रा मुंबई तक कैसे आई?
0: रेडियो से रेडियो। हाँ, मुझे मुंबई आना ही था, क्योंकि क्या हो रहा था बैंगलोर में, धीरे धीरे जो वहाँ की प्रादेशिक भाषा है कन्नड़ा, उसका संगीत बढ़ रहा था, जो कि बढ़ना ही चाहिए था। वहाँ कंपटीशन भी बढ़ रहा था, नए स्टेशन आ रहे थे, और मुझे ऐसा लगने लगा था कि अब मुझे मुंबई चले जाना चाहिए, क्योंकि मैं बैंगलोर में भी नेशनल प्रोग्रामिंग हैंडल करता था उस स्टेशन में, और यहाँ से मैं बैंगलोर से वॉइस करके उनको भेजता था मेरी वॉइस हिंदी में। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी जगह शायद मुंबई है। तो हमारे स्टेशन में उस जमाने में लाफ्टर चैलेंज बड़ा चला हुआ था, तो रेडियो में भी एक ऐसा लाफ्टर चैलेंज का रेडियो वर्जन चल रहा था हमारे स्टेशन में, जिसके जज थे विनय पाठक। तो मैंने विनय पाठक का नंबर मेरे पास था, क्योंकि उनका मैं सैटरडे के सैटरडे रिकॉर्ड किया करता था। उसके अलावा जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था, और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी, क्योंकि हिंदी सिनेमा मैं बेहतर तरीके से समझता था। तो इस बीच मुझे मन्ना दे साहब का एक पूरा 1.5 घंटे का कार्यक्रम प्रोड्यूस करने मिला, जिसमें मन्ना दे साहब खुद आए थे। तो वो मेरे लिए मेरा पहला जो कहना चाहिए सेलिब्रिटी मोमेंट था वो,
1: बिल्कुल।
0: हाँ, मन्ना दे साहब से मिलना, मधुशाला के CD पे उनसे साइन कराना, और प्रोग्राम के बाद जब मैं उनके साथ बैठा कुछ आधे घंटे, उनके साथ थोड़ी बात बात की, तो उन्होंने बोला यार ये सब सवाल तो अंदर करने चाहिए थे, अंदर वालों ने तो किया ही नहीं। तो उससे और मेरे कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा बूस्ट आ गया। उसके बाद मैं उनके साथ बराबर टच में बना रहा। मेरे ख्याल से 1 मई को उनका जन्मदिन होता है,
1: और
0: हर 1 मई के 1 मई में उनको कॉल किया करता।
1: क्या बात है, मैं भी
0: तो और मुझे लगता है कि उनके जैसा गायक ना कोई आया ना कोई आएगा। तो ये हुआ था। इसके अलावा जितनी भी फिल्में रिलीज होती थी या कोई कलाकार आ रहा होता था, तो मुझे वो जिम्मेदारी दे दी गई थी कि भाई तू इनका इंटरव्यू कर लिया कर, तुझे जो जो पूछना है पूछ लिया कर, और बाद में पैकेज करके हम लोग इसको चला लिया करेंगे स्टेशन। तो मुझे एक बार आशा भोसले जी का इंटरव्यू करने मिला, और मैं बहुत एक्साइटेड था। मैंने आधे घंटे इंटरव्यू किया, और जब फोन कटा मैंने देखा मैंने रिकॉर्ड बटन दबाना ही मैं रिकॉर्ड बटन दबाना ही भूल गया था। और वो बड़ी खुश थी कि अरे तुम्हारी तो रिसर्च बड़ी अच्छी है। मैंने कहा मैंने ऑल इंडिया रेडियो सुन के ये रिसर्च आई है। तो फिर मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने मुझे थोड़ा सा प्यार से डांटा, फिर बोली अभी 10 मिनट, अभी आधे घंटे नहीं मिलेंगे। फिर वो दोबारा हमने रिकॉर्ड किया।
1: मुझे लगता है कि यहाँ एक गाने की गुंजाइश बनाई जाए, तो बोलिए कौन सा गाना होगा?
0: तो मन्ना दे साहब का मेरा सबसे प्रिय जो गीत है, मेरे ख्याल से सबका ही होगा, जब हम मन्ना दे साहब के बारे में सोचते हैं, तो तू प्यार का सागर है,
1: सीमा फिल्म,
0: शंकर जयकिशन,
1: हाँ बिल्कुल,
0: शैलेंद्र।
1: सुनते हैं ये गाना
0: जी।

0: तो ये सब एडवेंचर चल रहे थे, इस बीच में मुझे ऐसा लगा कि मुझे बंबई आ जाना चाहिए. बंबई में एक टीवी चैनल था, अभी भी है, उसमें फिल्मों के स्पूफ चला करते थे, फुल्ली फालतू.
1: बिल्कुल.
0: तो वो मुझे बहुत पसंद था, वो मैं रेडियो में कर रहा था. मेरे पास एक मिमिक्री आर्टिस्ट था, मैं था, हम दोनों मिमिक्री करवर के कुछ एक
1: बना रहे,
0: 10-12 मिनट का प्रोग्राम बना लेते थे संडे के संडे. तो मुझे ऐसा लगा कि अब जो अगला कदम है वो यही है कि अब मैं वहां जाऊं, उस चैनल में जाऊं और मैं बोलूं मैं ये करता हूं. तो मैंने मेरे सैंपल्स बनाए, वॉइस ओवर्स किए, ये वो करके पैकेज करके उनको भेजा. मुझे वहां से बुलावा भी आ गया, तो मैं यहाँ आया. यहाँ आया तो जिसने मुझे बुलावा भेजा था उसने नौकरी छोड़ दी थी. तो मैं यहाँ आया और मैं भटकता रहा 3 दिन बंबई में. विनय पाठक को मैंने कॉल किया, विनय जी ने मुझे बुलाया. वो लोग द ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो क्या करते थे, तो उन्होंने बोला यहाँ आओ, राइटर्स से मिलो. वरुण ग्रोवर वो लिखा करते थे,
1: बिल्कुल उस जमाने
0: राहुल और वरुण की जोड़ी हुआ करती थी उस टाइम. राजेश देवराज हेड राइटर होते थे. तो अब राजेश देवराज बहुत अच्छे दोस्त मित्र हैं, लेकिन उस समय उनसे मिलना नहीं हो पाया था मेरा. मैंने सिर्फ सुना था कोई देवी नाम के एक लेखक हैं जिनसे तुमको मिलाना है, लेकिन वो है नहीं. मेरा बड़ा एक रहस्यमय ऐसा किरदार बन गया था मेरे दिमाग में, देवी कौन होंगे. बाद में मुझे पता चला राजेश से मिलने के बाद कि यही है देवी. तो और विनय सर बहुत सपोर्टिव थे, तो मतलब जरा भी मुझे दिक्कत नहीं आई. उन्होंने बुलाया, मैं स्टूडियो गया, मेरी लाइफ का मैंने पहला शूट देखा. किकू शारदा थे वहां पे, बहुत सारे लोग थे, और मुझे लगा यार ये जगह है जहां मुझे आना है, ये चीज मुझे करनी है. वो कभी हो नहीं पाया, कॉमेडी शो में कभी नहीं कर पाया विनय सर के साथ में. हम मिलते रहे, 2-3-4 बार मिले उसके बाद. अभी तो मुझे लगता है उनसे मिले मुझे 20 साल हो गए. तो वो सब करके मैं यहाँ से गया और मुझे लगा कि मुझे बम्बई चल पड़ना चाहिए, बैग पैक कर लेने चाहिए बैंगलोर से. तो बैग पैक किए, यहाँ एक दूसरा रेडियो स्टेशन था जहाँ से मुझे ऑफर थी और ठीक ठाक ऑफर थी. तो मैं वो छोड़ के यहाँ आ गया और मैंने कहा मैं रेडियो करता हूँ. तो रेडियो में फिर बहुत सारी मज़ेदार चीज़ें हुई. सुनील ग्रोवर के साथ मैंने बहुत काम किया उस समय में, लल्लन नाम का एक हमारा शो हुआ करता था. वो जो सारी चीज़ें मैं टीवी में करना चाहता था वो मैं फिर रेडियो में करने लगा और मेरा पेट भर गया उस चीज़ से. 4-5 महीने में मैंने कहा अगर यही करना है तो
1: क्या
0: मजा नहीं आएगा. हाँ, ये वही वही

0: सर्कल वाली बात हो गई ना कि उसी सर्कल में आप फिर से भागने लग गए, तो अब इससे ज़्यादा क्या होगा। तो फिर ऐसा लगा कि मुझे एनिमेशन करने का बहुत मन था, और किसी के थ्रू, एक जान पहचान के थ्रू मैं वहाँ पहुँचा। मुझे करीब 8-9 घंटे बाहर बिठा के रखा गया स्टूडियो के, बिठा के नहीं रखा गया बोलना चाहिए उसको, वो लोग बिजी थे और मैं बिना खाए पिए मैं बैठा रहा बाहर। और फिर वो आए, वेंकटेश गायकवाड़ नाम था उनका, है अभी भी, वेंकटेश गायकवाड़ नाम है उनका। उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था वेंकटेश ने,
1: वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर,
0: बहुत ही जबरदस्त कैरेक्टर। तो वेंकटेश गायकवाड़ अपने आप में एक लेजेंड, लेकिन मुझे नहीं पता था। तो और वो जीनियस, मतलब मैड जीनियस जो बोलते हैं ना, मैड जीनियस थे वो। तो रैंडमली आए, बोले कुछ खाया तूने? मैंने कहा मैंने खाया, तो सैंडविच खाते हैं चल। उन्होंने सैंडविच खाते खाते बात की, उन्होंने बोला तू क्या कर सकता है? तो मैंने कहा मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। तो वो मुंबई के साथ मेरा पहला साक्षात्कार। फिर उन्होंने बोला तू करना क्या चाहता है? मैंने कहा मैं फिल्म मेकर बनना चाहता हूँ। फिर उन्होंने मुझे और गालियां दी। उन्होंने कहा फिल्म मेकर क्या, प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है? तो मैंने कहा मैं डायरेक्ट करना चाहता हूँ, मैं लिखना भी चाहता हूँ, और मौका मिला तो प्रोड्यूस भी करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरा बहुत मजाक बनाया, उन्होंने बोला ये सब हम भी चाहते हैं लेकिन हम
1: नौकरी कर रहे हैं,
0: नौकरी कर रहे हैं हम लोग, तू यहाँ क्या करने आया? अगर तेरा ये सपना है तो जा वहाँ पे, बन किसी का थर्ड असिस्टेंट, उठा सबके जूते चप्पल, वहां से शुरू होती है जर्नी, हम तो ये करके आए हैं। उन्होंने काफी बड़े डायरेक्टर्स को असिस्ट किया हुआ था उस समय तक, तो ये करना पड़ेगा, ये रास्ता है। मैंने कहा ये तो नहीं हुआ मेरे से, क्योंकि रेडियो में मैं बहुत अच्छा काम करके आ चुका था, कॉमिक्स में ठीक ठाक काम कर चुका था, तो दंभ नहीं था, गर्व था अपने काम पर। तो ये भी था कि यार ये मैं, पता नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा। मतलब मैंने देखे किस तरीके से लोग असिस्टेंट डायरेक्टर्स के साथ बर्ताव करते हैं, मैंने कहा ये तो नहीं करूँगा मैं, ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि लाख चमड़ी मोटी सही लेकिन इतनी मोटी अभी भी नहीं हुई है। और हम छोटे शहर से आते हैं तो हमारा गर्व का जो परसेंटेज है थोड़ा ज़्यादा भी होता है। तो मैंने कहा ये तो नहीं करूँगा मैं, तो आप बताओ क्या करना है? तो उन्होंने कहा प्रोमो बनाना जानता है तू? तो मैंने कहा जानता तो नहीं लेकिन बना लूँगा मैं। तो उन्होंने एक एनिमे आता था उस समय में, उसका मुझे एक 2-3 एपिसोड दिए, उन्होंने कहा कि इसका प्रोमो बना के लिया। तो मुझे ना एडिटिंग आती थी ना कुछ आता था, मुझे साउंड आता था क्योंकि मैं रेडियो से था। तो मैंने सबसे पहले किया कि मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी, उसको मैंने अशोक कुमार की आवाज़ में खुद ही रिकॉर्ड किया। और फिर उसके ऊपर एक एडिटर के साथ बैठ के उसको एडिट लगाया एक रात में, और दूसरे दिन सुबह मैं पहुंच गया वापस। मैंने कहा ये प्रोमो हो गया, इतनी जल्दी? मैंने कहा मुझे आना है, तो मेरे पास टाइम नहीं है ज़्यादा, अगर मैं यहाँ नहीं आऊँगा तो मुझे रेडियो में फंसे रहना पड़ेगा। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा एक आवाज़ किसकी है? तो मैंने कहा मेरी है। उन्होंने कहा स्क्रिप्ट किसकी है? तो मैंने कहा मेरी है। अरे ठीक है, तू हायर हो गया। तो इस तरीके से मैं टीवी में आ गया। बहुत बहुत घिसाई हुई टीवी में भी, ऐसा नहीं है कि चीज़ें आसान थी, मगर ये था कि मज़ा था उस काम में, बहुत मज़ा था। और लोग सब, हम लोग जैसे ही थे, सब पागल थे, सब यंग लड़के थे, और सबके दिमाग अलग अलग तरीके से चलते थे। किसी को म्यूज़िक बहुत अच्छा समझता था, किसी को एडिट बहुत अच्छा समझता था, मैं थोड़ा बहुत वॉइस करता था, लिखता था, मुझे एडिट नहीं समझ में आता था। तो ये सब हम लोग एक दूसरे के पूरक हो गए, और वो किया मैंने, वो करीब 1-1.5 साल किया मैंने।
1: यहाँ एक गाना सुनते हैं।
0: जी बिल्कुल।
2: दुण।

0: तो वो उसकी भी बड़ी मजेदार सी कहानी है। तो ये करते करते क्या हुआ कि पूरी टीम बाहर चली गई और एक नया चैनल आया। इस नए चैनल में अलग तरीके की प्रोग्रामिंग थी, क्योंकि मैं प्रोमोस करता था और मैं बहुत आलसी हो चुका था तब तक, तो मैं प्रोमोस बनाना बंद कर चुका था। मैं लिखता था सिर्फ, मैं प्रोमोस लिख देता था और जाके सिर्फ एडिट चेक कर लेता था जो मेरे दोस्त बना रहे होते थे उसका। तो इन्होंने मुझे बोला यहाँ एडिट कर, यहाँ भी आ जा प्रोमो करने के लिए। तो मैं वहाँ प्रोमो करने के लिए गया, वहाँ बातचीत चल रही थी। एक वो लोग एक थ्रिलर बना रहे थे, पीरियड थ्रिलर, दरिबा डायरीज। तो दरिबा डायरीज का ये हो रहा था कि आइडिया बहुत सॉलिड था लेकिन उसकी स्क्रिप्ट उनको वैसी नहीं मिल रही थी। तो वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि अरे कोई थ्रिलर लिखने वाला मिल जाए तो। तो मेरे कान खड़े हो गए, मैंने कहा मैं लिखता हूँ, मैं लिख के दूँ। तब तो मैंने लिखा नहीं था थ्रिलर कोई भी,
1: ऐसी बोल दिया।
0: हाँ मतलब क्या होगा, रिजेक्ट करेंगे, उससे ज्यादा क्या है, ऑडिशन देना है ना। तो उन्होंने कहा तू लिखेगा, तू तो बच्चों का शोज वगैरह करता है, तू तो बच्चों के चैनल से आ रहा है। तो मैंने कहा उससे आपको क्या मतलब है, मैं लिख के देता हूँ, नहीं पसंद आए तो मत यूज कीजिएगा। उन्होंने कहा ठीक है, मुझे शर्लक होम्स बहुत पसंद है, मुझे पीरियड सेटिंग बहुत पसंद है, दरिबा मुझे समझ में आता है। तो मैंने एपिसोड नंबर 16 लिखा उसका, जो उसका पायलट बना बाद में।
1: ओके
0: हाँ, उनको इतना पसंद आया कि उसमें कोई नोट्स नहीं था। अभी भी मैंने वो डॉक्यूमेंट मेरे पास रखा है जिसमें लिखा है कि दिस इज हाउ स्क्रीन प्ले शुड बी रिटन।
1: वाह वाह,
0: ये नोट के साथ मेरे पास वो वापस आया। वो एक्चुअली आना नहीं चाहिए था मेरे पास वापस, वो कोई बीच में एग्जीक्यूटिव था जिसने बिना पढ़े फॉरवर्ड कर दिया ये सोच के कि इसमें नोट्स होंगे। और मैंने कहा यार इसमें तारीफ आ गई है गलती से। तो अब उसके बाद उसके जो प्रोड्यूसर्स थे उनका ये था कि तू और लिख ले इसमें। तो मैंने 3 एपिसोड्स लिखे, 2 एपिसोड किसी और के लिखे हुए डॉक्टर किए, किसी एपिसोड में डायलॉग्स लिखे। तो उनको मेरा लिखा हुआ काम पसंद आने लग गया जो मैं शो के लिए कर रहा था। तो मुझसे पूछा गया कि तुम कुछ शो पिच करना चाहोगे क्या हमको। तो मेरे पास एक शो था जो मैं, वो काफ़ी बड़ा शो था, वो या तो एनिमेशन होता या कॉमिक्स होता, लेकिन इस पर्टिकुलर चैनल में बड़े शोज़ बन रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे पास 2 शोज़ हैं, मैं आता हूँ आपको पिच करता हूँ। तकदीर ऐसी थी कि मैंने जो पहला शो पिच किया, हम एंटर कर रहे थे स्टूडियो में, मीटिंग रूम में, 20 सेकंड में वो शो चैनल ने खरीद लिया मेरे से। 20 सेकंड मैं अंदर भी नहीं पहुंचा था, मैं बैठा भी नहीं था। उन्होंने कहा हम लोग ये कर रहे हैं, दूसरा सुना भी मत, हम यही करते हैं। तो ये मेरे लिए बड़ा अजीब सा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं तो अभी सोच के चल रहा था कि 3 महीने तो जदोजहद में गुजरने वाले हैं, ये सारा शॉर्टकट हो गया एकदम से।
1: बिल्कुल।
0: तो मुझसे पूछा गया कि एक्टर्स कौन रहेंगे इसमें। मैंने एक्टर्स के नाम दिए कि ये नसीर साहब कर सकते हैं। विलन के लिए मेरे दिमाग में हमेशा जावेद जाफरी का नाम था। तो

0: नसीर साहब कर सकते हैं। विलन के लिए मेरे दिमाग में हमेशा जावेद जाफरी का नाम था, तो वो जावेद भाई का मैंने नाम लिया कि तो उन्होंने बोला कि जावेद इज डूइंग अ शो विद अस, हमारे साथ एक शो कर रहे हैं जावेद भाई, लेकिन हमें लगता है कि इसको थोड़ा एडिट की ज़रूरत है, तू देखेगा क्या। तो इतना कॉन्फिडेंस उनको मेरे पे आ गया था, एक तो उनको ये पता था कि मैं रेडियो से आ रहा हूँ, मुझे सिनेमा समझ में आता है, मुझे पुराने फिल्म और पुराने गानों की समझ है, ये सब उनको पता था। तो मुझे उनका एक एपिसोड दिखाया गया, डिस्को डांसर का एपिसोड था।
1: बिल्कुल, वो सिनेमा की बातें कर रहे थे प्रॉपर, वही शो की बात हो रही है,
0: वही शो की बात हो रही है। तो डिस्को डांसर का एपिसोड था जो मैंने देखा, जो मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि मुझे जावेद भाई के दो शोज, एक शो उनका हुआ करता था फ्लैशबैक और एक काउंटडाउन शो हुआ करता था, ये दो मैं देख के बड़ा हुआ था। मैं ऐसा कुछ करना चाहता था जो मैं रेडियो में कर रहा था,
1: right.
0: अचानक मेरे सामने ऐसे थाली में सजा के एक शो आता है और बोलते हैं ये जावेद जाफरी कर रहे हैं, तुम क्या करना चाहोगे इसमें। तो फिर तो मैं लालची हूँ, मैं सब करना चाहता था, मैं लिखूंगा भी, मैं डायरेक्ट भी करूंगा, मैं एडिट पे भी बैठूंगा, और नसीब से वो चीज़ मेरे प्लेट में आके गिर गई। तो मैं जावेद भाई को मिला जाके, उनको लगा ये नया लड़का है, इसको क्या ही पता होगा। तो उन्होंने कुछ बहुत ऑब्स्क्योर फिल्मों के रेफरेंस के साथ में मेरे साथ डिस्कशन शुरू किया। तो उसमें एक फिल्म है जिसका नाम है फिल्म ही फिल्म।
1: बिल्कुल बिल्कुल, हाँ।
0: उन्होंने ऐसे बात शुरू की कि राज कपूर की एक फिल्म है जिसमें एक डॉग है जो राज कपूर से बात करता है। मैंने कहा वो राज कपूर की फिल्म नहीं है, वो एक्चुअली फिल्म ही फिल्म नाम की फिल्म है जिसमें मोन्टाजेस हैं अनमेड फिल्मों के फुटेज लेके। तो उन्होंने बोला तुमको पता है? तो मैंने मुझे पता है, मैंने देखी है फिल्म। ऐसे दो तीन बहुत भयानक अंदरूनी फिल्मों की उन्होंने बात की, वहां हमारा आइस ब्रेक हो गया, वहां उनको लगा कि
1: आता है इसको,
0: इसको कुछ तो पता है, अगर सब पता नहीं भी है तो। तो उन्होंने भी फिर टेस्ट दिया मुझे, धर्मवीर मनमोहन देसाई की फिल्म है, तो उनको धर्मवीर का एपिसोड करना था। उन्होंने कहा इसका तू स्क्रिप्ट लेके आ, फिर देखते हैं। तो मैंने धर्मवीर देखी कुछ 6-7 बार, मुझे बहुत मजा आया, पहले भी देखी हुई थी। और मनमोहन देसाई साहब के बारे में मुझे पता था, मुझे बहुत सारी उस फिल्म के बारे में ट्रिविया वगैरह पता थे। तो मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी, उसके साथ में थोड़ा बहुत जो एनिमेटेड जोक्स हैं वो जोक्स डाले उसमें, कि कैसे टिकर आएगा, टिकर में जब उस समय में बाघों की गिनती कम हो गई थी, 1411 बचे थे इंडिया, तो उसमें वो शेर को प्राण मार देते हैं। तो हमने ऐसे काउंट डाउन रखा था कि जितने शेर मरते हैं ना हम 1411 से कम करते हैं ग्राफिक्स में।
1: अच्छा,
0: तो ये सब पंचेज उसमें मैंने भरे, और ये पंचेज थोड़े नए जमाने के थे ना, क्योंकि हाँ टिकर विकर नहीं थे पहले, वो जब फ्लैशबैक वगैरह आ रहे थे तो टिकर में ये सब मस्ती नहीं हो सकती थी, एनिमेशन नहीं हो सकता था उनमें। तो मैंने उनको बताया ये ऐसे करेंगे, फिर ये होगा, फिर वो समुराई सोर्ड है तो हम उसका एक टेलीशॉपिंग नेटवर्क का एड बना देंगे कि वो समुराई नहीं बोलते ना प्राण साहब, समुराई कला बोलते हैं। तो मैंने कहा समुराई कला कैसे सीखें, रैपिड एक समुराई कोर्स का एक हम ये बनाएंगे एड। हाँ, तो ऐसे करके मैंने उनको 5-6 गैग्स बताएगी, ये गैग्स हम लोग हर ब्रेक के पहले करेंगे।
1: हाँ हाँ।
0: तो एक फेक एड आएगा, उसके बाद असली एड,
1: असली एड आएगा।
0: तो उनको आइडिया जम गया, वो आइडिया मेरे लिए लैंडमाइन साबित हुआ, क्योंकि वो आइडिया उनको इतना जम गया कि वो अब हर एपिसोड में हमें करना पड़ता था। तो किसी एपिसोड में मिलते हैं ब्रेक के बाद था ही नहीं हमारे शो में, 26 एपिसोड में, 26 एपिसोड, हर एपिसोड में 4 ब्रेक्स, तो 100 ऐसे एड्स
1: लिखने,
0: इन आउट, तो 200 एड्स हमने बनाए। तो वहां से उस शो की शुरुआत हुई, फिर वो शो मैंने लिखा भी, को डायरेक्ट भी किया, एडिट भी किया, उसके साथ ग्राफिक्स भी किए, उसमें एनिमेशन भी किया, VFX भी किया, मतलब उस शो में शायद ही सेट में झाड़ू भी लगाई है। तो उस शो में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें मेरा हाथ नहीं लगाओ। और वो करते करते एक मतलब जावेद भाई के लिए मन में एक बहुत यू नो रेस्पेक्ट तो है ही, लेकिन वो एक रेस्पेक्ट के साथ साथ ना प्यार भी बहुत बढ़ा, क्योंकि उनको बतौर इंसान जाने का मौका मिला। और मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि वो भी मुझे लगता है कि मुझसे उतना ही प्यार करते हैं, छोटे भाई के जैसा मुझे हमेशा वो ट्रीट करते हैं, मेरे एक कॉल पे वो मेरे लिए कहीं भी खड़े हो जाते हैं आके। तो वो जो एक रिश्ता बना मेरे ख्याल से उस शो से बना,
1: बिल्कुल
0: वो शो बनता रहा 1.5 साल तक। तो 1.5 साल तक मेरे ख्याल से मैं मेरे घर में कम रहा हूँ और उस सेट पे ज्यादा रहा हूँ। तो इस तरीके से ये शो बना, ये शो बनते बनते उस चैनल के साथ ये हुआ कि उनके बजट्स खत्म हो गए, तो जो मेरा शो उन्होंने खरीदा था वो तो बना नहीं।
1: ओहो,
0: मैंने उनसे वापस खरीदा, जो उन्होंने मुझे पैसे दिए थे मैंने उनको वापस किए और शो वापस खरीदा, क्योंकि मैं वो शो कहीं छोड़ना नहीं चाहता था। और मेरा ये भी मानना रहता है कि चीज़ों को लीगली

0: लॉफुली ठीक से क्लीन करके उनको क्लोज करना चाहिए, उनको लटकने नहीं देना चाहिए। क्योंकि मैं देखता हूँ हम जो राइटर्स हैं और जो क्रिएटर्स हैं वो अपनी क्रिएटिविटी में इतना उलझे होते हैं ना कि वो लीगैलिटीज को नहीं समझते हैं
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: और
1: वो
0: कानूनी दांव
1: लूज
0: से
1: एंड छूट जाते
0: वो
1: हैं जो
0: लूज
1: बाद
0: एंड्स
1: में
0: ऐसे
1: बहुत
0: ऐसे
1: भारी पड़
0: छूटते
1: जाते
0: हैं
1: हैं।
0: जो बाद में अपना मतलब आप दो लोगों के बीच ऐसी कड़वाहट है जिसका कोई सेंस बनता ही नहीं है। तो हमेशा ये अच्छा है कि आप जाएं और उस लूज एंड को बंद कर दें,
1: बिल्कुल
0: या तो आपके हाथ में हो या सामने वाले के हाथ में हो, मन में कड़वाहट ना रहे, रिश्ते बने रहें। तो मैंने वो चैनल के पास जाके उनसे वापस खरीदा, वो उनको पैसे वापस किए। जावेद भाई के साथ मैंने फिर दूसरा शो किया, तो दो शोज हमने किए। उसके बाद काफ़ी काम किया हमने साथ में। ये करते करते एनिमेशन तो चल ही रहा था, तो एनिमेशन में मैंने बहुत काम किया, बहुत इन द सेंस कि बहुत वो शोज किए जिन पे मुझे बहुत गर्व है। तो वो कुछ 3-4 साल का एक कालखंड है जिसमें मैं विविध भारती भी आता था वाणी कोर्स करने, और एक फैंटेसी शो था जिसपे मैं क्रिएटिव डायरेक्टर था, जावेद भाई का एक शो था और दो एनिमेटेड शोज थे। तो टाइम ही नहीं होता था, मैं घर पे ही नहीं होता था। और मतलब ये पर्सनल बात है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि जो क्रिएटिव लोग हैं कई बार पागल हो जाते हैं, क्योंकि जो कुछ चाहिए वो सब कुछ मिल रहा होता है, उस चक्कर में अपने स्वास्थ्य का वो ध्यान नहीं रखते हैं। तो मुझे इस बीच स्ट्रेस लेवल्स, नींद बराबर नहीं हो रही है, आराम बराबर से नहीं हो रहा है, लगातार भाग दौड़ है, खाने का कोई ठिकाना नहीं है, समय का कोई ठिकाना नहीं है। मुझे बहुत कम उम्र में डायबिटीज़ हुई इस वजह से, क्योंकि काम इतना था, चीज़ें इतनी हो रही थी, चारों दिशाओं में आप भाग रहे थे कि अपने लिए समय नहीं था। और मुझे लगता है कि क्रिएटिव लोगों को अपने लिए समय निकालना चाहिए, अपने स्वास्थ्य को थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य जो आपके साथ लंबे समय तक रहेगा। प्रोजेक्ट्स क्या हैं,
1: बिल्कुल
0: वो आते हैं और जाते हैं।
1: यस, सही बात है। बहुत देर से हम बात कर रहे हैं और गाने नहीं सुने। बातचीत को यहां पर रोकते हैं आलोक, और एक गाने की जगह बनाते हैं। चूंकि जावेद जाफरी का जिक्र चल रहा है, तो एक ही गाना है जो जावेद जाफरी की सबसे बड़ी पहचान है
0: उनका पहला गाना
1: मेरी जंग का।
0: मेरी जंग का, मेरे ख्याल से उससे पहले डांसिंग सिंगिंग विलन कोई आया ही नहीं था मेरी जंग के पहले।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो बोल बेबी बोल
1: वो सुनते हैं।
0: जी।
2: वेलकम फ्रेंड टू द शो दैट नेवर एंड्स। आई हैव टेकन द चांस टू मेक यू डांस। यू विल मूव योर फीट एंड ग्रूव द बीट। सो देन व्हिच बीट वुड यू लाइक? दोस्तों कौन सा डांस पसंद करेंगे आप? रॉम्बा?
3: नो।
2: सांबा?
3: नो।
2: Rumba?
3: No.
2: Samba?
3: No.
2: Tequila?
3: No.
2: Tango?
3: No.
2: Charleston?
3: No.
2: Polka?
3: No.

0: आलोक, ये तमाम चीजें चल
1: जी
0: रही थीं और जाहिर है कि उसके बाद काम आगे बढ़ा, तो आगे के कुछ महत्वपूर्ण कामों के बारे में बताइए।
1: शोले की 40वीं वर्षगांठ थी 2015 में। मुझे शोले के एनिमेटेड वर्जन पर काम करने मिला, जिसका मैं क्रिएटिव प्रोड्यूसर भी था और राइटर भी था। कुछ हिस्से मैंने डायरेक्ट भी किए थे। मेरे लिए ये बड़ा खुशी का सबब था। ये फिल्म मेरी सबसे पसंदीदा फिल्मों में से एक है। और जब इसका प्रमोशन शुरू हुआ इस एनिमेटेड फिल्म का, तो कई जगहों पे सलीम साहब का एक छोटा सा कोट है, फिर जावेद साहब का एक छोटा सा कोट है, उसके आसपास मेरा एक छोटा सा कोट है।
0: वाह
1: तो वो
0: वाह।
1: मेरे लिए बड़ा, उसको बोलते हैं किक, तो मेरे लिए बड़ी किक थी वो देखना। ये करते करते मैंने ग्राफिक इंडिया ज्वाइन किया, जहाँ मुझे सबसे पहला जो शो मिला वो था अमिताभ बच्चन साहब का पहला एनिमेटेड शो,
0: वाह वाह।
1: जो मैंने डेवलप भी किया, लिखा भी, डायरेक्ट भी किया, प्रोड्यूस भी किया। वो करते करते मुझे अमित जी के साथ काफ़ी समय बिताने का मौका मिला। मैंने करीब उनके साथ 3 से 4 महीने डबिंग किए, और जो चीज़ मुझे वहाँ से सीखने को मिली वो मैं अभी भी कोशिश करता हूँ कि मेरे साथ रहे, वो है समय का पाबंद होना।
0: जिसके लिए वो बहुत मशहूर है।
1: बहुत ज़्यादा, वो 6 बजे की रिकॉर्डिंग सुबह करते थे, 5:55 वो स्टूडियो पे होते थे, तो हम
0: गजब।
1: लोगों को भाग के समय पे पहुंचना पड़ता था। अगर उन्होंने 6 बोला है तो 5 मिनट पहले ही पहुंचेंगे, वो 6:01 पे कभी नहीं आए
0: बिल्कुल।
1: इतने महीनों में। दूसरी चीज़ है जो उनकी

0: नहीं, काम के प्रति लगन है। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग ये बात बार बार बोलते हैं, लेकिन मेरे लिए ये एक बिल्कुल अलग तरीके का अनुभव था कि मैं बच्चन साहब के सामने कुछ भी नहीं हूं, लेकिन अगर मैंने उनसे 7, 8, 9, 10 टेक भी मांगे हैं तो मुझे 10वां टेक तक मिला है। उन्होंने कभी सवाल नहीं किया कि क्यों मांग रहे हो। हाँ, ये बोला है कई बार कि मुझे एक बार बता दीजिए आपको कैसा चाहिए, तो मैं, आप मुझे बोल के बताइए, मैं एग्जैक्टली वैसा बोल के बता दूंगा। तीसरी चीज जो मैंने वहां सीखी वो ये थी कि जितने टेक्स फाइनल होते थे, अब तो डिजिटल है तो आप टेक्स को फाइनल मार्क कर लेते हैं, लेकिन बच्चन साहब एनालॉग स्क्रिप्ट के ऊपर में लगातार लिख रहे होते थे कौन सा टेक मैंने फाइनल बोला है, 6th टेक, 2nd टेक, 1st टेक। जब डबिंग खत्म हुई उन्होंने मुझे पूरे स्क्रिप्ट का ऐसा पुलंदा दिया, उन्होंने कहा कि इसमें सारे टेक्स लिखे हुए हैं। मैंने कहा सर हम मार्क कर रहे थे। बोले फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेना, गलती की गुंजाइश ना रहे। तो उतना डिटेल रखना। चौथी चीज जो मुझे बहुत पसंद आई वो ये थी, पहली बार मुंबई में मेरे से किसी ने देवनागरी में स्क्रिप्ट मांगी थी।
1: वाह वाह वाह वाह, वरना सब सब सब रोमन
0: सब रोमन में पढ़ते हैं, सब रोमन में पढ़ते हैं
1: जी।
0: बच्चन साहब ने देवनागरी में मांगी क्योंकि उन्होंने कहा कि जो मेरे संवाद हैं वो देवनागरी में होंगे तो मैं बेहतर तरीके से पढ़ के बेहतर तरीके से अदा कर सकता हूँ। वहाँ एक बहुत अच्छी चीज हमारे साथ ये हुई कि उन्होंने पहले 2 दिन जब डबिंग कर ली, उसके बाद वो बाहर निकलते निकलते उन्होंने मुझे बोला कि आप यहाँ के नहीं है। तो मैंने कहा हाँ मैं यहाँ का नहीं हूँ लेकिन बहुत सालों से यहीं हूँ। उन्होंने कहा नहीं आप यहाँ के नहीं है क्योंकि मुझे हिंदी में कोई भी वर्तनी में त्रुटि नहीं मिली है। तो वो एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था हमारी टीम के लिए, हमारे लिए। मेरी सिस्टर ने ये सारी देवनागरी में ये संवादों को देवनागरीकरण किया था रोमन से। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं अगर देखें तो, लेकिन ये इतनी छोटी चीजें हैं नहीं। तो ये सीखने की चीज थी। एक समय था जब मैं 11 बजे की मीटिंग के लिए घर से 11:30 बजे निकलता था। लेकिन एक बार अमित जी के साथ ये पूरा शो करने के बाद मुझे नहीं लगता मैं कभी भी समय पे नहीं पहुंचने वाला काम कर रहा हूँ। मैं आमतौर पे कोशिश करता हूँ या तो मैं समय पे पहुंच जाऊं या मैं कम से कम 1 से 1.5 घंटे पहले लोगों को बता दूंगी मैं समय पे नहीं पहुंच पाऊंगा। पहले बहुत बहुत केयरलेस था मैं। तो ये चीजें आप देखें तो यही चीजें हैं जो इन लोगों को इतना बड़ा बनाती हैं। और मैं जैसा मैं कह रहा हूँ कि ये सब क्लिशे है, सब हजार बार आपने ये चीजें सुनी होंगी, लेकिन मेरे लिए वो 1-on-1 पर्सनल चीज है जो उनसे सीखने की थी।
1: ऑफ कोर्स।
0: तो वो किया हमने, अस्त्रा फोर्स नाम था उस शो का, साइंस फिक्शन था और बहुत अच्छा उस पर हमें रिस्पॉन्स मिला। उसके बाद दूसरा शो जो हमने किया वो SS राजामौली के साथ किया। मतलब बाहुबली आई थी तब, पहली बाहुबली आई थी, वो दूसरी बना रहे थे। तो हमने उनको एक एनिमेटेड शो पिच किया कि दोनों बाहुबली के बीच में एक एनिमेटेड शो आ जाएगा तो लोगों के बीच में वो एक उत्साह बना रहेगा माहिष्मती के बारे में। तो वो भी एक सीखने वाली बात थी कि हम जब पहुंचे तो राजामौली साहब ने हमको 3 घंटे का समय दिया था और वो 11 बजे आने वाले थे। वो 11:30 बजे आए, उन्होंने बाथरूम स्लीपर पहनी हुई थी, एक हल्की सी टी शर्ट पहनी हुई थी जो अगर आप देखें तो नितांत साधारण कपड़ों में स्लीपर पहन के वो

0: वो हुआ क्या कि मेरे डायरेक्ट करते करते में वो सीरीज जो है पहले 6 एपिसोड की थी, फिर उन्होंने उसको 12 बना दिया, फिर उसको 24 कर दिया। अब 24 एपिसोड मैं लिखूं भी और डायरेक्ट करूं वो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। तो पहले 6 एपिसोड करके मैंने वो सीरीज लिखी और धीरे धीरे करके मैं लाइव एक्शन की तरफ मुड़ने लगा।
1: इस सीरीज का क्या नाम था?
0: इस सीरीज का नाम है बब्बर का टब्बर। नाम क्योंकि मैंने नहीं दिया है तो आप मुझे जज ना करें।
1: ठीक है। इन दिनों क्या चल रहा है?
0: इन दिनों एक शो है जो मैं लिख रहा हूँ, लिमिटेड शो है, 5 एपिसोड का वो लिख रहा हूँ। एक फिल्म लिखी है जो एक बड़े स्टूडियो ने ले ली है। एक फिल्म मैं खुद डायरेक्ट करना चाहता हूँ, तो मेरे ख्याल से 1 महीने के बाद मैं उसको लिखना शुरू करूंगा, मगर उसकी कहानी मेरे पास है तो मुझे मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा समय मुझे उसको लिखने में लगेगा। एक कॉमिक्स अभी अभी ख़त्म किए करके जो अभी मुंबई में लॉन्च हुई थी, वो एक फिल्म पर बेस्ड कॉमिक है, वन नाम की एक फिल्म आ रही है, तो उसका एक स्पिन ऑफ कॉमिक है वो, तो वो काफ़ी बढ़िया लॉन्च हुआ अभी पिछले हफ्ते। मैं चाहता हूँ इस साल मैं 2 किताबें और करूँ।
1: अच्छा।
0: हाँ, एक मेरी कॉमिक है जो किसी भी समय इस साल आ जाएगी, वो बन के रेडी है। हाँ, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि शायद जुलाई अगस्त तक आ जाएगी वो किताब। इसके अलावा मुझे पता नहीं, कुछ और छूट रहा हो तो।
1: यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं।
0: मुकद्दर का सिकंदर,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: टाइटल ट्रैक कल्याण जी आनंद जी इंदिवर।
1: क्या बात है, क्या बात है, ये गाना सुनते हैं।

0: आलू, क्या आपको लगता है कि कॉमिक्स का दौर अब बहुत सुनहरा दौर बीत चुका है?
1: जो मेरे अंदर का कॉमिक्स प्रेमी है वो इसको कभी नहीं मानेगा। लेकिन कॉमिक्स या किसी भी मीडियम का दौर मुझे ऐसा नहीं लगता कि बीतता है। ये एक साइकिल है, चक्र है, तो ये खत्म होता है और फिर आता है। तो जैसे भारत में जो फैंस थे उन्होंने अपने या तो पब्लिकेशन शुरू किए हैं या किताबें बनाने शुरू की हैं, हम भी उनमें से एक हैं। हमने भी अपनी एक कॉमिक बुक कंपनी शुरू की है, तो उसमें आइडिया ये था कि हम वो किताबें करेंगे जो हम पढ़ना चाहते हैं, और हमें पढ़ने के लिए किताबें नहीं मिल रही हैं फिलहाल, तो वो कर रहे हैं। हम बच्चों के लिए किताबें कर रहे हैं और बहुत अच्छा रुझान है। और एक दूसरी चीज़ जो कॉमिक्स के लिए संजीवनी बूटी साबित हो सकती है वो है कॉमिक्स का अडेप्टेशन शोज़ में, फिल्म्स में, एनिमेशन शोज़ में। और मुझे लगता है कि वो दौर हमारे यहाँ करीब करीब आ चुका है। अगर अमेरिका भी देखें तो मार्वल या डीसी को अपनी पहली फिल्म बनाने के पहले, सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है, 77 या 78 में, तो करीब 40 साल लगे है ना। स्पाइडरमैन 1963 या 62 का है, 63, और पहली स्पाइडरमैन 2002 में आई है। तो इतना समय तो लगता है, 40 साल का समय तो लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा कॉमिक्स उद्योग है वो अपने 40वें वसंत में प्रवेश कर चुका है करीब करीब। तो अब दो चीज़ें हैं, एक तो जो अब नए फिल्म मेकर्स हैं या जो नए क्रिएटर्स हैं, ये वो लोग हैं जो ये कॉमिक्स पढ़ के आए हैं।
0: बिल्कुल
1: वो फैंस हैं पहले, क्रिएटर्स बाद में। बहुत लोगों का ऐसा है कि उनका सपना है कि एक नागराज पे कॉमिक बने या डोगा पे कॉमिक बने,
0: बनते
1: चाचा
0: बनते रह
1: पे
0: जाती
1: शोगर।
0: है,
1: हाँ,
0: मतलब कई बार
1: डोगा
0: अनाउंस
1: डोगा
0: होता
1: डोगा की तो मैंने भी लिखी है फिल्म,
0: है।
1: एक ड्राफ्ट तो मैंने भी लिखा है।
0: हाँ,
1: तो वो बनी नहीं, लेकिन चाचा चौधरी पे शो बन गया है। लेकिन चाचा चौधरी पे मुझे लगता है कि फिल्म बन सकती है। चाचा चौधरी और राका बहुत अच्छे किरदार हैं जिन पे कुछ बन सकता है। तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिन पे मुझे लगता है कि चीज़ें आज नहीं तो कल बननी शुरू हो जाएंगी। मेरी जनरेशन तो ये फिल्में देखेगी।
0: बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया।
1: तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि दौर चला गया है। मुझे ये लगता है कि इस मीडियम को थोड़ा सा इवॉल्व होने की ज़रूरत है, जो इवॉल्व वो हो रहा है। बस ये कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनने का
0: दौर
1: जो
0: है,
1: दौर है।
0: बिल्कुल। तो हम उम्मीद करें कि ये चीजें जल्दी सामने आएंगी। आलोक, बहुत अच्छा लगा आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और हमसे इतनी सारी बातें की।
1: शुक्रिया यूनुस भाई, मैं जैसा कह रहा हूँ कि ये मेरे लिए एक अलग तरीके का मोमेंट हो गया है, क्योंकि मैं स्कूल में था तब से मैं आपको सुनता आ रहा हूँ, आपसे मिलना भी होता रहा है। मैं यहाँ
0: बिल्कुल।
1: आके मैंने वाणी कोर्स भी किया है। तो मेरे लिए घर वापसी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: हाँ, और क्या कहूँ मैं,
0: बहुत बहुत
1: शुक्रिया
0: शुक्रिया, फिर मिलते हैं।
1: जी।
2: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे लेखक, निर्देशक और कॉमिक क्रिएटर आलोक शर्मा से यूनुस

0: खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम का संपादन किया मनीषा सिंह ने और प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
1: आज के मेहमान।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन संघर्ष अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जीतवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहां से हुजूर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

आइए सुने छाया गीत। छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। इस दुनिया में अगर शब्द ना होते तो हम कैसे करते अपनी मोहब्बत का इजहार। शायद तब आंखें खत लिखती, मुस्कानें दस्तखत करती और खामोशियां हर अनकही बात का अर्थ बन जाती। शायद किसी का ठहर जाना, किसी के लिए किसी का लौट लौट कर देखना ही प्रेम का सबसे सच्चा वादा होता है।

मोहब्बत शब्दों की मोहताज नहीं होती, वो तो दिल की भाषा है जिसे महसूस किया जाता है, कहा नहीं जाता। शब्द तो बस उसे आवाज देते हैं, वरना प्रेम तो हर धड़कन में चुपचाप अपना नाम लिखता रहता है। प्रेम के सफे पर कभी इंतजार की घड़ी होती है, कभी बेकरारी, कभी मुस्कान के मन के। गजब है मोहब्बत की दास्तां।

कुछ संबंध ऐसे होते हैं जिन्हें किसी का नाम या परिभाषा की आवश्यकता नहीं होती। वे चुपचाप मन की देहरी पर आकर ठहर जाते हैं। रोज की सहज मुलाकात, मुस्कान में घुली कुछ मधुर बातें और मौन में धड़कते अनकहे एहसास धीरे धीरे मन के आंगन में एक ऐसा अपनापन रच देते हैं जो किसी रिश्ते के नाम से नहीं बल्कि दिल की अनुभूति से पहचाना जाता है। तब लगता है कुछ लोग जीवन में केवल मिलने नहीं आते, वे महज एक एहसास बनकर आते हैं।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। वक्त की सीढ़ी पर कतरा कतरा लम्हे गुजर रहे हैं, इंतजार की बोझिल घड़ियां ठिठक गई हैं, दिल ख्यालों से बहलने को राजी नहीं, सारे गम भुलाने की कोशिश में दिल गुनगुना रहा है तन्हाई और इंतजार का नगमा। रात के सितार पर उदासी और इंतजार की सुर लहरियां बज रही हैं एक साथ।

0: की ना जाने तुम कब आओगे।
1: उस रोज गुफ्तगू अधूरी रह गई थी, उस रोज से इंतजार का चिराग जल रहा है। अधूरा मिलन, अधूरी चाहत, अधूरा ही पूरे होने की आस जगाता है। इंतजार की आरजू कभी खत्म नहीं होती। उनकी आवाज सुनकर सुबह होती है, शाम उन्हीं की उम्मीद से रोशन होती है, धूप उनकी मुस्कुराहट से खिलती है, प्यार का रंग निखरता है उनके नाम से।

पलकों पर ठहरा है समंदर, बूंदे बहुत ढेर सारी, जज्बात की लहरों से दिल बेचैन है, जगमगाते सितारे थक कर सो गए हैं, आसमान का रंग नीले से सिलेटी हो चला है, धरती सन्नाटे की चादर ओढ़े किसी आहट का इंतजार कर रही है, वो अपने गम के शामियाने पर मोहब्बत के फूल काट रही है और गा रही है इंतजार का ये नगमा।

तुम्हें ने भरी जिंदगी में रोशनी, तुम्हें ने सींचा प्रेम के जल से मन की क्यारी को। यही वो मौसम था जब गुलाबी मन पर तुमने पीला रंग छिड़क दिया था, और फिर सरसों के पीले फूल इतराते हुए मुस्कुरा उठे थे। बाग में बैठा मैना का जोड़ा अपनी बोली में कुछ बोला था, और दो चेहरों के गाल गुलाबी हो गए थे।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
1: और मैं हूं अजीत। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। सुनते हैं एक सुंदर सुविचार जिसे हमें भेजा है प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं, इसलिए सुख में विनम्र रहें और दुख में धैर्य रखें, क्योंकि समय हमेशा बदलता रहता है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर प्रेरणादायी संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो श्रोताओं, पहला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अब्बान अब्बासी का।
2: साथ ही साथ हमें संदेश प्राप्त हुआ है भट्टीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। उन्होंने लिखा है,
1: नमस्कार, उमंग कार्यक्रम में ये भी जानिए श्रृंखला में आप जिस विषय की जानकारी को समाहित करते हैं उसका पूरा इतिहास अच्छे से सरल शब्दों में समझाकर बताते हैं, जिसे बच्चों को भी समझ में आ सके। 13 से 17 जुलाई वाले सप्ताह में आपने पुस्तकों के उद्भव और विकास की कहानी को व्यापक जानकारी देकर बताया। इसी सप्ताह आपने मानसून, अरावली की कहानी और हिमालय की उत्पत्ति पर संग्रहणीय भौगोलिक जानकारी दी। पूरी उमंग टीम को हमारी

0: ओर से हार्दिक धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत आभार संदेश भेजने के लिए। संघ संकारा सोमनी जिला राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंती देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू और रुद्रांश प्रताप साहू।
0: रायगढ़ छत्तीसगढ़ से गेंदलाल श्रीवास संतोष और श्रीवास कृष्ण कुमार यादव और बल्लू निषाद।
1: ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी।
0: आप सबको हमारा बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं। एक बार फिर से निवेदन करते हैं कि संदेश भेजते रहिए और जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से।
1: जी, ये भी जानिए श्रृंखला की इस कड़ी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम या भारत की आजादी की लड़ाई में शामिल हुए कुछ ऐसे लोगों की,
0: जिन्हें महात्मा गांधी और अन्य प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों की तरह नाम और प्रसिद्धि तो नहीं मिली, लेकिन उनका योगदान भारत को स्वतंत्र कराने में किसी से कम न था।
1: उन गुमनाम और कम चर्चित लोगों में से आज हम जिनकी चर्चा करेंगे उनका नाम है पिंगली वेंकैया। बहुत कम हैं जो इस नाम को जानते हैं। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि वो पिंगली वेंकैया ही थे जिन्होंने हमारे प्यारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को डिजाइन किया था।
0: श्रोताओं, उनका जन्म 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में हुआ था। वे स्वतंत्रता सेनानी, कृषि वैज्ञानिक, भाषा विद्वान और भू विज्ञानी थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ाई के बाद उन्होंने कई भाषाओं का अध्ययन किया और महात्मा गांधी के संपर्क में आए।
1: वे ब्रिटिश भारतीय सेना में थे और उन्हें बहुत बुरा लगता था जब ब्रिटेन के झंडे को एक भारतीय सैनिक की हैसियत से उन्हें सलामी देनी होती थी। उन्हीं दिनों में उनके मन में एक तीव्र इच्छा जागृत हो गई कि भारत का भी अपना राष्ट्रीय ध्वज हो। समय बीता, वे गांधी जी के संपर्क में आए और स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हो गए।
0: जब राष्ट्रीय ध्वज बनाने की बात आई तो इसके लिए पिंगली वेंकैया जी को ही चुना गया। लगभग 5 वर्षों तक उन्होंने दुनिया भर के झंडों का गहरा अध्ययन किया और करीब 30 डिजाइन संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किए। उनमें से आज का हमारा प्यारा तिरंगा चुना गया। श्रोताओं, वेंकैया जी का निधन 4 जुलाई 1963 को हुआ। उन्हें हमारा शत शत नमन।
1: श्रोताओं, तिरंगा हमारी जान है, आन है और शान है
0: जी।
1: लेकिन बहुत जरूरी है ये जानना कि हम इसका सम्मान कैसे करें। आइए कुछ प्रमुख नियमों को जानते हैं।
0: श्रोताओं, पहली बात, राष्ट्र ध्वज हमेशा सम्मान पूर्वक फहराया जाना चाहिए। कभी भी इसे जमीन, पानी या फर्श को छूने नहीं देना चाहिए।
1: कभी भी फटा, गंदा या क्षतिग्रस्त तिरंगा नहीं फहराना चाहिए। ध्वज का उपयोग किसी अन्य प्रकार से कभी नहीं होना चाहिए, जैसे मेजपोश, पर्दे, कुशन या सजावट की वस्तु के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।
0: श्रोताओं, तिरंगे पर कुछ भी लिखना, चित्र बनाना या इसके वास्तविक रूप से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए
1: जी।
0: और हाँ, यह बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि किसी अन्य ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा या अधिक सम्मानजनक स्थान पर नहीं लगाया जा सकता।
1: जी हाँ श्रोताओं, तिरंगा हमें केवल अधिकारों की याद नहीं दिलाता बल्कि हमारे कर्तव्यों की भी याद दिलाता है। जब भी हम तिरंगे को देखें तो अवश्य उन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करें जिनकी कुर्बानियों से हमें आज़ादी मिली।
0: तो आइए श्रोताओं, हम सभी संकल्प लें कि हम अपने राष्ट्र ध्वज का सदैव सम्मान करेंगे, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे और एक जिम्मेदार नागरिक बनकर भारत को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे
1: जी। और अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
0: तो श्रोताओं, आज का प्रश्न है, राष्ट्र ध्वज के चयन के लिए श्री पिंगली वेंकैया जी ने झंडों के कुल कितने डिजाइन प्रस्तुत किए थे। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: राष्ट्र ध्वज के चयन के लिए श्री पिंगली वेंकैया जी ने झंडों के कुल कितने डिजाइन तैयार किए थे।
0: श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमें हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो आइए अब करते हैं रुख आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर और सुनते हैं कार्यक्रम सुभाष चंद्र बोस।
1: इस कार्यक्रम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके उल्लेखनीय योगदान के बारे में बताया गया है। विशेष रूप से उनके द्वारा स्थापित आजाद हिंद फौज की चर्चा की गई है।
2: तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बता सकते हो ये बात किसने कही थी? भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतवासियों से खून की मांग करने वाले इस देशभक्त का नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने देश को स्वतंत्र

0: स्वतंत्र कराने के लिए आजाद हिंद फौज का गठन किया और ब्रिटिश साम्राज्यवाद से जमकर टक्कर ली। देश के लिए जान न्यौछावर करने वाले इस वीर का जन्म 23 जनवरी सन 1897 में उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता राय बहादुर जानकीनाथ बोस कटक के एक प्रतिष्ठित वकील थे। सुभाष की प्रारंभिक शिक्षा कटक में हुई और कॉलेज की पढ़ाई कलकत्ता में। जब वे प्रेसिडेंसी कॉलेज में बीए के छात्र थे, तभी एक दिन
1: अरे दिलीप।
2: हाँ सुभाष।
1: अरे उधर कहाँ जा रहे हो भाई, कक्षा में नहीं चलना क्या? वो प्रोफेसर ओटन का पीरियड है ना?
2: हाँ है तो सुभाष, लेकिन कक्षा में मैं नहीं जाऊंगा। प्रोफेसर ओटन जिस तरह हम भारतीयों को गाली देते रहते हैं, मुझे उससे सख्त नफरत है।
1: अरे तो तुम क्या समझते हो, मुझे गालियां खाने का शौक है, मगर इस तरह कक्षा में ना जाने से क्या होगा भाई?
2: कक्षा में नहीं जाएंगे तो अंग्रेज के मुंह से अपने देश के बारे में अपमानजनक बातें तो नहीं सुनेंगे ना?
1: अरे इस तरह कहां कहां से बचोगे? प्रोफेसर ओटन कोई अकेला अभिमानी अंग्रेज तो है नहीं इस देश में। स्कूल, कॉलेज, घर, दफ्तर, हाट बाजार, सभी जगह तो ये लोग हमारे लाखों करोड़ों देशवासियों को लांछित और अपमानित करते रहते हैं।
2: तो फिर?
1: और हमारा दोष ये है कि हम विरोध करने की बजाय पीठ फेर कर चले जाते हैं। जिस दिन हमने सामने खड़े होकर इनका विरोध करना शुरू कर दिया ना, उसी दिन से इनका गाली देना भी बंद हो जाएगा।
2: कहना आसान है सुभाष, इन गोरों के आगे विरोध करने के लिए खड़ा कौन होगा?
1: हमारे तुम्हारे जैसे लोग ही खड़े होंगे बंधु, जिनका ये लोग सत्ता के नशे में चूर होकर दिन रात अपमान करते रहते हैं।
2: सुभाष, प्रोफेसर ओटन आ रहे हैं।
3: Hey, you idiots! क्लास का टाइम में इधर खड़ा होकर क्या करता तुम?
1: आप ही के बारे में बात कर रहे थे प्रोफेसर ओटन।
3: Is that right? You black monkey?
2: जी सर, वो ऐसा था जी कि सर।
3: बात जी बोलता क्यों नहीं, क्या बात करता था?
1: हम ये कह रहे थे कि आप टीचर हैं, आपके मुंह से बात बेबात गाली शोभा नहीं देती।
3: You bloody rascal! You are telling me what to do? तुम्हारा यह हिम्मत?
1: हिम्मत की बात ना कीजिए प्रोफेसर, हिम्मत तो इससे भी ज्यादा है।
3: तो क्या करेगा? क्या करेगा तुम? मारेगा हमको? You scoundrel! You bloody swine! बोलो क्या करेगा तुम? हम तुमको गाली देगा, तुम्हारा बाप को गाली देगा।
1: बस प्रोफेसर बस, इससे ज्यादा एक शब्द भी नहीं सुनूंगा मैं।
3: ठीक है, हम तुमको देख लेगा। क्या नाम है तुम्हारा?
1: मेरा नाम सुभाष चंद्र बोस है मिस्टर ओटन, आइंदा याद रखिएगा।
0: अन्याय और अत्याचार के खिलाफ ये सुभाष की पहली जंग थी। परिणाम ये निकला कि उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया, लेकिन सुभाष को कोई अफसोस नहीं हुआ। बाद में दूसरे कॉलेज से उन्होंने बीए पास किया। फिर अपने पिता के आग्रह पर उन्होंने लंदन जाकर इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा भी पास की, लेकिन वे अच्छी तरह जानते थे कि आईसीएस के बंधन में बंधकर देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराना असंभव है। इसलिए उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और स्वदेश लौट आए। बंबई आते ही वे महात्मा गांधी से मिले। गांधी जी के शांतिपूर्ण सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम उन्हें पसंद नहीं आए। गांधी जी ने उनकी परेशानी को समझा और उन्हें सलाह दी कि वे कलकत्ता जाकर देशबंधु चितरंजन दास से मिलें। देशबंधु के विचार सुभाष के जोशीले स्वभाव के अनुकूल थे। बस फिर क्या था, देशबंधु के नेतृत्व में सुभाष ने बंगाल के युवकों को संगठित करना शुरू किया। उन्हीं दिनों इंग्लैंड के युवराज भारत की यात्रा पर आए। कांग्रेस ने प्रस्ताव किया कि युवराज के दौरे का पूर्ण बहिष्कार हो और हड़ताल की जाए। बंगाल में यह हड़ताल अभूतपूर्व रूप से सफल हुई। सभी बड़े नेता बंदी बनाए गए।
4: क्या कहते हो, सभी नेता पकड़े गए?
2: अरे ये महात्मा जी का आंदोलन है भाई, यहाँ नेता लोग जनता के आगे खड़े होते हैं, पहली लाठी गोली खुद खाते हैं,
5: पहले जेल खुद जाते हैं।

0: क्या देशबंधु भी पकड़े गए?
1: हाँ, सबसे पहले तो उन्हीं को पकड़ा।
0: और अपने सुभाष बाबू?
1: वो भी आते ही होंगे। जब पुलिस हम लोगों को गाड़ी में भर रही थी, तब भी वे बचे हुए लोगों को आगे बढ़ने को प्रेरित कर रहे थे। लो, ये एक और दल आ गया, और शायद सुभाष बाबू भी साथ ही है। क्यों सुभाष दा,
2: कितनी सजा हुई?
3: नालायक कहीं के, सजा भी ठीक से नहीं दे सकते, उसमें भी कंजूसी कर गए।
0: क्या हुआ सुभाष बाबू?
3: अरे होगा क्या, इतनी बड़ी हड़ताल हुई और सजा दे रहे हैं सिर्फ 6 महीने की। मैं देशभक्त हूँ कि कोई मुर्गी चोर?
4: लेकिन इसके बाद से जेल यात्राओं का ऐसा दौर शुरू हुआ कि 1921 से 1940 के बीच सुभाष लगभग 16 बार जेल गए। जब जेल में रहते तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता, लेकिन जैसे ही जेल से छूटते फिर आंदोलन में जुट जाते। बार बार जेल जाने से उनका स्वास्थ्य इतना गिर गया कि उन्हें टीबी हो गई। जब भोवाली सेनेटोरियम में भी स्वास्थ्य नहीं सुधरा तो उन्हें स्विट्जरलैंड जाने की अनुमति दी गई। वहां पहुंचकर वे यूरोपीय देशों में भारत के प्रति सहानुभूति का वातावरण बनाने में लग गए। 1938 में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। 1939 में वे फिर अध्यक्ष चुने गए, लेकिन गांधी जी से मतभेद होने के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस के भीतर ही एक प्रगतिवादी दल फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तभी दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। एक बार फिर सुभाष और गांधी जी का मतभेद सामने आया। गांधी जी अंग्रेजों पर आई विपत्ति का फायदा नहीं उठाना चाहते थे, जबकि सुभाष का कहना था कि इस समय अंग्रेज दूसरे मोर्चों पर फंसे हुए हैं, उनकी पकड़ हिंदुस्तान पर से ढीली हो रही है, यही सही वक्त है जब हमें पूर्ण स्वराज्य प्राप्त कर लेना चाहिए। सुभाष के ऐसे वक्तव्यों से घबराकर ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1940 में उन्हें फिर बंदी बना लिया। सुभाष ने आमरण अनशन की घोषणा कर दी। इस पर सरकार ने उन्हें जेल से तो छोड़ दिया, लेकिन उनके घर पर सशस्त्र पुलिस का कड़ा पहरा बैठा दिया।
5: कौन? शिशिर?
6: हाँ सुभाष काका, मैं हूँ। दरवाजा खोलिए।
5: आओ अंदर आ जाओ। क्या खबर है?
6: सब तैयारी हो गई है। पीछे वाली गली में गाड़ी खड़ी है। कलकत्ता में आपका दिखाई देना ठीक नहीं है काका। ये सोचकर हम लोगों ने योजना बनाई है कि आप बिहार में गोमो से ट्रेन में बैठेंगे। मैं स्वयं गाड़ी चलाकर ले चलूंगा।
5: ठीक है चलो, लेकिन मेरे ये कपड़े?
6: उसका भी प्रबंध हो गया है। आपके लिए तंग पैजामा, शेरवानी और तुर्की टोपी आ गई है। आप रास्ते में कहीं बदल लीजिएगा।
5: ठीक है।
6: उस वेशभूषा में आपकी ये दाढ़ी बिल्कुल ठीक लगेगी। किसी को शक नहीं होगा कि आप सचमुच मौलवी ज़ियाउद्दीन नहीं है।
5: तो फिर ठीक है, आओ।

0: 16 जनवरी की रात वे पुलिस वालों की आंखों में धूल झोंककर गायब हो गए। इसमें उनके भतीजे शिशिर बोस ने उनकी मदद की।
1: दरवाजा खोलिए साहब, मैं रेलवे कर्मचारी हूँ। इन मौलवी साहब का रिजर्वेशन है यहाँ से।
2: खोलता हूँ भाई, खोलता हूँ, अभी खोल देता हूँ। आदाब अर्ज़ मौलवी साहब।
3: आदाब, ये सामान यहाँ रख दीजिए।
2: लाओ लाओ।
3: शुक्रिया शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब गार्ड साहब।
4: नहीं साहब, इसमें शुक्रिया की क्या बात है।
3: अच्छा, खुदा हाफिज।
4: खुदा हाफिज साहब।
5: लो भाई,

0: यहां तक तो आसानी से आ गए, अब कल न जाने क्या हो।
1: ये अखबार कहां गया?
0: हाँ ये रहा, कल दिन भर पढ़ने के साथ साथ चेहरा छिपाने के भी काम आएगा।
2: अब थोड़ी देर आराम कर लो।
3: ट्रेन से पेशावर पहुंचने पर सुभाष को कुछ विश्वस्त साथी मिले जिन्होंने सीमा पार करने में उनकी मदद की। इस तरह कभी पैदल, कभी खच्चरों पर, तो कभी ट्रक वालों से मुफ्त सवारी मांगते हुए सुभाष काबुल पहुंचे। काबुल में उन्होंने कई विदेशी दूतावासों से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की और आखिर इटालियन दूतावास के जरिए यूरोप जा पहुंचे। उन्होंने जर्मनी में हिटलर से भेंट की। सुभाष ने बर्लिन में रहकर वहां रहने वाले भारतीयों को इकट्ठा करके फ्री इंडिया लीग की स्थापना की। जर्मनी की सहायता से उन्होंने आजाद हिंद रेडियो का प्रसारण आरंभ किया। स्वयं सुभाष भी इस पर अपने विचार व्यक्त करते थे। उधर जापान में भी एक पुराने भारतीय क्रांतिकारी श्री रास बिहारी बोस भारत को स्वतंत्र कराने के प्रयत्नों में लगे हुए थे। इन लोगों की योजना थी कि युद्ध में ब्रिटेन की ओर से लड़ रहे जिन भारतीय सैनिकों को जापान और जर्मनी में बंदी बना लिया है, उनकी एक सशस्त्र सेना संगठित की जाए। इस सेना का नेतृत्व करने के लिए सुभाष को सिंगापुर बुलाया गया। 5 जुलाई 1943 को उन्होंने सुप्रीम कमांडर की हैसियत से आजाद हिंद फौज के विधिवत गठन की घोषणा की। यहीं उन्होंने एक नया नारा बुलंद किया,
4: जय हिंद,
5: जय हिंद,
4: जय

0: यद्यपि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के नेता यही मानते थे कि एक साम्राज्यवादी शक्ति को हटाने के लिए दूसरी साम्राज्यवादी शक्ति का सहारा लेना उचित नहीं है, मगर नेताजी का कहना था कि शत्रु का शत्रु अपना मित्र होता है और उससे मदद लेने में कोई हर्ज नहीं है। उधर युद्ध की भीषणता बढ़ती जा रही थी। आजाद हिंद फौज की टुकड़ियों ने भी कई मोर्चों पर युद्ध किया। खराब मौसम, कम रसद और बीमारियों के बावजूद नेताजी के सैनिकों के हौसले बुलंद थे। बर्मा की ओर बढ़ती हुई आजाद हिंद फौज कोहिमा तक पहुंच गई। भारत भूमि पर आजाद हिंद का झंडा फहराया गया, मगर इस बीच बहुत से सैनिक हताहत हुए। आजाद हिंद फौज को और अधिक बलिदानी वीरों की आवश्यकता थी। 22 सितंबर 1944 को रंगून का जुबली हॉल खचाखच भरा हुआ था। शहीद जतीन दास का स्मृति समारोह था। जय हिंद और दिल्ली चलो के नारे गूंज रहे थे।
1: मेरे बहादुर साथियों, तुम लोगों ने आजादी के लिए बहुत त्याग किया है, लेकिन अभी प्राणों की आहुति देना बाकी है। मैं भारत की स्वतंत्रता को स्पष्ट देख रहा हूं, वो अब ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन अभी उसे खून की जरूरत है। उसे ऐसे नौजवानों की जरूरत है जो अपने हाथों अपना सर काटकर उसके चरणों पर न्योछावर कर सके, जो उसके लिए अपना खून बहा सके। बोलो साथियों, क्या तुम लोग तैयार हो?
2: हम तैयार हैं।
1: तो फिर ठीक है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा।
3: नेताजी, मेरे खून की एक एक बूंद ले लीजिए।
1: नहीं नहीं नहीं, इस तरह बातें बनाने से कुछ नहीं होता। मुझे इस प्रतिज्ञा पत्र पर तुम्हारे हस्ताक्षर चाहिए।
4: मुझे दीजिए कागज, पहले मैं हस्ताक्षर करूंगी।

0: ठहरिए ठहरिए, ये आजादी का परवाना है, इस पर सादी स्याही से हस्ताक्षर नहीं किए जाते, इस पर खून से हस्ताक्षर होते हैं। जिसकी नसों में सच्चा भारतीय खून बहता हो, जिसे अपने प्राणों का मोह ना हो, वो आगे बढ़े और इस पर हस्ताक्षर करे।
1: मैं करूंगी हस्ताक्षर, कागज मुझे दीजिए।
2: नहीं, नहीं, कागज मुझे।

और उस दिन नेताजी के आह्वान पर सैकड़ों हजारों लोगों ने आगे बढ़कर आजादी के उस परवाने पर अपने खून से हस्ताक्षर किए। पता नहीं उनमें से कितने आजादी की सुबह देखने को जिंदा रहे और कितने आजादी की राह में शहीद हो गए।

0: खुद नेताजी का विमान 18 अगस्त 1945 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 15 अगस्त 1947 की सुबह देखने के लिए नेताजी जीवित नहीं रहे, मगर जैसा उन्होंने खुद कहा था,
1: ये बात महत्वपूर्ण नहीं है कि हम में से कौन भारत को आजाद देखने के लिए जीवित रहेगा। यही काफी है कि भारत आजाद होगा और उसे आजाद करने के लिए हम अपना सर्वस्व अर्पित कर देंगे।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम सुभाष चंद्र बोस, और आइए अब सुनते हैं एक विशेष गीत जिसने भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान असंख्य युवाओं को प्रेरणा दी और उन्हें क्रांति पथ पर अग्रसर होने के लिए आह्वान किया। शीर्षक है जवानों उठो।
3: इस कार्यक्रम के द्वारा देश के जवानों को संदेश दिया गया कि वे देश के लिए पूरे समर्पण और दृढ़ निश्चय के साथ काम करें और इसे विकास की दिशा में आगे ले जाएं।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना ये खूबसूरत गीत जवानों उठो। और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुम लता, जगबंधु
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: ଶୁଣିଲେ ପ୍ରାୟୋଜକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ NCERT ଆକାଶବାଣୀ ବାରିପଦା। ଏଥର ଶୁଣନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଭକ୍ତି ଗୀତର ପ୍ରଥମ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସୁଭାଷ ଦାସ, ଗୀତ ରଚନା ଭାରତୀ କୃଷ୍ଣ।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: नाम होचे गौतम साब, ग्राम हतापुर, पंचायत रणशाली, ब्लॉक पुरस्तमपुर, जिला गंजा। मु प्रधानमंत्री फसल बीमा करिथिबा जोगु आर्थिक 85,000 टका सहायता पाइली। प्रत्येक चाषी भाई भौणी को अनुरोध, समस्ते प्रधानमंत्री फसल बीमा करन।
2: फसल बीमा पाई शीघ्र पंजीकरण करंतु।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जनसेवा केंद्र, CSC को जोगाजोग करंतु।
2: फसल बीमा संबंधी सूचना पाई हेल्पलाइन नंबर 1447 को कॉल करंतु।
4: फसल बीमा करा, सुरक्षा कवच पाओ।
5: पिला माने, आज आम विद्यालय रे जातीय कृमिनाशक दिवस पालन करा जाउछे। एई अवसर रे आज प्रत्येक छात्र छात्री मानकु गोटे लेखाए कृमिनाशक बटिका आलबेंडाजल खाइबा को दियाजे। तमे माने जानिछ, कृमि संक्रमित पिला माने कुपोषण एवं रक्तहीनता जोगु सबुबेले क्लांत अनुभव करन्ति। सेमानंकर शारीरिक एवं बौद्धिक विकास मध्य बाधाप्राप्त होइथाय। कृमि संक्रमणरु रक्षा पाइबाकु हेले नखकु छोट एवं सफा रखिबा, सबुबेले विशुद्ध पानी पिइबा, खाद्यकु सदा सर्वदा भल भाबरे घोडैकि रखिबा, फल ओ पनिपरिबा गुडीकु खाइबा ओ रांधिबा पूर्वरु परिष्कार पानीरे धोइबा, खाइबा पूर्वरु भल भाबरे साबुनरे हात धोइबा, खोला स्थानरे मलत्याग नकरि शौचालय व्यवहार करिबा, बाहरे बुलाबुली बेले जोता व्यवहार करिबा एवं आम परिवेशकु सबुबेले सफा रखिबा।
3: 1 वर्ष रु 2 वर्ष पिलांकु 5 ml आलबेंडाजोल सिरप आवश्यक पड़ताए। 2 रु 5 वर्ष जाए पिलांकु 10 ml आलबेंडाजोल सिरप दिया जाए थाए। 5 वर्ष रु 19 वर्ष जाए गोटिए लिखाए आलबेंडाजोल बटिका चोबे चोबे खाइबाकु पड़े। सुस्थ शिशु सुस्थ समाज।
6: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ओडिशा सरकार।

0: ¡Ey!
1: ¿Mm?
0: Uh-huh.
1: Uh-huh.
0: ¿Are?
1: Ajá.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.

0: निःशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद ने सहकारी क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास को बढ़ावा देने वाला विधेयक पारित किया। केरल का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को भी मंजूरी। लोकसभा ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा वे नीट पेपर लीक से संबंधित मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वैश्विक विकास के लिए ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्थाओं में निजी पूंजी जुटाने का आह्वान किया। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र के कारण अगले दो दिन तक ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश की संभावना। और नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत ने 3 स्वर्ण सहित 5 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि विधेयक के माध्यम से देश भर के करोड़ों किसानों के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
2: सहकारिता मंत्रालय के स्थापना के बाद माननीय उपसभापति महोदय, पिछले 5 वर्षों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लगभग 3000 करोड़ रुपए की लागत से देश की 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। हमारे छोटे छोटे गांव के पैक्स को सक्षम बनाने के लिए पैक्स के मॉडल बायलॉज बना दिए गए और मुझे खुशी है कि देश के सभी राज्यों ने इस मॉडल बायलॉज को एडॉप्ट किया।
1: संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा ने इसे कल पारित किया था। विधेयक का उद्देश्य संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है जबकि संविधान में इसे केरल लिखा गया है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को व्यापक विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। संसद के दोनों सदनों ने आज विधेयक संसदीय समिति को भेजने को मंजूरी दी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करना तथा विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। लोकसभा ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है।

0: विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग पूरा करने के लिए तैयार करना है। विधेयक बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है।
1: विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर एक बार फिर कहा है कि वे विभिन्न घटनाओं पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार हैं।
2: सरकार डिस्कशन चाहते हैं पार्लियामेंट में और ओपोजिशन भाग रहे हैं, ये कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ओपोजिशन पार्टी डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार जवाब देते हैं। यहाँ तो सरकार खुद ही कह रहे हैं कि हम डिस्कशन करेंगे, जवाब देंगे, और ओपोजिशन जवाब सुनना नहीं चाहते और भाग रहे हैं। ऐसा परिस्थिति आप कल्पना कर सकते हैं? लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
0: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में चर्चा को लेकर विपक्ष पर बार बार अपना रुख बदलने का आरोप लगाया है।
3: विपक्ष पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। इस सत्र के शुरुआत से ही सरकार लगातार बातचीत कर रही है। पहले वो चर्चा डिमांड करते हैं, चर्चा के लिए सरकार तैयार होती है तो अपना स्टैंड बदल देते हैं। बार बार उनके रवैये में इस प्रकार का बदलाव ये स्पष्ट करता है कि राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष विषयहीन है, सदन चलने नहीं देना है।
0: उधर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सार्वजनिक पूंजी को निजी निवेश के विकल्प के रूप में नहीं बल्कि उसके लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना चाहिए। जयपुर में ब्रिक्स सदस्य देशों में निजी पूंजी जुटाने में न्यू डेवलपमेंट बैंक की भूमिका पर आयोजित एक सेमिनार में उन्होंने ये बात कही। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक विकास के प्रमुख इंजनों में से है, लेकिन निजी पूंजी आकर्षित करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कारोबारियों और नागरिकों से निष्पक्ष व्यापार पद्धतियां अपनाने और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने का आग्रह किया। श्री गोयल ने भारतीय उत्पादों और सेवाओं को वैश्विक बाजारों में ले जाते समय चक्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने का आग्रह भी किया। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि नौ मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से भारतीय उद्योग और व्यवसायों के लिए बाजार खोले गए हैं।
4: भारत में उभरती हुई ताकत आज पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया भारत के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाना चाहती है। पूरी दुनिया के ध्यान में आ गया है कि ये $4 trillion की आज की इकोनॉमी 2047 में जब हम 100 वर्ष आजादी के बनाएंगे तब ये $30 trillion की इकोनॉमी कम से कम बच जाने वाली।
0: आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि एक जड़ी बूटी एक मानक पहल का उद्देश्य पारंपरिक औषधियों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता मजबूत करना है। नई दिल्ली में श्री जाधव ने कहा कि ये पहल भारत की समृद्ध जैव विविधता और पारंपरिक चिकित्सा विरासत की रक्षा में सहयोग देगी। इस बीच आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव की अध्यक्षता में हिंदी सलाहकार समिति की तीसरी बैठक आयोजित की। श्री जाधव ने कहा कि ये समिति हिंदी के उपयोग और प्रचार को मजबूत करने और इसे जन कल्याण तथा संचार का एक प्रभावी माध्यम बनाने के लिए महत्वपूर्ण मंच है। रेल मंत्रालय ने पश्चिमी रेलवे के गैरतपुर अहमदाबाद खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 153 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। ये परियोजना पश्चिमी रेलवे के मौजूदा जारी रोड ओवर और अंडरब्रिज, फुट ओवर ब्रिज, जल निकासी व्यवस्था में सुधार और पुनर्निर्माण कार्यों के अंतर्गत

0: स्वीकृत की गई है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि देश में लगभग 440 अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप पंजीकृत हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर देते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र ने 52 गैर सरकारी संस्थाओं को विभिन्न अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए 113 अधिकार पत्र प्रदान किए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसे लेकर लोगों में व्यापक उत्साह भी देखा जा रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना किया। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल और माओवाद से अत्यधिक प्रभावित रहे बस्तर इलाके में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यात्रा में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए।
1: छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में शांति, एकता और राष्ट्र निर्माण का संदेश लेकर आज से तिरंगा यात्रा शुरू हुई है। इस यात्रा का नेतृत्व छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा कर रहे हैं। यह यात्रा बस्तर के दुर्गम और आदिवासी इलाकों से होकर गुजरेगी। विशेष तौर पर यह यात्रा उन क्षेत्रों से होकर गुजरेगी जहां पूर्व में माओवादियों ने बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया था। 3 दिनों तक चलने वाली यह यात्रा 14 अगस्त शुक्रवार को पुर जिले के कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर पहुंचकर संपन्न होगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: जम्मू कश्मीर में रियासी जिले में चिनाब नदी में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। हरियाणा के भिवानी में शहीद मदन लाल ढींगरा स्मारक से एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। महाराष्ट्र में देशभक्ति रैलियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान देशभक्ति, राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। मिजोरम में दोपहिया वाहनों की एक रैली का आयोजन किया गया। मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों में उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना व्यक्त की है। इसके कारण कल ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मूसलाधार बारिश होने की आशंका है। इसके अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल और उससे सटे बांग्लादेश के तटों से होते हुए उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। मुंबई में आज घाटकोपर पश्चिम के चिराग नगर स्थित एक चौल में भूस्खलन होने से 7 लोगों की मौत हो गई और 7 अन्य घायल हो गए। सुबह एक छोटी पहाड़ी से मिट्टी और मलबा चौल के 2 से 3 कमरों पर गिर गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12 की पूरक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र अपना परिणाम डिजी लॉकर रिजल्ट पोर्टल results.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं। जेपीएससी और जेएसएससी सहित प्रदेश की अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर रांची में विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन भी जारी है। विपक्ष के नेताओं ने भी प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को अपना समर्थन दिया है। आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर 31 राज्यों में 50,000 से अधिक पौधे लगाए गए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हरियाली अमावस्या प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। दुनिया के कई हिस्सों में आज महत्वपूर्ण खगोलीय घटना पूर्ण सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। ये सूर्य ग्रहण उत्तरी ग्रीनलैंड, आइसलैंड, उत्तरी रूस, अटलांटिक महासागर, स्पेन और पुर्तगाल के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। बेंगलुरु स्थित रमन अनुसंधान संस्थान ने सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य की जटिल चुंबकीय संरचना का अध्ययन करने की व्यवस्था की है। भारत से दिखाई न देने वाला ये पूर्ण सूर्य ग्रहण रात 9:04 पर शुरू होगा और चंद्रमा की छाया सूर्य को 2:18 तक ढककर रखेगी। नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता के 3रे दिन भारत ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। कनाग लक्ष्मी, राजेंद्रन, शांतिमोल शेरजन और सिंह करण सिंह ने स्वर्ण पदक हासिल किए। वहीं जॉयस आशिता ने रजत और कुमारीशन पद्मा गीशो निधि ने कांस्य पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता में भारत ने 8 स्वर्ण, 7 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीत लिए हैं। विश्व हाथी दिवस के अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री

कच्चे धागे इस फिल्म का गीत था। लता मंगेशकर की आवाज में आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। आपके लिए ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं।

नौशाद की तर्ज शकील बदायूनी का लिखा गीत था, आशा भोसले की आवाज में। फिल्म थी दिल दिया दर्द लिया।

रवि की तर्ज थी शकील बदायूनी का लिखा गीत आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म थी चौदहवीं का चांद, गेटवे ऑफ इंडिया। इस फिल्म का गीत है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का गाया।

राजेंद्र कृष्ण की का लिखा ये नगमा था मदन मोहन का संगीत, लता मंगेशकर मोहम्मद रफी के गाए, फिल्म गेटवे ऑफ इंडिया के इस गीत के साथ ही श्रोताओं कार्यक्रम आपके लिए अब संपन्न होता है। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को, नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है? किशोरदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

आज के फनकार कार्यक्रम में बातें उस अभिनेत्री की जिसने फिल्मी दुनिया में अपने अभिनय, अपने नृत्य और अपनी खूबसूरती से हंगामा मचा के रखा था। हवा, हवा।

0: Hawaii.
1: फनकार कार्यक्रम आज समर्पित है एक खूबसूरत अभिनेत्री की याद।

चार बरस की थी श्रीदेवी जब उन्होंने बतौर बाल कलाकार थुनैवन नामक फिल्म में काम किया था और इसके बाद बतौर बाल कलाकार उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। वो बेबी श्रीदेवी के नाम से जानी गई और केरला स्टेट का बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट अवार्ड मिला और आगे चलकर कई तरह के अवार्ड्स श्रीदेवी को मिले। फिर फिल्म जूली आई जिसमें श्रीदेवी ने अभिनेत्री लक्ष्मी की छोटी बहन का किरदार निभाया था। सन 1976 बतौर हीरोइन श्रीदेवी ने फिल्म संसार में कदम रखा तमिल फिल्म मुंडुरु मोडिचू के जरिए। निर्देशक थे महान निर्देशक के बालचंदर। दक्षिण भारत में श्रीदेवी का एक बड़ा ही जबरदस्त और कामयाब करियर रहा है, लेकिन यहां हम उस करियर की बातें नहीं कर रहे, हमें तो भाई हिंदी फिल्मों की बातें करनी है। तो आइए सन 1979 पर आते हैं जहां श्रीदेवी ने बतौर हीरोइन हिंदी सिनेमा के पर्दे पर अपना पहला कदम रखा। फिल्म थी सोलवा सावन।

इसकी 4 साल बाद श्रीदेवी ने जैसे मुंबईया फिल्म जगत में तहलका ही मचा दिया। ये फिल्म थी हिम्मत वाला। श्रीदेवी के हीरो थे जितेंद्र।

फिल्म हिम्मत वाला ने जबरदस्त धमाका किया। इस फिल्म के गाने बहुत चले, ये फिल्म भी बहुत चली और इसके बाद श्रीदेवी भी हिंदी सिनेमा में खूब खूब चली। आइए उस दौर की कुछ और फिल्मों की बातें की जाएं। फिल्म तोहफा।

इसके बाद जितेंद्र और श्रीदेवी की जोड़ी ने उस दौर की कुछ नामी फिल्मों में काम किया। एक छोटी सी झलक इन गानों की, फिल्म मवाली। माना, माना।

सन 1986 में श्रीदेवी ने फिल्म नगीना में काम किया। ये अपने दौर की एक बहुत ही कामयाब फिल्म बन गई।

मिस्टर इंडिया एक कल्ट फिल्म बन गई और इस फिल्म में श्रीदेवी के अभिनय की बहुत तारीफ हुई। इस फिल्म में श्रीदेवी ने ये गाना भी गाया था पर्दे पर, जिसे असल में गाया कविता कृष्णमूर्ति ने।

जब मिस्टर इंडिया की बात हो तो एक गाने की बात ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। सरोज खान की कोरियोग्राफी वाला गाना फिल्म मिस्टर इंडिया का।

0: सन 1989 में ही श्रीदेवी ने यश चोपड़ा की एक बेहद महत्वाकांक्षी फिल्म में काम किया। इस फिल्म पर यश चोपड़ा बरसों बरस से काम कर रहे थे और आखिरकार कई हीरोइनों के नाम की संभावनाओं की खबरों के बीच ये तय हो गया कि श्रीदेवी ही हैं यश चोपड़ा की
1: चांदनी। ओ मेरी चांदनी, तू मेरी चांदनी।
0: जब फिल्म चांदनी की बात हो तो भला इस गाने की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है।

सन 1992 श्रीदेवी के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण साल बन गया। इस साल श्रीदेवी अमिताभ बच्चन के साथ नजर आईं। फिल्म थी खुदा गवाह।

साल 1993, श्रीदेवी की एक ऐसी फिल्म आई जिसे बहुत लोग आज याद नहीं करते। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नाकाम रही थी, रूप की रानी चोरों का राजा। इसके बाद श्रीदेवी संजय दत्त के साथ धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म गुमराह में नजर आईं। निर्देशक थे महेश भट्ट। सन 1994 में श्रीदेवी अनिल कपूर के साथ फिल्म लाडला में दिखी। सन 1997 फिल्म आई जुदाई। इस फिल्म में श्रीदेवी के साथ अनिल कपूर और उर्मिला मातोंडकर थे।

0: इसके बाद श्रीदेवी ने जाने माने प्रोड्यूसर बोनी कपूर से शादी रचा ली और वो फिल्म संसार से लंबे समय तक दूर हो गई। लंबे समय तक फिल्म संसार से दूर रहने के बाद श्रीदेवी ने रुपहले पर्दे पर वापसी करने का मन बनाया। साल 2011 में आई गौरी शिंदे की फिल्म इंग्लिश विंग्लिश।
1: सॉरी, माय वाइफ्स इंग्लिश इज नॉट वेरी गुड, सो
2: मेरा केविन, दिस मैरिज इज अ ब्यूटीफुल थिंग, इट इज द मोस्ट स्पेशल फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप ऑफ टू पीपल हु आर इक्वल। लाइफ इज अ लॉन्ग जर्नी मेरा, समटाइम्स यू विल फील यू आर लेस केविन, समटाइम्स यू विल ऑल्सो फील यू आर लेस देन मेरा। ट्राई टू हेल्प ईच अदर टू फील इक्वल, इट विल बी नाइस।
0: इस फिल्म में श्रीदेवी के अभिनय की बहुत तारीफ हुई।

श्रीदेवी की आखिरी फिल्म बन गई फिल्म मॉम, और इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार देने की घोषणा की गई। लेकिन जब तक ये घोषणा आई, श्रीदेवी इस फानी दुनिया से अलविदा कह चुकी थी।

24 फरवरी 2018 को श्रीदेवी का निधन हो गया। जब राष्ट्रीय पुरस्कार बांटे गए तो अपनी मां की ओर से श्रीदेवी की बेटियों ने और उनके पति बोनी कपूर ने इस पुरस्कार को ग्रहण किया।

जानी मानी अभिनेत्री श्रीदेवी अपने चाहने वालों की याद में हमेशा रहेंगी और बनी रहेंगी वैसी ही शोख, चंचल और खूबसूरत अदाकारा।

था अभिनेत्री श्रीदेवी पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति मनीषा जैन।

0: ए उठा उठा मा केमिति के लोक मई को मरद पिला दिन घड़ी जे किसवे
1: ओहो बड़ा बेकार मणिस तमे टिके शांति रे सोई दउ ना
0: सोउ ना टिके काहे कि सारा दिन तमाम पड़ी छी कमल घोड़े ही सोई था मोर कण हे जाउ छी कि
1: तमको भगवान एमिति काहे कि बेरसिका करी जन्म देले के जानी कियो खरा दिन राति रे जसीपुर रो एमिति का मीठा मीठा शीत कण तम कटक भुवनेश्वर रे पाइबो भल दशा अछि त आस आस पूणी टिके सोई पड़ आस आस
0: अरे
1: आस
0: छाड़ म दे चल थौ कटक रे कहिलो कण ना हमें बारीपदा जिबा सेठु जिबा जसीपुर तापरे सिमलेपाल अभयारण्य बरेई पाणी चहला डाक बंगला रे राति रे रही बण जंतु देखिबा इत्यादि इत्यादि लंबा लिस्ट छे तम मरदंग कथा रे ठीक अछि
1: ए स्वाति
0: कण हला
1: सेमति तीर मारिबा बंद कर कहू छे कोठी कोन टा हमर अशुद्ध होई गला जे काली संध्या रे त आसी कि पहुंचिले जसीपुर रे राति परे सकाळ

0: अच्छा या परे काको भेटिबे
1: खडिया संप्रदाय को जीवन पई संग्राम करथुबा एमिति आदिवासी भाई भोणी को
0: मने रखिथिबे प्रति मास द्वितीय एवं चतुर्थ शनिवार भेटि देबो आपण मनकु बन मल्लिका।

बादल कब बरसाएगा तू आ, बादल कब बर

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि विधेयक के माध्यम से देश भर के करोड़ों किसानों के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
1: सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद माननीय उपसभापति महोदय, पिछले 5 वर्षों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लगभग 3000 करोड़ रुपए की लागत से देश की 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। हमारे छोटे छोटे गांव के पैक्स को सक्षम बनाने के लिए पैक्स के मॉडल बायलॉज बना दिए गए और मुझे खुशी है कि देश के सभी राज्यों ने इस मॉडल बायलॉज को एडॉप्ट किया।
0: संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा ने इसे कल पारित किया था। विधेयक का उद्देश्य संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है जबकि संविधान में इसे केरल लिखा गया है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को व्यापक विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। संसद के दोनों सदनों ने आज विधेयक संसदीय समिति को भेजने को मंजूरी दी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करना तथा विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। लोकसभा ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग पूरा करने के लिए तैयार करना है। विधेयक बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है। गृहमंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल माध्यम से ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप लॉन्च किया। ये ऐप गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के ग्रामीण पुस्तकालयों को जोड़ने के लिए बनाया गया है। श्री शाह ने बताया कि करीब 63 गांवों में पुस्तकालय शुरू किए जा चुके हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सार्वजनिक पूंजी को निजी निवेश के विकल्प के रूप में नहीं बल्कि उसके लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना चाहिए। जयपुर में ब्रिक्स सदस्य देशों में निजी पूंजी जुटाने में न्यू डेवलपमेंट बैंक की भूमिका पर आयोजित एक सेमिनार में उन्होंने ये बात कही। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक विकास के प्रमुख इंजनों में से हैं, लेकिन निजी पूंजी आकर्षित करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय साधन सहयोग्यता छात्रवृत्ति योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। बैठक में योजना के प्रमुख पहलुओं और देशभर के विद्यार्थियों के हित में इसके प्रभावी क्रियान्वयन पर विचार विमर्श किया गया। नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता के तीसरे दिन भारत ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। कनाग लक्ष्मी राजेंद्रन, शांतिमोल शेरजिन और सिंह करण सिंह ने स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं जॉयस आशिता ने रजत और कुमारेशन पद्मा गिशो निधि ने कांस्य पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता में भारत ने 8 स्वर्ण, 7 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीत लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।